सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आज मंगलवार है। शक्समत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि तदनुसार 9 जून सन 2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6 बजने को है समाचार। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र

0: नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:05 हुए हैं। विचार मंथन। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, बुराई को ना रोकने से वो बढ़ती है और बुराई को बर्दाश्त कर लेने से वो तमाम क्रियाओं में जहर फैला देती है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत में लीजिए सुनिए मातृ वंदना।

समूह स्वरों में ये पारंपरिक रचना आपने सुनी और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला भक्ति गीत, स्वर है अनुराधा पौडवाल का।

सिंपल राजा और साथियों की आवाज़ में ये भजन आपने सुना, और अगला भक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए चिंतन। आलेख प्रोफेसर रंगनाथ शुक्ल का है और वाचक हैं दिनेश नामदेव।
1: प्रार्थना अंतर मन की पुकार है। जब हम संकट में घिरे होते हैं, पीड़ा और परेशानी में होते हैं, या किसी मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी मदद करें, हमें उबार लें। प्रार्थना करते समय मन सात्विक विचारों से भरा होता है, भावनाएं उभरती हैं, इसलिए कभी कभी प्रार्थना करते समय सहज ही आंसू झरने लगते हैं। लेकिन सामान्य सी दिखने वाली प्रार्थना साधारण नहीं होती, वो अपना असाधारण प्रभाव भी दिखाती है। प्रार्थना का अर्थ केवल शब्दों का दोहराना मात्र नहीं है, ये कोई इच्छा मुक्त सकारात्मक भावना भी नहीं है। प्रार्थना के बारे में ये सोच गलत है कि प्रार्थना करने से तुरंत ही उसका इच्छित परिश्रम मिल जाएगा। जैसे किसी दुकान में किसी वस्तु का मूल्य चुकाने पर वो वस्तु तुरंत हमें मिल जाती है, लेकिन प्रार्थना इस तरह बिकाऊ नहीं होती। प्रार्थना वह है जिसमें व्यक्ति हृदय की गहराई से स्थिर और एकाग्र होकर भगवान से संवाद स्थापित करता है, अपनी पीड़ा और परेशानी कहता है, उसे दूर करने के लिए मदद मांगता है। हृदय की पुकार श्रद्धा और विश्वास के भाव की अभिव्यक्ति का दूसरा नाम ही प्रार्थना है। प्रार्थना व्यक्ति को विशेष आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसे करने के लिए जाति, धर्म, वर्ण का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे जीवन की अंधियारी गलियों तथा कष्टपूर्ण परिस्थितियों में प्रार्थना ही आशा की किरण बनकर हमारा पथ प्रदर्शन करती है। सात्विक प्रार्थना वह है जो निष्काम हो, अर्थात भगवान से हम कुछ मांगे नहीं, प्रार्थना में समर्पित होकर ये कह दें कि हे प्रभु, जिसमें हमारा भला हो वही करना, वही देना। हम मनुष्य अल्पज्ञ हैं, हमारी सोच भी संकुचित है, लेकिन भगवान दूरदृष्टा और सर्वज्ञ है। प्रार्थना का प्रभाव निश्चित रूप से होता है, इस बात को आज विज्ञान भी मानता है। प्रार्थना के ऊपर बहुत से शोध कार्य किए जा चुके हैं और अभी भी किए जा रहे हैं। विज्ञान भी अब इस तथ्य को स्वीकार करता है कि दवा के साथ सच्ची दुआ या प्रार्थना इंसान का जीवन बदल सकती है। कभी कभी बहुत प्रार्थना करने पर भी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, ऐसे में व्यक्ति निराश हो जाता है और प्रार्थना को निरर्थक मानने लगता है, जबकि वास्तव में ये सही नहीं है। प्रार्थना कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि प्रार्थना करके हमने कुछ मांगा और वो हमें मिल गया तथा हमारी इच्छा पूर्ण हो गई। प्रार्थना हमारी इच्छा पूर्ति करने का साधन नहीं है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं और भगवान भी विभिन्न रूपों में हमारी मदद करते हैं। जब हम सच्चे मन से अपने इष्ट या अलौकिक शक्ति से प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास के अनुरूप ही सहायता मिलती है। महात्मा गांधी प्रार्थना के बारे में कहते थे कि जब हम सारी आशाएं छोड़ देते हैं तो हमारे दोनों हाथ प्रार्थना के लिए जुड़ जाते हैं तथा कहीं ना कहीं से मदद आ ही जाती है। प्रार्थना याचना नहीं बल्कि अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति की जाने वाली एक सरल और सशक्त अभ्यर्थना है। प्रार्थना स्वच्छ मन से हो, सर्वजन हिताय हो, तो बात बनने में देर नहीं लगती। प्रार्थना समर्पण चाहती है। भक्त अपने हृदय रूपी मंदिर में प्रार्थना का सहारा लेकर प्रभु को विराजमान होने के लिए आमंत्रित करता है। प्रार्थना का अधिकार सबको है, लेकिन सभी ये ध्यान रखें कि अहंकार से प्रभु खींचते हैं जबकि प्रार्थना से प्रभु रिझते हैं। इसलिए सभी को अहंकार रहित होकर निष्काम भाव से प्रार्थना करनी चाहिए।
0: आपने सुना चिंतन। आलेख प्रोफेसर रंगनाथ शुक्ल का था और वाचक थे दिनेश नामदेव।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में स्वर है बशीर अहमद का।

श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन के मार्ग पर छोड़ अयोध्या लौटते हुए सुमंत्र को वैसा ही पश्चाताप हो रहा है जैसा किसी विवेकशील वेद के ज्ञाता तथा साधु चरणों में आसक्त व्यक्ति के मन में हो सकता है यदि वो धोखे से मदिरा पान कर ले। भयानक संताप के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता और बुद्धि काम नहीं कर रही, होठ सूख गए हैं, जीवा काम नहीं करती। आसन्न मृत्यु के इन सभी लक्षणों के बावजूद प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मन के किसी कोने में यह आशा बंधी है कि 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम अयोध्या लौटेंगे और एक बार फिर उनके दर्शन हो सकेंगे। परंतु रह रहकर वो इस सोच से व्याकुल हो उठते हैं कि अयोध्या लौटकर वो लोगों को क्या उत्तर देंगे। उन्हें अकेला वापस आया देख कोई उनसे बात भी नहीं करेगा, शोक में डूबी माताओं का सामना वो किस प्रकार कर सकेंगे। आशंकाओं में डूबते उतराते सुमंत्र अयोध्या के समीप पहुंचे, किंतु दिन के प्रकाश में नगर में प्रवेश करने का उन्हें साहस नहीं हुआ।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर था बशीर अहमद का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कृषि समय की, विषय है नील हरित काई का उपयोग।
1: किसान भैया हरो, कई बार अपन के सलाह दे जाते हैं या कोई बताते हैं कि भैया अच्छे उत्पादन प्राप्त करवे के लाने नील हरित काई वाली खाद को उपयोग करें। तो अभी खाद को उपयोग अपन काय करें, इसे करें भैया कि इसे अपन के कई लाभ होते हैं। अब जा जो खाद है जब पानी की सतह पर पाई जावे वाली उपयोगी और लाभदायक काई जोन होते हैं ओखे अपन कहते हैं, जा नीले हरे रंग की होते और सूर्य प्रकाश में अपनो भोजन खुद बनाते है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके पौधा खे जा उपलब्ध कराते है, पानी में पनपबे और नाइट्रोजन प्रदाय करवे के स्वभाव के कारण अपन एक है जलमग्न धान के खेतों में उपयोग कर सकत है, जा काई जोन है 20 से 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक फसलों के देते है, 10 से 15 प्रतिशत उत्पादन में अपन एक खाद खे दय के बाद बढ़ोतरी कर सकत है, एक एकड़ के लाने 4 किलो सूखी नीली हरित काई की जरूरत पड़त है, एक है देस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी भरो रहो चाहिए, एके लाने खेत की मेड़ों के अपन बंद कर देवे, खेत में नील हरित काई के अलावा अपन का करें गहरे हरी रंग की काई अगर दिखे तो 0.05% नीलो थोथा जो उनके अपन कापर सल्फेट सोई कहते हैं को छिड़काव अपन कर देवे। काय से के गहरे हरे रंग की काई नुकसानदायक होते है, उपचारित खेत में अच्छी तरह सूर्य प्रकाश पड़े एक ही अपन थोड़ी व्यवस्था करें या ध्यान रखें, कैसे जो सूर्य प्रकाश से ये खादें अपनो भोजन बनाती हैं और इन खादों की बढ़वार और क्रियाशीलता के लाने 30 से 40 सेंटीग्रेड तापमान अगर रहे तो ज़्यादा अच्छो रहते हैं, और अपने इतने जो भूमि उदासीन या छारी है उनमें अगर अपन इन खादों को उपयोग करते हैं तो अपन के ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हो के परिणाम सोई अपन के अच्छे मिलते हैं। मिट्टी में पाए जावे वाली नील हरित काई के 3 प्रकार होते हैं। अब इन 3 प्रकार

0: प्रकारों में भैया वे जोन है, पहले तो वे हो गए जोन मिट्टी की सतह से नीचे पाए जाते हैं, दूसरे जोन मिट्टी की सतह पर पाए जाते हैं, और तीसरा प्रकार है जोन अन्य स्थानों में जैसे पौधों के तनों और चट्टानों में पाए जाते हैं। अब ये तीन प्रकार की जब ये खाते हो गई, जोन ए में तीसरे प्रकार की है वह मिट्टी के निर्माण और अन्य उपयोगी पदार्थों की तैयारी में महत्वपूर्ण रहते हैं। दूसरी जोन खाद है वह किसान भाइयों के लाने सबसे ज़्यादा उपयोगी होते है। अब किसान भैया हरो, जब जब खाद इतनी उपयोगी है तो एक ही तैयारी यानी एक है प्राप्त करवे को या कह लो बनेवे की विधि अगर बा अपने पास हो तो अपनी बहुत सी समस्याओं को समाधान हो सकत है। किसान भैया हरे एक लाने का कर सकत हैं कि अपने खेतों में नील हरित शैवाल जैविक खाद बनेवे की विधि अपना सकत हैं। एक लाने किसान भैया हरे क्या करें, एक गड्ढा 6 फीट लंबो 3 फीट चौड़ो और 9 इंच गहरो गड्ढा खोद लेवे। एक गड्ढा में एक पनी जो उनके कहते हैं अपन या पॉलीथीन वो की सीट बिछा देवे। गड्ढा में 1 किलोग्राम मिट्टी 250 ग्राम सुपर फास्फेट डालकर 6 इंच तक पानी भर देवे। जब मिट्टी गड्ढा की सतह पर बैठ जाए तो अपन क्या करें, एक पैकेट नील हरित शैवाल खाद लगभग 250 से 300 ग्राम को प्रारंभिक कल्चर, 250 ग्राम लकड़ी को बुरादा के साथ मिलाकर गड्ढे में अपन क्या करें छिड़क देवे। गड्ढा में बीच बीच में जरूरत के हिसाब से अपन पानी डालत रहें। 2 सप्ताह बाद गड्ढा में पानी की सतह पे नील हरित शैवाल की मोटी परत अपन के दिखाई दे है। गड्ढा के पानी खो सूखने के बाद पपड़ी युक्त जो नील हरित शैवाल या खाद जो उनके कहते हैं अपन उखे गड्ढे से निकाल के इकट्ठो कर लेवे और ये विधि के अपन फिर से वही गड्ढा में दोहरा सकत है। एक गड्ढा 3 से 4 बार मैं अपन के 10 से 12 किलो खाद देते है तो अपन एक गड्ढा के माध्यम से जब 3-4 बार खाद प्राप्त करें तो जा समझो कि आपके पास 40-50 किलो खाद अपने आप उपलब्ध हो जाए।
1: नील हरित काई का उपयोग कृषि सामयिकी में आप सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आइए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी दे दें। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। 8:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 9:00 आप सुनते हैं लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं डॉक्टर गिरीश झा और बेड़ीलाल अहिरवार के गाए बुंदेली लोकगीत। सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा बसंत तिमोथी का वायलिन वादन। दस बजकर 5 मिनट पर सुनिए वंदे मातरम गौरव गान की 1.5 सदी। 10:10 पर समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और 10:20 पर आनंद उठाइए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा सारंगा। 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे जो कि आप सुनेंगे दिन में 3:00 यानी सभा के समापन तक। दूसरी सभा में शाम 5:02 पर कार्यक्रम युववाणी हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। 5:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। शाम 6:00 सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शाम 6:30 पर सुनिए प्रीतम सिंह ठाकुर के गाए बुंदेली लोकगीत। शाम 6:45 पर शुभम संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे नितिन अग्रवाल की गाई गजलें। शाम 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आर्या परियोजना के बारे में जानकारी देंगी श्रीमती दीपशिखा सिंह। रात 8:00 सुर्खियों में यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। 8:15 से सुनिएगा फिल्म संगीत। 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:30 पर फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग इस सभा में की जाएगी 11:00 से। 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा विदुषी किशोरी अमोनकर का गायन। 10:30 पर होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। 6:55 होने को है संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च 7 कीर्तिचक्राणि, 15 वीरचक्राणि, 31 शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि। जम्मूनगरस्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ VSF इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुं, उपनिरीक्षकं मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुं च मृत्योपरांतं वीरचक्रं प्रदत्तम्। आंध्रप्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां 8 जनाः मृताः, अन्ये 6 जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृत जनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्ति सदस्यस्य कृते 2 लक्ष रूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबंधन व्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमंत्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरंभः भारतस्य आधुनिक तंत्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबंधन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तं व्यापारसौकर्यं सम्पर्कं राष्ट्रियसुरक्षां विकसितभारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मलासीतारामनः पश्चिमबङ्गस्य विकासयात्रां त्वरितं कर्तुम् उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमबङ्गस्य मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्ये विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋणप्राप्तिविषये सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमन्त्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमन्त्रिमुद्रायोजना, प्रधानमन्त्रिजनधनयोजना, प्रधानमन्त्रिजीवनज्योतिबीमायोजना, प्रधानमन्त्रिसुरक्षाबीमायोजना, अटलपेन्शनयोजना, प्रधानमन्त्रिस्वनिधियोजनादीनां नवीकृतसन्तृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उक्तवान यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अंतरराष्ट्रीय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु पञ्चवर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्री गोयल वर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूत सम्मेलनं 26,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च संबोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य द्वादश वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000 आईसीसी महिला विंशति प्रति विंशति विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को

वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर

0: परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणी श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. Union Steel Minister H.D. Kumaraswamy and Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu visited the Visakhapatnam steel plant accident site last night. Mr. Kumaraswamy expressed condolences to the families of the deceased workers and announced an ex gratia of 25 lakh rupees for next of kin of the deceased and 10 lakh rupees for those injured. In addition, affected families will be allowed to continue residing in steel plant quarters, their children will receive free education, and one member of each family will be provided permanent employment. Mr. Kumaraswamy said Prime Minister Narendra Modi has also announced financial assistance of 2 lakh rupees to the families of the deceased and 50,000 rupees to the injured through the Prime Minister's National Relief Fund. 8 people were killed in the fire accident at the Visakhapatnam steel plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited last evening. 6 people were injured, with the condition of 2 being critical. The Union Ministry of Steel said the accident occurred during casting operations when a sudden and severe explosion took place before the slide gate was opened to pour molten steel into the tundish. Following the explosion, a massive ball of fire rose to the ceiling. Iran and Israel have announced a halt in the attacks against each other following an appeal by US President Donald Trump for an immediate ceasefire. However, Tehran has warned that it will resume military action if Israel continues its strikes against Hezbollah targets in Lebanon. On the other hand, Israeli Defense Minister Israel Katz has also warned that Israel will again target Hezbollah's stronghold in southern Beirut if attacks on northern Israel continue. The latest exchange marked the most direct confrontation between Iran and Israel since a ceasefire was reached in April. Iran launched missiles towards Israeli territory on Sunday night, describing the attack as retaliation for Israeli strikes on Hezbollah strongholds near Beirut. In response, Israel targeted a petrochemical facility in southwestern Iran, alleging that it was involved in ballistic missile production. India has deeply regretted the renewed attacks in West Asia. In a statement, External Affairs Ministry said, these developments are a matter of utmost concern to the international community. India has called on an all-party

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 5 दिवसीय बैठक आज से इंदौर में, खेती किसानी पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश भर में आयोजित होंगे विशेष मातृत्व स्वास्थ्य शिविर। HPV टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल। और प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियों ने पकड़ा जोर। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 5 दिवसीय बैठक आज से इंदौर में शुरू होगी। इसमें 20 देशों के कृषि मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। कल भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आयोजन को भारत और विशेष रूप से इंदौर सहित मध्य प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण अवसर बताते हुए इसकी रूपरेखा साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में हो रहा यह आयोजन खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, छोटे किसानों के सशक्तिकरण और कृषि नवाचार जैसे वैश्विक मुद्दों पर ठोस दिशा तय करेगा।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेश की सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से अपील की है कि वे 9 जून को आयोजित विशेष प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविरों में पहुंचकर निःशुल्क जांच, परामर्श और उपचार सुविधाओं का लाभ अवश्य लें। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था दी समय पर जांच और उच्च जोखिम स्थितियों की शीघ्र पहचान से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री

0: शुक्ल ने कहा है कि इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में संचालित करते हुए प्रत्येक गर्भवती महिला तक गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाई जा सके। मध्य प्रदेश एचपीवी टीकाकरण अभियान में शीर्ष राज्यों में शामिल है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने अभियान से जुड़े चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम शिक्षकों, जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें सफलता के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अभियान राज्य की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाकर सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य अमले, सहयोगी विभागों की प्रतिबद्धता, सतत मॉनिटरिंग के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 7.63 लाख से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक एचपीवी टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा उद्यम स्वरोजगार योजना में दी जाने वाली सब्सिडी व ऋण सहायता सुलभ और समय में देकर उसके उपयोग की निगरानी भी की जाए। विभाग अपनी विभागीय प्रक्रिया को पूरी कराने के अलावा संबंधित हितग्राही को बैंक से समुचित सब्सिडी ऋण दिलाने में भी हितग्राही का सहयोग करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियां उसी वर्ष तय तारीख तक आवश्यक रूप से वितरित कर दी जाएं जिस वर्ष में वो छात्रवृत्ति दे है। विभागीय अधिकारी इसके लिए स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से बेहतर समन्वय करके काम करें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर परिषद की सहमति ली जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव सिंह 2028 की तैयारियों के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति और योजना तथा आर्थिक सांख्यिकी विभाग की बैठक भी लेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि मतदान सबसे पवित्र अधिकार है, उससे कोई भी पात्र मतदाता वंचित नहीं रहे। साथ ही कोई भी अपात्र मतदाता मतदान के अधिकार का उपयोग नहीं कर सके। उन्होंने भारतीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा में कहा कि नाम जोड़ने और हटाने का कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा करें। प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 15 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा और फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को किया जाएगा। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन और सतत पर्यावरण प्रबंधन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसको वैज्ञानिक तथा तकनीक आधार प्रदान करने की दिशा में मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और भूजल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मेपकास द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक दस्तावेज और एटलस तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जलगंगा संवर्धन अभियान वर्ष 2026 के अंतर्गत मेपकास द्वारा उपग्रह छायाचित्रों पर आधारित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दस्तावेज भूजल एटलस अंतर्जली तैयार किया गया है। इसके तहत भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर जिलों के भूजल एटलस तैयार कर संबंधित विभागों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे भूजल प्रबंधन और जल गुणवत्ता का आकलन प्रभावी होगा। क्रिकेट में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। ब्रिटेन के कार्डिफ में कल खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड से होगा। वहीं विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत रविवार को एजबिस्टन में

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसूनी गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। मौसम विभाग ने राज्य के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल संभागों के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आज खंडवा और श्योपुर जिलों में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रसव पूर्व जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आगरमालवा कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में प्राकृतिक और जैविक खेती के रकबे में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मंदसौर में मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गुना में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। धार जिले में आगामी दिनों में विभिन्न धार्मिक त्योहार जुलूसों के संबंध में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने आगामी कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने नवीन तहसील और एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कटनी में भी मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत जिले में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मलेरिया जागरूकता रथ को रवाना किया गया। डिंडौरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से समस्याग्रस्त बसाहटों में सार्वजनिक उपयोग हेतु 46 नवीन नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार करें चमन सालवार का नमस्कार। दोस्तों, मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है और प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां आरंभ हो चुकी हैं। बारिश के अलर्ट जारी हो रहे हैं और अनुमान ये व्यक्त किया जा रहा है कि 15 जून तक मानसून का प्रवेश प्रदेश में हो जाएगा। देखा जाए तो ये तब्दीलियां हर साल आती हैं और हम इसके प्रत्यक्षदर्शी बनते हैं। यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। जिंदगी में भी कई बार हम कड़ी धूप से, मुश्किल दिनों से परेशान हो जाते हैं और ऊबने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे दिनों की बारिश भी आती है, बस इंतज़ार किया जाए और अपने हिस्से का जो कर्म है उसे किया जाए, क्योंकि इस मामले में कई बार लोग कोताही कर देते हैं, अपना काम करते नहीं हैं और ईमानदारी से नहीं करते हैं और तकदीर का रोना रोते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने हिस्से का कर्म अगर ईमानदारी से किया जाए, जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाई जाए, तो उसका प्रतिफल एक दिन ज़रूर मिलता है।

तस्वीर अपने देश की हम देखते हैं, हमेशा से ऐसी नहीं थी और कम से कम पहले तो बिल्कुल नहीं थी। पराधीनता की बेड़ियों में ये देश जकड़ा हुआ था और एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन उसमें बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी शामिल थी। अपने अपने स्तर पर लोगों ने अन्याय का प्रतिकार किया और तब कहीं जाकर एक बड़ी उपलब्धि हमें मिल पाई। जल, जंगल और जमीन, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिनकी रक्षा के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया। और आज के दिन मात्र 25 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 को रांची की जेल में उनका निधन हो गया था और उस जेल को अब बिरसा मुंडा जेल के नाम से जाना जाता है। उन्हें धरती आबा के नाम से भी पुकारा जाता है। वो महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और जननायक रहे हैं। उन्होंने जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ उलगुलान महान आंदोलन, जिसे कहा जाता है, उसका नेतृत्व किया था। उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही औपनिवेशिक सरकार को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू करना पड़ा था। उनके अद्वितीय बलिदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार उनकी जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाती है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, हम सारे लोग अलग अलग कामों से लगे हुए हैं, सबकी जिम्मेदारियां भी अलग अलग हैं। कोई किसी काम को कर रहा है, कोई किसी काम को कर रहा है, कोई देश की सरहद पर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात है, तो बहुत सारे लोग देश के भीतर अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये निश्चित मानिए कि हम चाहे जिस भी काम से जुड़े हुए हैं, वो काम अगर देश के हितों के प्रतिकूल नहीं है तो वो भी देश सेवा है, चाहे हम जिस भी काम को कर रहे हैं। इसलिए हर एक काम को देश की सेवा मानकर अगर किया जाए तो एक अलग ही जिम्मेदारी का एहसास आपको होगा, और बाकी घर परिवार की जिम्मेदारियां तो उसमें शामिल होती ही हैं।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, चार दीवारें और उस पर एक छत, ये मकान की सबसे छोटी परिभाषा है। और इस मकान में जब एक परिवार आबाद होता है तो घर कहलाता है। घर यानि रिश्ते नातों के तानों बानों से बना एक ऐसा सपना जो हकीकत में उतरने तक इंसान की न जाने कितनी परीक्षाएं ले डालता है। हम जिस घर में रहते हैं, चाहे वो किराए का हो या खुद का, उसके चप्पे चप्पे से हम वाकिफ होते हैं। और आंखें बंद करके जहन में तुरंत घर की तस्वीर कौंध जाती है। एक काम करें, कभी ये सोचें कि 15 मिनट के लिए आंखें बंद करना है और फिर आप ये तय करें कि मुझे किचन में जाकर गिलास में पानी निकालना है, या किसी और कमरे में जाके कोई कपड़े निकालना है, अलमारी से कुछ सामान निकालना है। कभी करके देखें, अव्वल तो आप इतनी देर तक आंखें बंद ही नहीं रख पाएंगे, अंदर से घबराहट होने लगेगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिन्हें ये सुविधा नसीब नहीं है। कुदरत ने एक चुनौती उन्हें दे रखी है और उनके पास नेत्र ज्योति नहीं है। उसके बाद भी आमतौर पर ये लोग निराश नहीं होते हैं और तमाम मुश्किलों को स्वीकार करते हुए भी जिंदगी के प्रति उनकी आस्था डगमगाती नहीं है। कितना कुछ ऐसे लोगों से सीखा जा सकता है। और हम सारे लोग जो दुनिया का नज़ारा कर रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी बन पड़ती है कि जब भी ऐसे लोग हमें जीवन में टकराएं, जितना हो सके उनका सहयोग किया जाए। और उनकी मुश्किलों को हम कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा सहयोग करके हम उनके रास्ते को थोड़ा आसान ज़रूर बना सकते हैं।

आमतौर पर ऐसा होता है कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ आना जाना है, जहाँ काम करते हैं, उतने ही क्षेत्र को, उतने ही इलाके को हम दुनिया मान लेते हैं। पर ऐसा नहीं है। दुनिया सिर्फ इतनी नहीं है, दुनिया बहुत फैली हुई है और उसके अलावा भी दुनिया है, उसके अलावा भी लोग होते हैं। हम अगर शासकीय नौकरी में हैं तो एक दिन सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट होता है, उसके बाद पेंशन मिलती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में कभी रिटायरमेंट नहीं होता, कभी अपनी जिम्मेदारियों से उन्हें निवृत्ति नहीं मिलती है। और कई बार आपने पढ़ा होगा कि कोई रिक्शे वाला धूप से परेशान होकर सुस्ताने के लिए अपने रिक्शे में लेट गया और लेटा ही रह गया, उठा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में सुकून और आराम कल्पना की चीज़ें होती हैं, और ऐसे लोगों के बारे में शायद हम उतना सोच नहीं पाते हैं। और कई बार सामान्य जीवन में, दैनिक जीवन में, जब हम कभी सब्ज़ी खरीदने जाते हैं या किसी रिक्शे वाले से बात करते हैं तो शायद उतने सम्मानजनक तरीके से हमारी बातचीत होती नहीं है। तो ये बात इसलिए जहन में आ रही है कि कम से कम बोलचाल का जो लहजा है वो इतना तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को आपसे बात करके अच्छी अनुभूति हो और वो खुद भी सम्मानित महसूस करें।

बिल्कुल सही बात है कि इंसान यादें छोड़ के जाता है, हम सभी को जाना है और हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ छोड़ के ज़रूर जाता है। आमतौर पर भौतिक चीज़ें होती हैं, कभी ये भी विचार कर लिया जाए कि समाज के लिए हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि याद तो अच्छे लोगों को भी किया जाता है और बुरे लोगों को भी किया जाता है, बस फर्क इतना होता है कि अच्छे लोगों को अच्छे संदर्भ में याद किया जाता है और बुरे लोगों को बुरे संदर्भ में याद किया जाता है। इसलिए हम सारे लोग ये कोशिश करें कि अच्छी यादों का हिस्सा बने, और लोग चाहे किसी कार्यस्थल पर आप हों या नहीं हों, आपके साथ और आपके बाद भी अच्छे संदर्भ में लोग आपको याद करें। मुझे लगता है कि ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है, तो अनुमति दीजिए अपने दोस्त चमन सालवार को। नमस्कार।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका

0: ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
2: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने

0: प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जाँच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीज़ा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीज़ा के जरिए अमरीकी कंपनियाँ दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, TMC में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट NDA के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा

आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा ये नगमा आपने सुना, जिसे आवाज दी थी उदित नारायण, सुदेश भोसले, अमिताभ बच्चन, सुनीति चौहान और आदेश श्रीवास्तव ने फिल्म कभी खुशी कभी गम। आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत अंकित तिवारी की आवाज में है, फिल्म का नाम है बागी 2।

सूरमा फिल्म का ये गाना आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज़ में, और इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आपको याद दिला दें, आज रात 9:30 पर प्रसारित होगा फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम, जिसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी इस सभा में 11 बजे से। हमारे उन श्रोताओं से निवेदन है जिनकी कॉल पिछले कार्यक्रम में शामिल हो चुकी है, इस बार दूसरे श्रोताओं के लिए अवसर छोड़ें और वो कॉल ना करें ताकि दूसरे श्रोताओं को भी मौका मिल सके। समय बता दें, 11 बजे से रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसका एक हिस्सा आप सुनते हैं रात में 9:30 से 10 बजे के बीच आकाशवाणी जबलपुर पर, और दूसरा हिस्सा दूसरे दिन विविध भारती जबलपुर के प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाता है 11 बजे से। फिलहाल वक्त हो रहा है 8:58। कुछ ही पलों में इस घंटे की खास खबरें हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

खाद्य सुरक्षा कृषि और किसानों के सशक्तिकरण पर ब्रिक्स देशों की बैठक आज से इंदौर में शुरू हो रही है। 5 दिवसीय इस बैठक में 20 देशों के कृषि मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को बताया कि बैठक में कृषि नवाचार जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर परिषद की सहमति ली जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव से 2028 की तैयारियों के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति और योजना तथा आर्थिक सांख्यिकी विभाग की

0: बैठक भी लेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रदेश में इस अवसर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। उन्होंने राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से अपील की है कि वे आज आयोजित होने वाले शिविरों में पहुंचकर स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं। और क्रिकेट में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत का अगला अभ्यास मैच कल इंग्लैंड से होगा। वह विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत रविवार को एजबेस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडिया व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 9 बजे हैं और इस वक्त आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। इस कार्यक्रम में आज पहले आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर गिरीश झा के गाए बुंदेली लोकगीत और उसके बाद आपको सुनवाएंगे बेड़ीलाल अहिरवार के गाए बुंदेली लोकगीत। पहले डॉक्टर गिरीश झा के गाए लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गिरीश झा के गाए बुंदेली लोकगीत, और इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं बेड़ीलाल अहिरवार के गाए बुंदेली लोकगीत।

0: बेड़ीलाल अहिरवार और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का लोक दस्तार कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
0: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 9:30 हुए हैं, तब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बसंत तिमोथी का राग अहीर भैरव में वायलिन वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे बसंत तिमोथी का राग अहीर भैरव में वायलिन वादन। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है।

0: 10 बजे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। नीमच जिले में अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से प्रशासनिक टीमों ने निरीक्षण शुरू किए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को एसडीएम पराग जैन और तहसीलदार संजय मालवीय ने नीमच के ज्ञानोदय अस्पताल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने अस्पताल में स्थापित अलार्म सिस्टम और आपातकालीन निकास द्वार की उपलब्धता और कार्यशीलता का बारीकी से जायजा लिया। उज्जैन जोन का पदभार संभालने के बाद आईजी राकेश गुप्ता पहली बार नीमच पहुंचे। उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक ली। पुलिस अधिकारियों को विभिन्न मामलों में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में डीआईजी निमिष अग्रवाल, एसपी राजेश व्यास, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया सहित जिले के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी मौजूद रहे। नीमच जिले के जनजाति बाहुल्य ग्राम रातीखेड़ा में एक अनूठी प्रशासनिक पहल देखने को मिली। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। देर रात तक गांव में रुके और पीएम आवास योजना के लाभार्थी हरिराम के घर जमीन पर बैठकर भोजन किया। कलेक्टर चंद्रा अधिकारियों के दल के साथ बस से करीब 2 घंटे की यात्रा कर रातीखेड़ा पहुंचे। उन्होंने जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। पेयजल, सड़क, बिजली, शिक्षा और वन राजस्व से संबंधित मामलों पर उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए। नीमच प्रशासन ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए अनूठी पहल की है। कलेक्टर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी अलग अलग वाहनों के बजाय एक ही बस में सवार होकर खातीखेड़ा जनसमस्या निवारण शिविर पहुंचे। प्रशासन की इस पहल की जिले भर में सराहना हो रही है। नीमच नगर पालिका द्वारा गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीद पार्क में एक वृहद स्वच्छता कार्यक्रम और पौधरोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और एसडीएम पराग जैन सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहीद पार्क परिसर की साफ सफाई की। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने नीमच जिले की रामपुरा तहसील के ग्राम खिमला में निर्माणाधीन क्रेन को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसके बाद क्रेन को परिसर में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्य योजना की जानकारी दी। विगत दिनों नीमच जिले के ग्राम बड़ी में राजस्व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने लगभग 3.800 हेक्टेयर बेशकीमती शासकीय भूमि को अवैध अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया। नीमच जिले के नए पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने शनिवार को जावद अनुभाग के विभिन्न थानों और चौकियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिंगोली, रतनगढ़, मनासा थानों सहित सरवानिया, महाराज, टिकिन और कंजाड़ा चौकियों की कार्यप्रणाली और संसाधनों का जायजा लिया। श्री व्यास ने थानों के निरीक्षण के दौरान हवालात की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी। उन्होंने रोशनदानों को सुरक्षित करने, शौचालयों की नियमित सफाई और परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। पिछले दिनों नीमच जिले के जीरन में सीआरपीएफ जवान संजय पाटीदार का निधन हो गया। 35 वर्षीय श्री पाटीदार सीआरपीएफ नीमच के डीआईजी रेंज कार्यालय में पदस्थ थे। गुरुवार सुबह उन्हें राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। नीमच जिले में 9,162 किसानों से कुल 4,80,511 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, जो कुल खरीदी का 96% है। जिला प्रशासन के अनुसार कुल उपार्जित गेहूं में से 4,56,691 क्विंटल गेहूं का सुरक्षित परिवहन पूरा कर लिया गया है। जिले के 12 उपार्जन केंद्रों ने 100% परिवहन का लक्ष्य हासिल किया है। कुल 97% प्रकरणों में स्वीकृति पत्रक जारी किए जा चुके हैं। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 124.21 करोड़ रुपए और स्टेट बोनस के रूप में 1.92 करोड़ रुपए मिलाकर कुल 126.13 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें से 102.15 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं, जो औसत भुगतान का 86% से अधिक है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

नमन मातृभूमि को, जिसने हमें भारतीय होने के सम्मान से नवाजा और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गौरव से विभूषित हमारा देश मानवीय मूल्यों और सर्वधर्म समभाव की मजबूत परंपराओं का वाहक है। हम अपनी मातृभूमि को माँ की संज्ञा देते हैं, जिसके गौरवगान का नाम है वंदे मातरम, जिसका अर्थ है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम गौरवगान की डेढ़ सदी। ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:10 होने को है। समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और दांबुला में तीन देशों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका ए के साथ पहले मैच में भारत ए ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
2: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। अधिक ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार जताया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी और हादसे की जाँच जारी है। अमेरिका की संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत।

0: पगत है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली सेना ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन अगर ईरान दोबारा हमला करता है तो इसराइल कड़ी कार्रवाई करेगा। ईरान के सशस्त्र बलों ने कहा कि उन्होंने इसराइल पर जवाबी कार्रवाई के बाद अपने हमले रोक दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ट्रेड्रोस अधनोम घेब्रेसस युगांडा के दौरे पर हैं। वे कांगो में जारी इबोला प्रकोप से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने युगांडा में संयुक्त राष्ट्र टीम के साथ बैठक कर समन्वय और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी से भी मुलाकात की। दुबई में एक सड़क हादसे में कई भारतीय कामगारों की मौत हो गई है। दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वाणिज्य दूतावास ने इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मैक्सिको की खाड़ी में सोमवार देर रात 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र क्यूबा के पश्चिमी तट के पास था। भूकंप के झटके क्यूबा, मैक्सिको और अमेरिका में फ्लोरिडा के कई इलाकों में महसूस किए गए। फिलीपींस के दक्षिण मिंडानाओ द्वीप के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के मिंडानाओ में आए भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि भारत का फिलीपींस के लोगों और सरकार के साथ पूरा समर्थन है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जया भारती।
1: डांबोला में तीन देशों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका ए के साथ पहले मैच में भारत ए टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहा है। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी हिस्सा ले रही है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इस बीच आईसीसी महिला क्रिकेट टी20 विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। उधर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आगामी महिला टी20 विश्व कप के लिए कमेंटेटर्स की सूची जारी कर दी है। इस बार कमेंट्री टीम में कई दिग्गज महिला खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज, अंजुम चोपड़ा और वेदा कृष्णमूर्ति के नाम प्रमुख हैं। इनके साथ दिनेश कार्तिक और जतिन सप्रू भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन आज से सिडनी में खेला जा रहा है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु 24 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई कर रही हैं। महिला सिंगल्स में युवा मालविका बंसोड़, अनमोल खरब, तन्वी शर्मा, ईशा रानी बरुआ, आकर्षी कश्यप और तान्या हेमनाथ भारत की चुनौती पेश करेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी, एचएस प्रणॉय और किरण जॉर्ज से भारत को उम्मीदें होंगी। तीरंदाजी विश्व कप का तीसरा चरण भी आज से तुर्की के आंताल्या में शुरू होने जा रहा है। इस चरण में भारत के उन सभी 12 तीरंदाजों पर नजर रहेंगी जो 2026 एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और खेल जगत से एक और खबर कि भारत ने उलान बटोर ओपन सीनियर रैंकिंग सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता में अपने अभियान का शानदार अंत किया। भारत ने फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती में कुल मिलाकर 17 पदक जीते और टीम तालिका में शीर्ष 3 में शामिल रहा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग के बाद सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और डांबोला में तीन देशों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका ए के साथ पहले मैच में भारतीय ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 374

दशमलव 5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

दोस्तों, ये वो धुन है जो आपको और हमें सारंगा कार्यक्रम के लिए जोड़ती है। और आप कहीं भी हो, आपको पता चल जाता है कि आपका मनपसंद कार्यक्रम सारंगा आकाशवाणी जबलपुर से ध्वनि तरंगों के माध्यम से आप तक पहुंचने वाला है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपका पसंदीदा है और बिल्कुल ऐसा ही कार्यक्रम है मनभावन, जो रात में होता है। और ये तय करना आपका काम है कि शीर्ष पर कौन सा कार्यक्रम है। हमारे लिए तो शीर्ष पर आप सारे श्रोता ही हैं। तो स्वीकार करें अपने दोस्त चमन सालवार का नमस्कार। आगाज पहले गीत का, और यह है पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। कटकहा पन्ना से प्रताप सेन, सविता सेन, प्रशांत, नेहा, अंबेश, कृष्णा और प्रांशी सेन। बोरखेड़ा पित्रमल उज्जैन से विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूडत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूडत। ये चिट्ठी दौलतबाग मुरादाबाद से है जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी की। डोंगरगांव राजनांदगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। ये गाना सुनिधि चौहान की आवाज़ में है। इरशाद कामिल ने इस गाने को लिखा, संदेश शांडिल्य ने संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम है चमेली।

बिल्कुल दोस्तों, संसार में सबसे चंचल और चपल कोई शय है तो वह है मन, जो वक्त से भी आगे भागता है और पीछे बहुत सारे गुबार छोड़ जाता है। मन बहुत सारे कारनामे को अंजाम देता है और बदनाम होता है दिल। अगला गाना दिल से ही है और दिल से सुनिए। इस गाने को आवाज़ दी है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। पसंदगी हमारे इन श्रोताओं की है। तेंदुखेड़ा विद्यानगर दमोह से ओम प्रकाश नेमा, किरण नेमा, आकाश विकास, नंदिनी, शिवांश और नेमा परिवार के लोग, बिरसिमो पाली उमरिया से हमारे श्रोता हैं, संतोष राव, भारती राव, बेलाबाई, विकास, ओम प्रकाश, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा, आलोट जिला रतलाम से जगदीश धाकड़, रंजूबाई धाकड़, युवराज धाकड़ और शिवांगी धाकड़, खंडवा लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे, कुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद, पिंडरे जिला मंडला से सुमत कुमार जैन, संजय जैन, कमला प्रसाद शर्मा, मोहम्मद मोहराली, कृपाल पटेल, बीड शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल, भाटापारा दत्रेंगे से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सापले पाटिल, दासदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मनन और तानिया, सारनाथ बनारस से बाबू यादव, श्रीमती मंशा यादव, दुर्गेश, सीमा, अन्नू और अरुणेश यादव।

दोस्तों अपने दिल की धड़कनों का ख्याल रखें, क्योंकि वो आपके दिल की सेहत बताती हैं। अगला गाना हमारे श्रोताओं ने सुनना चाहा है, गोटेगांव करकबेल नरसिंहपुर से राजेंद्र कुमार साहू, गायत्री गुलहनी, देविका साहू, देवांश, दीपक, गीता, कृष्णा और उनके परिवारजन। यहीं से कमलेश कहार, कविता, कल्पना, अंकिता, अंकित, नमन, मनीष, पार्वती, नम्रता, बादल, आकाश, कैलाश चंद्र।

जयंत दीपक सोनी और उनके बहुत सारे दोस्त हैं। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा। ये चिट्ठी कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा की। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के बाकी लोग हैं। सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, शरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार। अस्पताल रोड सागर से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर। धाम मोहल्ला पन्ना से कौशल किशोर मट्टू, संगीता मट्टू, हर्षित और वैभव मट्टू। लोहेड़ी महोबा से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनीरिया, दिव्यशी, रेणु, रोनिका यादव। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और महराज जहां। नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी रोली लकी, श्वेता और परू। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। कल्पा जिला सतना से लाल मोहम्मद, चांद मोहम्मद, सितारा खान, मौसमी खान, आशिकी अंजुम, मोहम्मद दिलशान पठान और परिवारजन। कानीवाड़ा सिवनी से संध्या चौरसिया और विजय चौरसिया। पजोनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरव शाइना और निवान शर्मा। और ये चिट्ठी पटेल नगर मलोट पंजाब की है, रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरसू जाजोरिया की। ये गाना संतोष आनंद ने लिखा, नदीम शमल ने संगीतबद्ध किया, अनुराधा पौडवाल ने गाया है। फिल्म का नाम है जुनून।

सेक्टर 67 मोहली चंडीगढ़ से खत है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप कालका से हैं, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। बाजारपारा बेमेतरा से भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत और वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी। बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर राजेश, शिवम शुभांग, सृष्टि, विवेक, वंदना और लवकुश। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। गीत राहत अंदोरी ने लिखा है, अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया, आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम है इश्क।

गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलबिंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक, नागचंद रोड खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक, जियाउल हक और मोहम्मद उमर डावर, जिला रायसेन खापरखेड़ा से तुलसी राम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार, आरती ममता और गोमती, बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति, माही पूजा छुटकी और शरद टोडवनी, वैष्णव कलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का ये आखिरी गाना, आवाज़ मधु और स्वर्णलता की, पी के मिश्रा के बोल और ए आर रहमान का संगीत। फिल्म का नाम आपके जहन में काफ़ी खुद आ चुका है, बिल्कुल हमसे है मुकाबला।

दोस्तों, मुकाबला सिर्फ खेलों में शोभा देता है, रिश्तों में तो बिल्कुल नहीं। इसलिए ऐसा कभी ना सोचें कि वो मुझे याद नहीं करता है या नहीं करती है तो मैं क्यों याद करूं। आप ही याद कर लें जैसे इस कार्यक्रम को याद करते हैं। और अब आपके अपने इस कार्यक्रम से अपने दोस्त चमन सालवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सारंगा, मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:58 होने को है और इस वक्त आप सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस। हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। एक पोस्ट में संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि समर्पण और सेवा भावना राष्ट्र निर्माण में सरकार की अमूल्य पूंजी रही है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज इंदौर में शुरू हो रहा है। 5 दिवसीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में अब से कुछ देर में मंत्रिपरिषद की बैठक भोपाल स्थित मंत्रालय में शुरू होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर परिषद की सहमति ली जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव सिंहस 2028 की तैयारियों के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज प्रदेश भर में शिविर लगाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। उन्होंने अपील की है कि वे आज आयोजित होने वाले शिविरों में पहुंचकर स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं और जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और भूजल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मेपकास्ट द्वारा उपग्रह छायाचित्रों पर आधारित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दस्तावेज भूजल एटलस अंतर्जली तैयार किया गया है। इसे भूजल प्रबंधन और जल गुणवत्ता का प्रभावी आकलन किया जा सकेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं छाया पाठक। और मित्रों कैसे हैं आप? उम्मीद है खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। श्रोताओं, हम जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं, उनमें से सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। कई बहुत गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं तो कई शांत, कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें गुस्सा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है, बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह। तो आज हमने हमारा कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में कुछ यही विषय चुना है आप सभी के लिए कि हमको जब गुस्सा आता है तो हम उस पे नियंत्रण किस प्रकार करते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते दीदी।
0: अपना नाम बताएं।
1: दयाशंकर कुशवाहा छतरपुर मध्य प्रदेश। हेलो
0: जी, फिर से बताएं अपना नाम।
1: दयाशंकर कुशवाहा छतरपुर से।
0: जी, हमारे आज की बातचीत का विषय है कि हम अपने गुस्से पर नियंत्रण किस तरह से करते हैं। तो गुस्सा सभी को आता है, जब हमें गुस्सा आता है बहुत तो हम किस तरह से अपने आप को रोकते हैं, कुछ बताएंगे?
1: शांत रहना पड़ता है गुस्सा के लिए।
0: जब गुस्सा आता है तब आप शांत हो जाते हैं।
1: शांति रहने पर कहाँ है।
0: हाँ, जो तो आपने सही कही कि भाई शांत रहकर ही गुस्से को अपन रोक सकते हैं। सामने वाला हमको शांत देखकर फिर अपने आप स्वतः ही शांत हो जाता है।
1: जी,
0: है ना, क्योंकि एक जन गुस्सा करता है, सामने वाला भी क्रोध करे तो बात जो है बहुत बढ़ जाती है। तो आप मतलब शांत हो जाते हैं जब आपको गुस्सा आता है?
1: हाँ जी।
0: तो घर वाले समझ जाते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है?
1: जी।
0: चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार।
0: बात हमारी गीत आपके।
1: बात हमारी, गीत आपके नहीं, बात आपकी, गीत हमारे।
0: हाँ
1: आपने,
0: हाँ
1: हाँ,
0: हाँ जो
1: उल्टा बोल
0: आपको
1: दिया।
0: बोलना था वो हम बोल गए। अनोखे
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम जान सकते हैं हम किससे बात कर रहे हैं?
0: सिंह।
1: अनोखे सिंह
0: हाँ
1: जी, आपसे तो पहले भी बातचीत हुई है मेरी।
0: हाँ ये जून में पहली बार हो रही बात।
1: नहीं, पहले भी कर चुकी हूँ मैं आपसे बात। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: बाग जिला धार।
1: धार से बोल रहे हैं
0: हाँ
1: जी। हमारी आज की बातचीत का विषय है, जब हमें गुस्सा आता है तो उस पर हम नियंत्रण कैसे करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं गुस्से को, आप कैसे करते हैं?
0: गुस्सा तो अपने आप आता नहीं सर, बाकी कारण सुबंध से अगर आए ऐसा तो उसको उतारना भी जरूरी है सर जी, किसी न किसी रूप में, भले नहा के उतारो के विवाद करके उतारो।
1: तो आप किस तरह उतारते हैं?
0: हम तो सर जी शासन और परमात्मा और पब्लिक का नियम है, तो हमको भी कोई गुस्सा दिला देता है या कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो बिल्कुल हम उस गुस्से को उससे
1: उतारते
0: उतारते
1: हैं,
0: हैं सर जी।
1: सामने वाले पे उतारते हैं गुस्सा।
0: हाँ, अगर वो ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है तो, नहीं तो अनजाने में तो सब एक दूसरे को माफ करते हैं,
1: माफ कर
0: एक्सीडेंट भी
1: देते
0: हो
1: हैं।
0: जाते हैं तो माफ कर देते हैं
1: जी जी
0: अनजाने में कुछ बात हो।
1: चलिए, तो आप गुस्सा उतार के फिर आपका गुस्सा शांत हो जाता है।
0: से नहीं गुस्सा जब भी उतारो कि हमको सबक मिले या सामने वालों को सबक मिले, फोकट गुस्सा थोड़ी होता है। हाँ
1: फोकट गुस्सा नहीं होते।
0: गुस्सा भी कोई चीज से उत्पन्न होता है, वो चीजों की तो खुराक है ही नहीं हमने
1: जी
0: भाई, आदमी की जैसी खुराक जैसी हाइट जैसा वैसा उसका उसका भगवान उसका गुस्सा रहेगा ही।
1: बिल्कुल बिल्कुल। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद सर।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। नाम बताएं।
1: नमस्ते जी जी
0: नमस्ते।
1: मैं तुलसीराम साहू बोल रहा हूँ। ये खापरखेड़ा जिला रायसेन मध्य प्रदेश,
0: रायसेन से बोल रहे हैं तुलसीराम जी।
1: रायसेन जिला मेरा रायसेन है,
0: जी
1: ग्राम खापरखेड़ा, मतलब आपके भोपाल से 160 किलोमीटर
0: जी
1: दूर।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे आज की बातचीत का विषय है, जब हमें गुस्सा आता है तो हम उस पर नियंत्रण किस प्रकार करते हैं, आप कुछ बताएंगे?
1: जी गुस्सा का कारण तो ये, जैसे हम गुस्सा कर रहे हैं तो अगर ज्यादा गुस्सा करेंगे तो हानि जरूर होगी, लेकिन जहां तक हो सके गुस्से को मतलब धीरे बन, मतलब धीरे से काम करो। कुछ भी काम करना आराम से काम लो, उसमें क्या आपको फायदा भी है, गुस्सा में बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात कही भाई। गुस्सा जब अपन करते हैं
1: गुस्सा
0: तो
1: गुस्सा
0: विवेक
1: एक
0: काम नहीं
1: अग्नि,
0: करते, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है ना।
1: यहाँ जुड़ क्या, गुस्सा एक अग्नि का रूप होता। और थोड़ी धीमी बात करो या मतलब धीरे काम करो, कुछ भी काम उसमें गुस्सा मत लाओ, तो भी एक मतलब संतुष्टि होती उसमें, असंतुष्ट कभी नहीं होता, गुस्सा में असंतोष होता।
0: जी।
1: ये कभी करो कुछ काम, या घर बच्चों से लड़ो या कुछ काम करो, गुस्सा में कभी मत, गुस्सा में बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल सही, गुस्से में काम बिगड़ जाते हैं, ये बात आपने अच्छी कही।
1: जैसे हम किसान लोग हैं जी, तो अभी ट्रैक्टर चल रहा हो खेत में, अगर हम सोचे भाई हमारे लिए गर्मी लग रही है, घाम लग रहा हो, हम छोड़ घर भाग जाए, नहीं, वो किसान ही काम है, मतलब थोड़ी वो करना भी पड़ेगा, गर्मी भी लगेगा तो घाम भी मतलब लगेगा, किसान तो अपन है तो करना पड़ेगा किसान ही काम। कई
0: करना पड़ेगा, अब
1: लोग
0: गुस्सा
1: गुस्सा में
0: दिखाएगा।
1: चलो,

0: हर
1: ये
0: वालों पे
1: सामान्य है।
0: दिखाएं कि भाई इतनी गर्मी में हम काम कर रहे हैं, सब घर में बैठे हैं आराम से, तो कोई फायदा तो होगा नहीं, है ना?
1: जी हाँ
0: आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, नमस्कार।
2: हाँ।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्ते। रमेश कोटवानी सतना से। अच्छा,
0: सतना से कोटवानी जी, आज हमारे कार्यक्रम का नाम है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें आज का विषय है कि जब आप गुस्सा करते हैं तो उसको रोकते कैसे हैं, जब हमको गुस्सा आता है किसी पर बहुत।
1: आता है तो रोकते हो गया, वही है, हो गया, शांत कर लेते अपने आप।
0: अच्छा, चुप हो जाते हैं एकदम से
1: हाँ
0: तो बातचीत बढ़ ही नहीं पाती है,
1: हाँ बढ़ने नहीं देते बात को।
0: बढ़ने नहीं देते हैं। बहुत अच्छी बात करते हैं आप। थोड़ी देर यदि हम
1: हाँ,
0: उस समय शांत हो जाएं, या
1: आज
0: हम
1: पहली आज हमारा पहली बार फोन लगा है।
0: जी,
1: आप कौन बोल रहे दीदी?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ
1: अच्छा, चाय पड़क जी,
0: जी।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। चलिए, अच्छी बात बताई आपने कि आप शांत हो जाते हैं तो गुस्सा धीरे से अपने आप समय के साथ गुस्सा भी चला जाता है।
1: जी जी जी
0: नमस्कार।
1: जी नमस्ते।

0: हेलो।
1: नमस्कार मैम
0: नमस्कार।
1: जी। मैम मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: अशोकनगर से सूर्य प्रताप
1: यादव
0: यादव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैम।
0: बढ़िया। और अशोकनगर में सब बढ़िया
1: हाँ सब बढ़िया है।
0: जी। कार्यक्रम का विषय है बात आपकी गीत हमारे, है ना?
1: हाँ जी मैम।
0: इसमें इसमें हमारा विषय है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो उसको कैसे रोकते हैं। किसी पर गुस्सा आता है जब हमको,
1: किसी पर अगर गुस्सा आए हमें तो सबसे पहले तो हमें अपने शब्दों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, संयम रहना चाहिए। थोड़ा सा गुस्से में बोले गए जो शब्द होते हैं ना वो मतलब एक तीर की तरह होते हैं, जो
0: तीर की
1: अगर
0: तरह चुभते हैं।
1: कमान से छूट जाते हैं तो फिर वो वापस नहीं आते हैं। तो अब सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि अपने बोलने पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं।
0: क्या बात कही आपने, 100 बात की एक बात कह दी। बिल्कुल, कि गुस्सा करें लेकिन अपने शब्दों पर कंट्रोल करें, संयमित व्यवहार करें, बोलें ऐसा जो चुभे ना लोगों को, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कहते
1: अगर
0: भी है ना
1: गुस्से
0: कि
1: में हम
0: भाई शब्दों के जो घाव होते हैं वो नहीं भरते,
1: वो नहीं भरते।
0: आपके शस्त्र का घाव भर
1: बिल्कुल
0: जाएगा
1: बिल्कुल
0: तीर
1: सही
0: का
1: कह
0: घाव
1: रहे
0: भर
1: हैं
0: जाता है, लेकिन शब्दों का जो हम घाव देते हैं किसी को वो नहीं भर पाता। हमेशा याद
1: जी।
0: रहता है सामने वाले को कि इसने हमसे ऐसा कहा था।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
0: बहुत अच्छी बात। चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: मैम। धन्यवाद।

0: हेलो, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: हाँ जी नमस्ते। हाँ
0: नमस्ते, जोर से बोलें थोड़ा।
1: जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जांगड़े छत्तीसगढ़ से, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी, हमारी आज की बातचीत का विषय है कि जब हमको गुस्सा आता है तो हम उस पर कंट्रोल कैसे करते हैं।
1: जी, इस बारे में तो हम यही कहेंगे कि जिस भी समय हम में थोड़ी उत्तेजना और गुस्सा का भाव हो तो उस समय कोशिश ये करें कि थोड़ा सा ध्यान को भटका ले। कहने का मतलब है या तो वहां से हट जाए या फिर दूसरी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर ले। फिर इससे होगा ये कि जो हम हमारे मनोभाव रहते हैं वो हम किसी और के ऊपर उसको मतलब नहीं ये करेंगे, क्योंकि
0: नहीं कर पाते।
1: हम उस मनोदशा में जब गुस्से का भाव में होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि सामने वाला को गलत लगे। तो सबसे बेहतर यही है कि उस समय हम थोड़ा सा अपने मन को काबू करें।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। वैसे भी देखो ना, होता ये है कि जैसे हमें किसी पर गुस्सा आ रहा है, वो उस समय नहीं है मान लो घर में मौजूद, पर हमें उसके किसी व्यवहार से आ रहा है, और जब तक हम उससे मिलते हैं 2-4 घंटे हो जाते हैं, तो आप देखिए गुस्सा स्वतः ही बहुत कुछ शांत हो जाता है। अगर उसी समय वो सामने होता है तो हम हो सकता है बहुत कुछ कहें उससे, पर जब बहुत समय बाद मिलता है तो अपने आप गुस्सा जो है स्वतः धीरे धीरे चला जाता है। तो ये बात अच्छी बताई कि हम हमारे मन को दूसरी जगह केंद्रित कर लें। जी, नमस्कार।

0: भी मुश्किल। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ मैडम, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जिला।
0: जी
1: हेलो
0: हाँ,
1: जी
0: हम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी बातचीत का विषय है जब
1: जी
0: हम गुस्सा करते हैं किसी पर, या हमें गुस्सा आता है बहुत, तब हम क्या करते हैं उस समय? हम गुस्से को नियंत्रित कैसे करते हैं?
1: देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, आप मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
0: छाया पाठक।
1: आया जी, नमस्कार। देखिए मेरा ये कहना है, मेरा तो ये मानना है कि जब भी हमको गुस्सा आता है तो हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि हमारा ध्यान जो है वो अब कहीं और लगाने की कोशिश करें, है ना। जैसे यार सबका अपना अपना रहता है। अब मैं अपना बताऊं कि मैं तो अपने प्रभु में का नाम सिमरन करने लगता हूँ, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है ना। या कोई अच्छा म्यूजिक, यदि कोई अच्छा गाना है अपनों को पसंद है तो
0: वो
1: मैं वो
0: चला
1: गाना
0: दिया।
1: सोच लेता हूँ। या
0: अच्छा,
1: सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊं कि आप चुपचाप 10 तक गिनती गिनिए,
0: अरे
1: है
0: वाह,
1: ना।
0: 10 तक
1: हाँ,
0: गिनती गिनी मन में।
1: अपन को देखिए, क्योंकि क्या होता है
0: जी
1: कि वो जो अपन को गुस्सा आता है, यदि अपन ने उस समय उसको कंट्रोल कर लिया तो आप फिर शांत हो जाएंगे। फिर आपके मन में ये जरूर रहेगा यार कि इसने बहुत गलत किया, लेकिन
0: गलत
1: आप
0: किया,
1: उतनी वो जो तीव्रता रहती है गुस्से की वो खत्म
0: खत्म
1: हो
0: हो
1: जाती
0: जाती
1: है
0: है। बिल्कुल,
1: जी,
0: इसीलिए
1: है ना।
0: कई लोग लंबी सांसें लेने लगते हैं, कई लोग संगीत सुनते
1: हाँ
0: हैं, कई अपनी पसंद का काम करते हैं, कई कुछ एक्सरसाइज करने लगते हैं, कई घर से बाहर चले जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह से लोग अपने गुस्से को
1: क्योंकि जो
0: शांत करते
1: क्रोध
0: हैं।
1: होता है ना मैडम, क्रोध जो होता है वो अग्नि से भी तेज होता है, जा भी गया है ना। और उस समय तो अपन को समझ में नहीं आता, लेकिन जब अपना शांत होता है ना क्रोध, तो अपन सोचते हैं यार अपन ने बहुत गलत किया,
0: चले,
1: है ना।
0: बहुत
1: ये
0: अच्छी
1: बात
0: बात आपने
1: तो अपन
0: बताई
1: संभाल भी सकते। जी
0: विवेक जी, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। आपका नाम जान सकती हूँ मैं?
1: हरदयाल जाटव, जिला सेफनी मठफर्दी।
0: हरदयाल यादव
1: जाटव जाटव
0: जादव
1: हरदयाल जाटव,
0: जी, कहाँ से?
1: सेफनी जिला से।
0: सीपरी से। हमारे कार्यक्रम में आज का विषय है कि जब हमको गुस्सा आता है तो उसको हम
1: हाँ,
0: किस तरह से उस पर कंट्रोल करते हैं। आप किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं उस समय?
1: गुस्सा को तो मैडम जी ये है कि अपने आप को काबू में करना पड़ता है और शांत करना पड़ता है।
0: कैसे काबू में करते हैं आप?
1: माने ऐसे करते कि अपन बगल माने शांत करने के लिए निकल जाते हैं, अंत माने
0: हाँ
1: बरकाव दे जाते हैं किसी को,
0: जी,
1: माने काबू में कर लेते हैं शांत करके
0: नहीं, हम अपने आप को कैसे, हमको जब
1: अपने
0: गुस्सा आता है किसी पर, हमको आता है, तो हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं?
1: अपने मन को तो कंट्रोल, मैडम जी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान मुझको
0: भगवान का नाम
1: तसल्ली
0: लेते हैं।
1: दो, कंट्रोल में अपने आप हो जाता है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। इस बहाने एक पन दो काज।
1: हाँ जी, हाँ
0: देखिए, भगवान का नाम भी हो गया,
1: जी,
0: तो हम तो ये चाहेंगे कि आपको हरदयाल जी बार बार गुस्सा आए,
1: नहीं नहीं जी,
0: ताकि
1: गुस्सा तो
0: ताकि आप
1: मैडम जी
0: ईश्वर का नाम
1: गुस्सा नहीं,
0: लेते रहें इसी तरह।
1: अगर सामने वाला लड़ता है तो अपन शांत रहे होते हैं, ठंडे मुंह से बात करते हैं। गुस्सा पर कभी जिंदगी में आया नहीं।
0: नहीं आया आपको?
1: नहीं नहीं
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छी,
1: नहीं।
0: बहुत अच्छी बात है। आए
1: मैडम
0: बिना
1: आपका नाम, मैडम
0: छाया पाठक।
1: आपसे पहले ही बात हो चुकी है।
0: जी,
1: हाँ
0: हो
1: जी,
0: चुकी बात है
1: मैंने
0: ना।
1: सर जैसे भी लगाया, घंटी गई, मैं उठाया कॉल नहीं, पर मैंने लगाना बंद कर, जब देखो तो ट्राई करके।
0: अच्छा, फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आज हमारा विषय था कि हम अपने गुस्से पर नियंत्रण किस तरह करें, उसको शांत करने के लिए क्या उपाय करें। बहुत से श्रोताओं ने हमसे अपने विचार साझा किए। कभी कभी ये भी होता है कि हम उस जगह को छोड़ दें या फिर हम उल्टी गिनती शुरू कर दें, जैसे 10 से लेकर 1, 10, 9, 8, 7, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई हम कुछ डायरी लिखने लगें, कल्पना मन में कर लें कि भाई हमें गुस्सा शांत रखना है, नहीं हमें नहीं बोलना। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बाहर टहलने निकल जाएं, अपनी मनपसंद संगीत सुन लें, या फिर शांत होकर के गहरी गहरी सांसें लें। ये बहुत से उपाय हैं जो हमारे गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आज के कार्यक्रम से आपसे अनुमति लेती हूँ। आज्ञा दीजिए छाया पाठक को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति छाया पाठक की थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नवजात मृत्यु दर को कम करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। उन्होंने अपील की है कि वे शिविरों में पहुंचकर स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं। इंदौर में आज ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। 5 दिवसीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों को मजबूत बनाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। प्रदेश में संविदा कर्मियों के वेतन में 4.5% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अप्रैल 2026 से 1,00,000 संविदा कर्मियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। राज्य एचपीवी टीकाकरण अभियान में शीर्ष राज्यों में शामिल है। स्वास्थ्य अमले, सहयोगी विभागों की प्रतिबद्धता, सतत मॉनिटरिंग के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 7.63 लाख से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया जा चुका है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश, गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि राज्य में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपके पसंद के गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जिसे लेकर आपके साथ हूं मैं आकांक्षा। नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म साया से। आवाज़ अलका याग्निक और उदित नारायण की है, बोल आनंद बख्शी के हैं। इसे संगीत से सजाया है MM करीम ने। पसंद भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। उपाध्याय नगर देवास से मुरारी।

लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, राजा रामनगर देवास से ही राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल, रूपाखेड़ी से हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल निरंजन माली, सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी, गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम और दशरथ बागवान। आप सभी की पसंद है फिल्म साया का ये गीत सुनने की, लीजिए सुनिए।

सारणी जिला बैतूल से गणेश सिमैया, विजय, अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारसमणि वाद्य, पंजाब राव और संदीप पाटिल, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या, आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए फिल्म ना तुम जानो ना हम का गीत अभिजीत और पमेला जैन की आवाज़ों में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत है राजेश रोशन का।

नीलेश मिश्रा का लिखा गीत सुनिए जिसे संगीत से सजाया है MM करीम ने। आवाज़ श्रेया घोषाल की है और फिल्म का नाम है जिस्म। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राजू शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरव शर्मा की। इसी गीत को सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। साथ ही सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म जिस्म का ये गीत।

महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, प्रिया, जीत और इच्छा। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म राज का गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक ने, गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनिए।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जंग लगी तलवार की चौथी कड़ी।
5: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना नारायणी को प्रसव का

दर्द शुरू होता है। वो एक लड़के को जन्म देती है जो पैदा होते ही मर जाता है। नारायणी भगवान की इच्छा को अपने पाप के बोझ से मुक्त मिलने की बात सोचकर इस दुख को सहन कर लेती है। शिबू यशवंत के यूनियन में प्रतिनिधि बनने की खुशी में भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करवाता है। ब्राह्मण पंडित दलितों की पूजा करवाने से इनकार कर देता है तो यशवंत स्वयं पंडित की भूमिका निभाता है। चारेंगखेरा से ठाकुर साहब का साई नदी पर तबादला हो जाता है। रामू बामू नामक दो जुड़वा भाइयों के चेहरे ठाकुर साहब को देखते ही खिल जाते हैं। विजिलेंस ब्रांच का एसपी ठाकुर साहब से मिलता है और सीमेंट घोटाले के मामले में सन 1974 की फाइल मांगता है। फाइल लेकर एसपी चला जाता है। यूनियन की बैठक होती है। बलबीर स्वामी मजदूरों की मांगे मनवाने के लिए हड़ताल को अंतिम अस्त्र बताता है। उधर नारायणी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। शिबू बहुत खुश होता है और सभी को ये खुशखबरी सुनाने जाता है। अब आगे

0: जगन्नाथ।
1: अरे बेटा जगन्नाथ।
2: क्या है बापू?
0: बेटा एक गिलास पानी तो पिला।
2: अभी लाया बापू।
0: बेचारा जगन्नाथ, अरे अभी 10 बरस का ही तो है, पढ़ने लिखने का कितना शौक है इसे। मैं खुद तो पढ़ लिख नहीं सका, लेकिन जगन्नाथ को पढ़ा लिखा कर बड़ा बाबू बनाने की बड़ी तमन्ना है मेरी, लेकिन कहां से, पेट भरने लायक भी तो नहीं कमा पाता हूं, फिर भला इसे स्कूल कैसे भेज सकता हूं। हाँ, कैसे भेज सकता हूं। और वो जगन्नाथ की मां बेचारी ने 2 बरस पहले बीमारी और भूख के कारण दम तोड़ दिया। अरे मजबूरन साई नदी में बहा देना पड़ा। तब बेचारे नन्हे जगन्नाथ ने अपनी मां की लाश की कैसी दुर्दशा देखी थी। कैसी दुर्दशा।

0: अरे शंभू, तू यहाँ क्या कर रहा है?
1: जगन्नाथ, चल नदी में नहाते हैं।
0: नहीं, मेरा बापू कहता है कि नदी में नहाने से मैं डूब जाऊंगा। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा।
1: गहरे पानी में जाएगा तब डूबेगा ना। देख, उस तरफ गहरा पानी नहीं है, वहाँ हम नहीं डूबेंगे, चल ना।
0: नहीं, अगर मेरे बापू को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेगा।
1: तेरे बापू को कौन बताएगा, तू खुद?
0: नहीं नहीं, भला मैं क्यों बताऊंगा?
1: तो मैं भी नहीं बताऊंगा, फिर भला कैसे पता चलेगा तेरे बापू को?
0: इसका मतलब बापू को पता ही नहीं चलेगा कि मैं नदी में नहाया था।
1: यही तो।
0: चल चल, बहुत मजा आएगा। चल चल चल, चल। अरे बाप रे, इतनी सारी चील, इतने सारे गिद्ध।
1: हाँ,
0: कैसी डरावनी आवाज निकाल रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
1: डर तो मुझे भी लग रहा है। मेरा बाबा कहता है कि चील और गिद्ध वहीं आते हैं जहाँ कोई लाश होती है।
0: अच्छा, तो क्या यहाँ भी कोई लाश पड़ी होगी?
1: शायद।
0: चल शंभू, घर वापस चलते हैं।
1: तू डरता क्यों है? गिद्ध लाश को नोचते हैं, जिंदा लोगों को नहीं। अरे उधर देख जगन्नाथ।
0: हाँ, किधर?
1: उधर
0: क्या है? उधर
1: वो नदी के किनारे किसी की लाश पड़ी है।
0: हाँ, हाँ। लगती तो लाश ही है, किसकी होगी शंभू?
1: क्या पता, चल चल पास चलकर देखते।

0: अच्छा चल चल चल चल। शंभू,
1: हाँ
0: शायद ये किसी औरत की लाश है।
1: लाश, उसने धोती पहन रखी है।
0: हाँ चल थोड़ा और पास चलकर देखते हैं।
1: नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा।
0: चलना,
1: मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा।
0: चलना शंभू।
1: नहीं अरे जगन्नाथ, ये तो तेरी माँ की लाश है।
0: ये तो सचमुच मेरी माँ की लाश है। माँ, माँ,
1: जगन्नाथ, जगन्नाथ, तू कहाँ जा रहा है?
0: मेरी माँ को किस तरह नोच नोच कर खा रहे हैं।
1: जगन्नाथ,

0: बापू पानी।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: हाँ, ये लो बापू।
1: जगन्नाथ। हाँ बेटा। हाँ मेरे पास बैठ।
0: अच्छा बापू।
1: जगन्नाथ
0: बापू। बापू
2: नींद में हो शिव भैया।
3: अरे लिचू भैया आओ आओ आओ बैठो बैठो बैठो।
2: लगता है सो रहे थे।
3: अरे नहीं लिचू भैया, सो तो मुन्ना रहा है। अपनी आंखों में नींद कहाँ। हाँ वैसे एक बात है, भगवान ने हमें धन भले ही ना दिया हो मगर नींद खूब दी है। अरे इतनी नींद दी है कि बस हम तो छक गए। अरे नींद से ऊब गए हैं हम तो।
2: मतलब शिवू भैया कि खटिया भी हमसे पनाह मांग गई है।
3: लिचू भैया और सुनाओ। लिचू भैया क्या कोई नई खबर है।
2: अरे खबर क्या है शिवू, हड़ताल होगी हड़ताल, यानी महाभारत होगा।
3: अच्छा?
2: अरे फिर पिसेंगे हम गरीब। कौन है हम गरीबों की सुध लेने वाला। कोई नहीं कोई नहीं, सब अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं।
3: हाँ लिचू भैया ये सब तो दादा परदादा के समय से चला ही आ रहा है।
2: हाँ भैया
3: पहले खेतों में मजदूरी करते थे, अब कंपनी में काम करते हैं। पहले साहूकार खून चूसते थे, अब कंपनी वाले चूसते हैं। लिचू भैया हमारे लिए तो वो मरे हुए जानवरों का धंधा ही अच्छा था।
2: अजी काहे का अच्छा था। पहले तो मरे हुए जानवरों की खाल उधेड़ो, हड्डियां इकट्ठी करो, फिर जिस गांव में जाकर बैठो वहीं लात और घूंसे मिलते थे। अरे गालियों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। दूसरे गांव जाओ तो वहां भी यही कहानी। अरे हर गांव की एक सी कहानी है शिवू, एक सी।
3: हाँ लिचू ठीक कहता है। तो ऐसे लिचू एक बात सोची है तूने कभी।
2: मैं तो रोज ही बहुत सी बातें सोचता हूँ शिव, मगर तू किस बात की बात कर रहा है।
3: अरे लिचू मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई हमारी जिंदगी की सच्ची सच्ची कहानी लिखे तो क्या हो।
2: तू भी कैसी अजीब बात सोचता है शिव। अरे क्या हम कोई राजा महाराजा हैं, बड़ी कंपनी के मालिक हैं, कोई जागीरदार हैं या जमींदार हैं जो कोई हमारी जिंदगी पर कहानी लिखेगा। अरे किसे है हमसे हमदर्दी शिबू, किसे है।
3: क्यों क्या फिल्मों में गरीब लोगों की कहानी नहीं दिखाते। अरे सच बात तो यह है लिचू,

0: में जितना दिखाते हैं ना, हमारी जिंदगी की सच्ची कहानी उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है।
1: हाँ तो ठीक कहता है शिवो,
2: जितना दर्द हमारी जिंदगी में है, अरे उतना तो रोज पीटे जाने वाले जानवरों की जिंदगी में भी नहीं होता।
0: लिचू, कभी सोचा है तूने ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है?
2: बहुत सोचा है शिबू, एक बार नहीं हजार बार सोचा है।
0: तो कुछ समझ में आया, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है हमारे
2: साथ? हाँ आया, और इसके तीन कारण हैं।
0: तीन कारण?
2: हाँ
0: कौन कौन से तीन कारण
2: शिबू? पहला कारण तो ये है कि हमारे देश में मजदूरों की भरमार है। अरे एक मजदूर को हटाओ तो उसकी जगह लेने के लिए 10 मजदूर तैयार खड़े हैं। अब देखो ना, हम मजदूरों के संतान अधिक होती है जबकि साहब लोगों के घरों में कम। अरे उनकी मांग है और हमारी दुत्कार।
0: हाँ लीचू भैया, ये बात तो सच है। और दूसरा कारण?
2: और दूसरा हम मजदूरों का अनपढ़ होना। अरे हम मजदूरों का अनपढ़ होना, पढ़े लिखे को सब पूछते हैं शिबू, जबकि अनपढ़ों को दुत्कार दिया जाता है उनकी अपनी किस्मत पर रोने के लिए।
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब देखो ना, इस दलित लाइन में यशवंत अकेला पढ़ा लिखा है, तभी तो वो यूनियन का नेता बन गया, जबकि हम और तुम यहां बैठे इधर उधर की बातें मनाकर समय काट रहे हैं। ये बात तो है ही। वैसे लीचू, तीसरा कारण क्या है?
2: अरे तीसरी बात तो ये है शिबू कि हमारे अंदर ऊपर उठने की आत्मशक्ति ही नहीं है।
0: हा?
2: अरे हमें खुद पर ही विश्वास नहीं है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नहीं।
0: अरे वाह, अरे लीचू तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी बन गया रे।
2: अरे नहीं।
0: कमाल है, तेरी बातें किसी पढ़े लिखे विद्वान से कम थोड़ी हैं।
2: अरे अब इन बातों को छोड़ो भैया, मुझे तो मजदूरों के ऊपर संकट के बादल घिरते नजर आ रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है शिवू जब यहाँ पर चारों ओर लाशें ही लाशें होंगी और आसमान में चील और गिद्ध उड़ेंगे।
0: चील और गिद्ध? चील और गिद्ध? क्या कह रहे हो लीचू भैया?

0: अरे कमाल है, ये रामू बामू अभी तक नहीं आए, जाने कहाँ रह गए?
1: हम हाजिर हैं ठाकुर साहब।
0: अरे कहाँ थे तुम दोनों?
2: आपके सेवक आपकी सेवा में हाजिर है सरकार।
3: हाँ सरकार, हुक्म करे।
0: अब दरवाजे पर खड़े रहने का ही इरादा है या अंदर ना आने की कसम खाई है?
2: चल बाबू, ठाकुर साहब अपने पास बुला रहे हैं।
3: अरे हाँ, चल रामू।
2: सरकार,
0: और बताओ नई खबर क्या है?
3: ठाकुर साहब, आपके आदेश का पालन करते हुए हम दोनों ने यूनियन की सभाओं में जाना शुरू कर दिया है।
0: ये तो बहुत अच्छा किया।
2: सरकार,
0: अंदर का समाचार क्या है?
2: हुजूर, यूनियन हड़ताल पर आमादा है।
3: हाँ,
0: अच्छा।
3: ठाकुर साहब, आपके पैर दबा दूं?
0: चल दबा दे।
2: हुजूर, रेडियो तो बंद कर दीजिए, इसकी कान फोड़ू आवाज, आपकी मधुर आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचने दे रही सरकार।
0: तुम दोनों बहुत अच्छे हो।
2: मेहरबानी सरकार,
0: मैं अभी बंद करता हूँ।
3: धन्यवाद ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, एक बात कहूँ, आपके पैर दबाने में, आपकी सेवा करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। देखो ना, कितना बलिष्ठ शरीर है आपका।
0: पुराना देसी घी खाया है रामू? जरा बाहर तो देख, आसपास कोई छिपा तो नहीं है?
2: अभी देखता हूँ सरकार, अगर कोई होगा तो हड्डी पसली तोड़कर सीधे अस्पताल पहुंचाऊंगा सरकार।
3: देखने गया अभी, आके बताता है।
2: कोई नहीं है सरकार, कोई नहीं है। करा कौन हिम्मत करेगा, आपका रुआ भी काफी है सरकार।
3: सरकार।
0: सुना है यूनियन की कोई गुप्त सभा होने वाली है?

0: हाँ सरकार,
1: हड़ताल की तारीख तय करने और नोटिस जारी करने के लिए गांव के चौधरी के खेत में सभा होने जा रही है सरकार। लेकिन सरकार ये बात आपको कैसे पता चली?
2: हाँ सरकार,
3: तू मुझे नहीं जानता, मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूँ।
1: सरकार, हाँ मेरे सरकार, इस बात को हमसे बेहतर और कौन जान सकता है?
2: क्यों ठीक कह रहा भाई तू। हुजूर,
3: मानता हूँ कि चापलूसी की प्रतियोगिता हो तो सोने का तमगा तुम दोनों को ही मिलेगा।
2: अरे अरे सरकार की बातें,
3: तुम दोनों को अपना काम पता है ना?
2: पता है सरकार, बिल्कुल। हम दोनों यूनियन की गुप्त सभा में जाएंगे।
1: हाँ, और वहाँ की तमाम गोपनीय खबर आप तक पहुँचाएंगे।
3: शाबाश
1: सरकार। सरकार एक पैग और बनाऊ?
3: नहीं नहीं, मुझे नशा होने लगा है। तुम्हें पीनी हो तो अपने लिए बना लो।
2: तो सरकार हम ये बोतल लिए जाते हैं, थोड़ी देर साई के तट पर बैठेंगे, वही इसके साथ अपना मनोरंजन कर लेंगे सरकार।
3: बहुत बड़े उस्ताद हो तुम दोनों।
1: अरे हम क्या हैं सरकार, ना तो हम पित्ती हैं ना पित्ती का शोरबा, अगर कुछ है भी तो आपकी शराफत का एक जर्रा भर है।
2: बहुत छोटा सा जर्रा सरकार।
3: भाई मैं तुम दोनों को इसलिए पसंद करता हूँ कि तुम सामने वाले को खुश कर देते हो।
2: सरकार,
3: तुम जैसे लोग बहुत जल्दी तरक्की करते हो।
1: तो ठाकुर साहब बोतल ले जाए।
3: आ जा जा जा, ले जाओ।
2: अरे सरकार जिंदाबाद।

0: अरे क्या बात है शिबू, इतना खांस क्यों रहा है?
1: अरे यशवंत नेता जी,
0: मुझे नेता कहकर हमारे इंसानी रिश्ते को ना तोड़ शिबू। अरे हम दोनों तो धर्म भाई हैं।
1: यशवंत जी आप पढ़े
0: लिखे। ना ना ना शिबू ना, अभी बिल्कुल ना बोल। देख शायद तेरी तबीयत ज्यादा खराब है, कहे तो डॉक्टर या वैद्य के पास ले चला। अरे
1: यशवंत बाबू, हाँ मेरी बात अधूरी रह गई। मैं कह रहा था कि आप पढ़े लिखे हैं और मजदूर यूनियन में आप पहले दलित प्रतिनिधि हैं।
0: हाँ
1: हम दलित मजदूरों को आपसे अपने उद्धार की बड़ी आस है। यशवंत बाबू,
0: हाँ शिबू,
1: जिस तरह अंबेडकर भगवान ने देश के दलितों की अगुवाई कर शोषण की दलदल से उबारा था,
0: शिबू
1: उसी तरह आप भी साइंस साइट पर काम करने वाले दलित मजदूरों के उद्धार के लिए लड़ रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं, एक देशभक्त नेता का यही सच्चा गुण होता है।
0: शिबू,
1: तो फिर मैं आपको नेताजी ना कहूं तो और क्या कहूं यशवंत बाबू?
0: अरे शिबू, थोड़े शब्दों में तूने मेरी प्रशंसा के पुल बांध दिए। मुझे भगवान बनाने की कोशिश ना कर शिबू। इस कलयुग में इंसान को भगवान के दर्शन नहीं होते। देख, मुझे इंसानों से, अपने से अलग ना कर, मुझे अपने बराबर रहने दे मेरे भाई।
1: यशवंत बाबू, आपकी बातें हैं, आपके विचार सरल और सच्ची इंसानियत की मिसाल हैं। आप जैसे इंसान पर किसी भी समाज को गर्व हो सकता है, खासकर दबे कुचले और उपेक्षित समाज को। दलित मजदूरों में आपका सम्मान बहुत बढ़ गया है।
0: अरे शिबू, मुझे सम्मान नहीं, तुम लोगों का सहयोग और प्यार चाहिए। देख, हड़ताल की ये जो बातें चल रही हैं ना, उस पर मुझे संदेह है।
1: संदेह? कैसा संदेह?

0: हड़ताल की तारीख घोषित होने वाली है, लेकिन अभी तक हड़ताल का हमें मकसद नहीं मालूम है।
1: यशवंत बाबू, उस दिन बलबीर स्वामी ने कहा तो था हम मजदूरों को परमानेंट करवाने के लिए हड़ताल होगी, लेकिन कभी किसी की छटनी नहीं होगी।
0: अरे शिबू, इस तरह पहले भी कई हड़तालें हो चुकी हैं, हर बार या तो यूनियन के नेता बिक जाते हैं या फिर धन के अभाव में हड़ताल दम तोड़ देती है।
1: अरे यशवंत बाबू, आपने सुना नहीं था क्या, मजदूरों से चंदा लिया जाएगा, जरूरत पड़ने पर मजदूर यूनियन के मुख्यालय से भी मदद ली जाएगी।
0: मजदूरों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई का चंदा तो मिल जाएगा यूनियन को शिबू, मगर इसी चंदे से बने यूनियन फंड से कोई मदद मिलेगी इसकी संभावना मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती।
1: तो क्या यूनियन के स्थानीय नेताओं का दावा खोखला है? शास्त्री जी का सहायक झूठ बोल रहा है।
0: झूठ और दावों का सहारा नहीं लेंगे तो मजदूर बहकावे में कैसे आएंगे? बहकावे में आए बिना भला मजदूर अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई का चंदा देंगे? और अगर चंदा नहीं आएगा तो यूनियन के नेता गुलछर्रे कैसे उड़ाएंगे शिबू?
1: हड़ताल के पीछे यूनियन नेताओं के मौज मस्ती का षड्यंत्र।
0: हाँ शिबू हाँ।
1: यशवंत बाबू, आपको इसके खिलाफ मजदूरों को सचेत करना चाहिए।
0: अरे कोई फायदा नहीं होगा शिबू, कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास इतने साधन नहीं हैं जितने यूनियन के नेताओं के पास हैं, और मोर्चा हमेशा साधनों से जीता जाता है शिबू।
1: ठीक कहते हैं आप, मोर्चा हमेशा साधनों से जीता जाता है, तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना होगा?
0: अरे फिलहाल हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है।
1: यशवंत बाबू, थोड़े ही दिनों में मैं आपका स्वभाव अच्छी तरह से पहचान गया हूं।
0: अब
1: मैं जानता हूं इस षड्यंत्र के खिलाफ आवाज उठाने वाले आप पहले आदमी होंगे, और आपके हाथ में होगी तलवार, वो तलवार जिस पर लाचारी की जंग नहीं लगी होगी, बल्कि
0: शिबू
1: बल्कि विद्रोह की चमक होगी, चमक।
0: देख शिबू, भविष्य के गर्भ में क्या है इस विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
1: ठीक कहते हैं आप।
0: अरे शिबू, ये क्या शिबू, बलगम के साथ खून? क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है?
1: 5-7 बार हो चुका है।
0: अरे और तूने इस बात पर गौर नहीं किया?
1: अरे यशवंत बाबू, इसमें गौर करने वाली बात ही क्या है,
0: अनपढ़ समाज में स्वास्थ्य जागरूकता का अभाव है, गंदगी में रहने के लिए विवश होने के कारण भी अनपढ़ गवार मजदूर अनजाने में खतरनाक बीमारियों को पालने लगता है। अरे शिबू, तुझे टीबी की बीमारी हो सकती है, टीबी की।
1: टीबी?
0: हाँ टीबी। देख जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखा, नहीं तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा तू। शिबू।
1: अरे यशवंत बाबू, ये तो खुशी की बात है। हे भगवान, तेरा धन्यवाद।
0: शिबू,
1: जाति शोषण और अपमान भरी जिंदगी से मैं आप लोगों से पहले मुक्त हो जाऊंगा। क्यों? हो रही है ना आपको भी मेरे भाग्य से ईर्ष्या?
0: शिबू देख, तू पागलपन की बात ना कर, मेरी मान तो अभी जा डॉक्टर के पास। देख अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मुझसे ले ले, अब यह ठहर, मैं तेरे साथ चलता हूं डॉक्टर के पास।
1: कोई जरूरत नहीं।
0: अरे अपने आप को संभाल शिबू, चल मेरे साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: अब हम सुन रहे थे संग्रहालय से इस कार्यक्रम में जंग लगी तलवार, इस धारावाहिक की चौथी कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। उन्होंने अपील की कि वे शिविरों में पहुंचकर स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं। इंदौर में आज ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। 5 दिवसीय इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों को मजबूत बनाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में संविदा कर्मियों के वेतन में 4.5% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अप्रैल 2026 से 1,00,000 संविदा कर्मियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम में दावे आपत्ति 15 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा और फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को होगा। जम्मू कश्मीर में होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर शीर्ष अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। इसके साथ ही पुलिस, सेना, CRPF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से चर्चा कर यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन पर बल दिया गया है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है।

महिला सभा सुनने वाली सभी प्यारी सखियों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। आज आपके साथ हूँ मैं प्रीति जोशी, आप सभी को मेरा नमस्कार। सखियों, आज करेंगे आपसे बहुत सारी बातें और सुनवाएंगे कुछ प्यारे से मधुर गीत, लेकिन पहले बात करते हैं डिजिटल डिटॉक्स की। जी हाँ सखियों, आज के समय में मोबाइल, कंप्यूटर और सोशल मीडिया हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि इनके अत्यधिक उपयोग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे में डिजिटल डिटॉक्स

यानी कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए सखियों प्रतिदिन कुछ समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें। भोजन के समय फोन का उपयोग बंद करें। किताबें पढ़ने, व्यायाम करने या किसी रचनात्मक गतिविधि में समय दें। सोने के एक घंटा पहले स्क्रीन बंद करने की आदत जरूर डालें और यही सारी चीजें आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। इससे आपको कई लाभ होंगे। आंखों पर पड़ने वाला तनाव कम होगा, नींद अच्छे से आएगी, मानसिक तनाव भी कम होगा, परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, प्रकृति और वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़ाव बढ़ता है। सखियों, डिजिटल तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाती है, लेकिन इसका संतुलित उपयोग ही हमें स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। इसीलिए समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स अपनाना बेहद जरूरी है। अब आगे आपसे और भी बातें होंगी, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: देश में यह सहायता विभिन्न योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के माध्यम से दी जाती है। इस योजना के बहुत सारे लाभ हैं सखियों। नया व्यापार या उद्योग शुरू करने के लिए बैंक ऋण की सुविधा है, अनुदान सहायता प्राप्त कर सकते हैं आप इस योजना के जरिए, ब्याज अनुदान ऋण गारंटी सहायता है, उद्यमिता विकास एवं व्यवसाय प्रबंधन का प्रशिक्षण रोजगार सृजन को बढ़ावा देना भी इस योजना का उद्देश्य है। पात्रता की बात करें सखियों तो आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी हो, स्वरोजगार या नया व्यवसाय स्थापित करने की इच्छा रखता हो, साथ ही वह शैक्षणिक योग्यता रखता हो। आवेदन करने के लिए सखियों आवेदक राज्य के MSME पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। तो सखियों आप भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। और अब कार्यक्रम में शामिल होते हैं और भरते हैं हौसलों की उड़ान।
1: उड़ान खुशियों की, उड़ान सपनों की, उड़ान हौसलों की, मेरी उड़ान।
0: सखियों श्रृंखला मेरी उड़ान में आज हम मिल रहे हैं क्लासिकल डांस टीचर से, आइए इनसे जानते हैं इनका परिचय।
2: नमस्कार सखियों, मैं क्लासिकल डांस टीचर हूँ। इंदौर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में मेरी खुद की डांस एकेडमी भी है और मैं क्लासिकल गुरुकुल भी चलाती हूँ। मेरा नाम दिया सिंह ठाकुर है।
0: दिया जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपने बताया कि आप एक डांस टीचर हैं, तो नृत्य कला के क्षेत्र में आपने कैसे सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना है, इसे बतौर करियर लेना है?
2: मुझे बहुत ही शौक था बचपन से डांस करने का। पढ़ाई में मेरा मन लगता नहीं था, कहीं भी म्यूजिक सुनती थी तो मुझे अच्छा लगने लगता था। तब मैंने मेरे अपने पापा से बोला कि स्कूल में शंकर जी और पार्वती जी का डांस है तो वो एज अ वंदना एज अ पूजा होगी, मुझे करने दीजिए। तब पापा एग्री हुए और वहां से मेरा डांस का सिलसिला शुरू हुआ और आज मैंने MA कंप्लीट करके PhD में हूँ कथक में। और मैं आप सभी को ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई कला है तो उसे मत छुपाइए, लोगों को बताने की अलग अलग तरीके से कोशिश कीजिए। कोई तो ऐसा तरीका होगा आपके बताने का जो आपके पेरेंट्स को, आपके घर वालों को समझ में आएगा।
0: बहुत अच्छी बात कही। तो आप इस फील्ड में जब आई तो आपने किस तरह के कोर्स करे, क्योंकि हमारी कोई श्रोता सखी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती है, एक डांस टीचर बनना चाहती है, तो उन्हें किन बातों को जानना जरूरी है आप बताइए।
2: देखिए जैसे बॉलीवुड वेस्टर्न फिल्मी आजकल की तो देखा जाए तो पूरी दुनिया ही दीवानी है डांस और म्यूजिक की। हम चाहें तो इसमें हमारी आय का जरिया बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपको घर से कोई कोर्स करने की परमिशन नहीं है तो आप ऑनलाइन भी काफी सारे कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं, वो करके आप अपने घर पे भी क्लासेस खोल सकते हैं जिससे आप अपनी आय कमा सकते हैं। इसके अलावा क्लासिकल में डिग्री होती है, BA होता है, MA होता है, PhD होता है, डिपेंड ऑन यू। आपको कुछ भी अगर करने मिलता है तो यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं आजकल क्लासिकल की, कथक भरतनाट्यम बहुत सारे आर्ट फॉर्म है क्लासिकल में जिसकी डिग्रियां होती हैं, जिसका पे स्केल शुरू होता है फर्स्ट ईयर से 20,000, मतलब कि अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी आय कर सकती हैं, अपने परिवार को भी चला सकती हैं, अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट कर सकती हैं।
0: जब आप इस क्षेत्र में आई तो किस तरह की परेशानियों का सामना आपने किया?
2: एक्चुअली घर वालों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था, कुछ पता भी नहीं था कि मैं क्या करूं, कैसे आगे बढूं, तो ये बड़ा चैलेंज था कि घर वालों को कैसे मनाए। फिर पापा ने कहा कि नहीं बिल्कुल डांस में नहीं जाना है, अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करा। तब मैंने पापा से कहा कि नहीं पापा मैं पढ़ाई भी प्रॉपर करूंगी और मुझे डांस में भी डिग्री करनी है। फिर धीरे धीरे घर वाले मानने लगे, सिचुएशन सेट होती गई और आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप अपने पैरों पर खड़ी हैं। आर्थिक उपार्जन की बात करें तो आप संतुष्ट हैं इस फील्ड में आकर?
2: हाँ जी मैम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सखियों को मैं मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप लोग भी चाहें तो जस्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा स्कोप है। और होता ये कि ना किसी का कोई बर्डन है कि हमें ये काम, ये फाइल कंप्लीट करके देनी है, शाम तक हमारा एक टारगेट है वो पूरा, कुछ नहीं करना है, बच्चों के साथ मस्ती करनी है, इंजॉय करना है, शौक पूरा करना है और साथ साथ में हमारी आय भी कर लेनी है। और मैं आप सभी को एक और मैसेज देना चाहूंगी कि यदि आप लोगों को अपने घर से परमिशन नहीं है किसी इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए, या आप बाहर नहीं जा सकती अपने परिवार की वजह से, बहुत सारी कारण होते हैं नहीं बाहर जाने के, तो उसके जगह पे आप बहुत अच्छे से अपनी एकेडमी भी ओपन कर सकती हैं। आजकल तो बहुत सारे लोन भी इजीली मिल जाते हैं, तो लोन लेके आप खुद की डांस क्लास ओपन कर सकती हैं जिससे आपका नाम भी होगा, आपकी आय भी होगी और आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ आप अपने पूरे परिवार का ख्याल भी रख पाएंगी।
0: दिया जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आपकी बातें वाकई में बहुत प्रेरणास्पद है। आपने हमारे लिए

सखियों, गीत सुनकर तो आनंद ही आ गया। अब बढ़ते हैं हमारे ब्यूटी सेक्शन यानी कि रूप लावण्य की ओर। सखियों, रूप लावण्य में आज बात होगी सनबर्न से हाथ पैर अगर हो गए हैं काले तो लगाएं ये एंटीऑक्सीडेंट पैक। जी हाँ सखियों, आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही पैक जिनसे आपके जो हाथ जो काले हो गए हैं वो एकदम गोरे और सुंदर हो जाएंगे। तेज धूप में पसीना और लगातार यूवी किरणों के संपर्क में रहने से गर्मियों में हाथ पैरों की जो त्वचा होती है वो जल्दी टैन हो जाती है। इससे स्किन का रंग आसमान जैसा दिखने लगता है, कई बार रूखापन भी आ जाता है। ऐसे में जो एंटीऑक्सीडेंट पैक होते हैं और एक्सोफोलेट जो गुणों से भरपूर होते हैं, जैसे कि हम बात करें टमाटर की, आलू की, चावल के आटे की, दही और शहद का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आप सनबर्न और टैनिंग में राहत पाते हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही पैक आपको हम बता देते हैं। चावल के आटे और दही का एक पॉलिशिंग पैक हम आपको बता रहे हैं। 2 चम्मच चावल का आटा और दही मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इसे हाथों और पैरों पर लगाकर 15 मिनट बाद हल्के हाथों से रगड़ लें। अब हम बता रहे हैं आलू का जो पैक है वो बता रहे हैं। आलू का रस निकालकर आइस ट्रे में जमा दीजिए। इन क्यूब्स को टैन हुई त्वचा पर 5 मिनट रगड़ें। इसमें मौजूद एंजाइम्स त्वचा की रंगत हल्की करने में मदद करते हैं। ग्रीन टी जो होती है वो भी बहुत मददगार होती है। ठंडी ग्रीन टी में हाथ पैर 10 मिनट डुबो कर रखें। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सन डैमेज कम करते हैं और त्वचा को राहत देते हैं। ऐसे ही सखियों, टमाटर और शहद का ब्राइटनिंग एक मास्क है वो हम आपको बता रहे हैं। तो टमाटर के रस में शहद मिलाकर 20 मिनट लगाइए। इसमें मौजूद जो लाइकोपिन है वो धूप से हुई क्षति को कम करता है। ऐसे ही सप्ताह में 1 से 2 बार आप कॉफी पाउडर, नारियल तेल और चीनी मिलाकर स्क्रब करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। साथ ही सखियों, कच्चे दूध में 3 से 4 केसर के धागे भिगोकर कॉटन से लगाएं। यह त्वचा को पोषण देकर रंगत निखारता है। तो ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट पैक है जो आप लगाएंगे तो सनबर्न से दूर रहेंगे और आपकी त्वचा भी निखरी निखरी नजर आएगी। और अब सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

और सखियों अब बढ़ते हैं महिला सभा के किचन में। सखियों गर्मी के मौसम में आपने पुदीना, धनिया और टमाटर की चटनियां तो कई बार खाई होंगी, लेकिन क्या कभी ककड़ी, खीरा और लौकी की चटनी ट्राई की है? नहीं ना, तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही कुछ स्वादिष्ट चटनियां। ककड़ी की चटनी की बात करें सखियों, तो आपको चाहिए 1 कप कद्दूकस की हुई ककड़ी, 1/2 कप दही, 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच भुना जीरा, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा हरा धनिया। विधि बहुत ही आसान है सखियों। ककड़ी को हल्का निचोड़ लें ताकि अतिरिक्त जो पानी है वो निकल जाए। अब इसमें दही, हरी मिर्च, जीरा और नमक के साथ मिक्सी में हल्का सा इसे पीस लें। ऊपर से हरा धनिया डालकर सर्व करें। यह चटनी रायते जैसी ठंडी और स्वादिष्ट लगेगी। सखियों 1 बड़ा खीरा छिला हुआ, 2 चम्मच पुदीना पत्ते, 1 हरी मिर्च और 1/2 नींबू का रस, थोड़ा सा काला नमक, ये आप ले लें। और इसके साथ ही बनाने की जो विधि है इसकी, जो खीरे की हम जो ताजगी भरी जो चटनी आपको बता रहे हैं उसकी विधि बहुत ही आसान है। खीरे को टुकड़ों में काट लें, पुदीना मिर्च के साथ पीस लें, इसमें नींबू का रस और नमक मिलाएं। ठंडी ठंडी चटनी स्नैक्स के साथ जरूर खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। सखियों अब आपको बता रहे हैं लौकी की हेल्दी चटनी। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए 1 कप उबली हुई लौकी, 2 लहसुन की कलियां, 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच दही, नमक 1/2 छोटा चम्मच, सरसों के दाने 1 चम्मच और थोड़ा सा हमें चाहिए इसके लिए तेल। लौकी का पानी निकालकर लहसुन, मिर्च, दही, नमक के साथ इसे अच्छे से मिक्सर में पीस लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके सरसों के दाने डालें, तड़का लगाकर चटनी में मिलाएं। सखियों ये लो कैलोरीज और हाई फाइबर युक्त जो चटनियां हैं वो जलन और एसिडिटी कम करती हैं। पाचन सुधारने के साथ साथ यह वजन नियंत्रण में भी सहायक होती है। यह शरीर में टॉक्सिन पदार्थ बाहर निकालने में भी मददगार है। तो आज इन चटनियों को आप अपने रसोई घर में जरूर ट्राई करें। और अब सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, काम की बातों में आज बातें होंगी एसी की। जी हाँ सखियों, गर्मी का मौसम है तो अक्सर हम कूलर और एसी का उपयोग करते हैं। इससे हमारा जो बिजली का बिल है वो भी बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए इसको कम करने के लिए कुछ जरूरी उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। कई बार सखियों एसी को 16 से 18 डिग्री पर चला देते हैं, जिससे बिजली ज्यादा खर्च होती है। विशेषज्ञों के अनुसार 24 से 26 डिग्री जो तापमान होता है वो शरीर और बिजली दोनों के लिए बेहतर माना जाता है। तो आप इस मोड पर अपना जो एसी है वो चलाएं, साथ ही फिल्टर की सफाई पर भी ध्यान दें। गंदे फिल्टर की वजह से एसी सही तरीके से कूलिंग नहीं कर पाता है, इसीलिए हर 15 से 20 दिन में फिल्टर साफ करना बहुत जरूरी है, ताकि हवा भी साफ मिले और मशीन पर दबाव भी ना पड़े। और साथ ही सखियों, एसी के साथ साथ सीलिंग फैन चलाने से ठंडी हवा चारों तरफ फैलती है, इसीलिए आप एसी तो चलाएं लेकिन सीलिंग फैन भी जरूर चलाएं। और स्लीप या टाइमर मोड पर भी आप एसी को रख सकते हैं। रात भर एसी चलाने के बजाय टाइमर या स्लीप मोड सेट करना बेहतर होता है सखियों, यह रूम टेम्परेचर के अनुसार सेट हो जाता है। तो इन बातों का आप जरूर ख्याल रखें सखियों, और इन गर्मियों में आप अपने बिजली का बिल कम कर सकती हैं इन तरीकों को अपनाकर। सखियों, समय इशारा कर रहा है कि आपसे अनुमति ली जाए। आपको बता दें, आज के इस खूबसूरत से कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। अब प्रीति जोशी को दे अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।

0: और अब एक सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रम की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस निर्माता अधिकार स्वामी एग्रीगेटर कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधन आदेश के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह सभी दस्तावेज प्रसार भारती आकाशवाणी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रम की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopairbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। पहले सुनिए निमाड़ी लोकगीत भाईराम गपोजी रणसोर और साथियों के स्वर में।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। लीजिए आप सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। इस कार्यक्रम में पहले सुनिए राधा कुलकर्णी के स्वर में गजल।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

जन्नत फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी के की। गीतकार थे सैयद कादरी और संगीत था प्रीतम का।

ये गीत है फिल्म राज 3 से, जिसके लिए आवाज़ है जावेद अली की। गीतकार और संगीतकार हैं राशिद खान।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की राह पर है। उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक साझा करते हुए कहा कि सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो दूसरों के कल्याण से ईर्ष्या के बिना नेक काम करता है, और यही भावना राष्ट्र निर्माण में सरकार की सबसे बड़ी ताकत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने खुद को हमेशा प्रधान सेवक माना और गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाए। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया और जनजातीय समाज के आत्मसम्मान व अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वहीं लोक भवन में भी आज जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने जल, जंगल, जमीन की रक्षा और देश की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में मंडी टैक्स को 1 से बढ़ाकर 1.5% करने का फैसला लिया गया, जिससे सरकार को सालाना करीब 835 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये राशि अधोसंरचना विकास और गो संवर्धन में लगाई जाएगी। वहीं कपास पर मंडी शुल्क को घटाकर प्रति गठान 50 पैसे किया गया है। मेट्रो रेल परियोजना की लागत में 3000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है, जिससे यह अब करीब 10000 करोड़ रुपए की हो गई है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि तबादलों का काम 15 जून तक पूरा कर लिया जाए। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ पहुंचे हैं। भारत इस बार सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आज प्रतिनिधि एक साझा

घोषणा पत्र के मसौदे पर विचार विमर्श करेंगे और दिन भर कई दौर की बैठकें होंगी। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और छोटे किसानों को मजबूत बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश के सभी जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जांच, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श मिलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। जरूरतमंद महिलाओं के लिए 108 एम्बुलेंस से मुफ्त परिवहन की सुविधा भी रहेगी। प्रदेश की शौर्य दल आज देश की सबसे बड़ी महिला सामाजिक नेटवर्क बन चुकी है। साल 2013 में महज 6 जिलों से शुरू हुई इस मुहिम में अब तक 22 लाख से ज्यादा महिलाएं और बेटियां जुड़ी हैं, जिनमें स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों से लेकर अनुभवी गृहणियां तक शामिल हैं। यह दल घरेलू हिंसा, बाल विवाह और मानव तस्करी जैसी समस्याओं को पुलिस के पहुंचने से पहले ही सामुदायिक स्तर पर सुलझा देता है। सरकार ने इस कार्यक्रम को 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून अगले हफ्ते 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। विभाग के मुताबिक मानसून इंदौर और जबलपुर के रास्ते प्रदेश में प्रवेश करेगा। अब तक प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। आज प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है, जबकि भिंड, दतिया और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में अगले 2 दिन तक लू चलने की आशंका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में आरोग्यम नर्मदापुरम अभियान के तहत जिले की सभी पंचायतों में प्रत्येक बुधवार और शनिवार को जन स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों में 12 से 18 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सिंगरौली कलेक्टर ने काठमांडू में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के पदक विजेता जिले के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से नीमच एसडीएम और तहसीलदार ने आज ज्ञानोदय अस्पताल का निरीक्षण किया। और खंडवा में समान नागरिक संहिता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा और डॉक्टर शोभा पेटड़कर 11 जून को खंडवा आएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के

0: वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में

0: छह स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12 लाख हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल

0: संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। ये है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान, सारिका, सुरेखा, सोनम और ये साथी हैं उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपंक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा, कोश मूड़त, इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म बड़े दिल वाला, इस फिल्म का गीत जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार के गीतकार हैं मजरूह और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और ये अगली फरमाइश है पंजाब रूपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर नीरक, जैतेंग बिरक, मीका बिरक, भाटापारा दतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा, और नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोनले, आरती जोनले। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है राजा रानी, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है आर डी बर्मन का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है। फिल्म है रफू चक्कर, और इसका ये प्यारा सा गीत गाया है शैलेंद्र सिंह आशा भोसले ने। गीतकार हैं गुलशन बावरा और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिकेश, साक्षी मनन तानिया, धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन राणा।

इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश भेजी है बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदिति, शिवानी, मीनूराज श्रीमाली, और ये जो साथी हैं हमारे ये हैं अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, और बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है पराया धन, इस फिल्म का गीत जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है आर डी बर्मन का।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है। बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय गाजीपुर से, प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और सिंहपुर से राजेश नेमा, संगीता भावना, प्राची नेमा और कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख जमील मंसूरी, इन सभी श्रोता साथियों ने पसंद किया है। फिल्म अनुरोध का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। ये है खंडवा मध्य प्रदेश से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र सनमति पंचोलिया और राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन, प्रयागराज भट्ट, औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, इन सभी श्रोता साथियों ने पसंद किया है ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार आशा भोसले की और फिल्म है जवानी दीवानी।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद को हमेशा प्रधान सेवक माना है और गरीब युवा किसान और महिलाओं के जीवन में नया बदलाव लाए हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा ने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया और जनजातीय समाज के आत्मसम्मान व अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में मंडी टैक्स को 1 से बढ़ाकर 1.5% करने का फैसला लिया गया, जिससे सरकार को सालाना करीब 835 करोड़ रुपये मिलेंगे। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश के सभी जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जाँच, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श दिया जाएगा। और प्रदेश की शौर्या दल आज देश में सबसे बड़ी महिला सामाजिक नेटवर्क बन चुकी है। वर्ष 2013 में महज 6 जिलों से शुरू हुई इस मुहिम में अब तक 22 लाख से ज़्यादा महिलाएं और बेटियां जुड़ी हैं, जिनमें स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों से लेकर अनुभवी गृहिणियां तक शामिल हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आपको बता दें आज शाम की सभा में कौन से कौन कार्यक्रम आप सुनेंगे।

शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। 5:33, 6:30, 8:35 और रात 10 बजे सुनिए फिल्म संगीत। शाम 6 बजे सुनेंगे एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आर्थिक विकास ये कार्यक्रम।

उर्दू कार्यक्रम कहकशां रात 9:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुनेंगे रात 10 बजे। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग मारू बिहाग में ख्याल गायन संगीता गोस्वामी से।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलोहर्ट्स पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3:03 हुए हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम की सभा में 5 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।

0: सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई बहाना उनके पास में तैयार होता है।
1: और बहुत सारे लोग बहाने तो बनाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, बहाना बना रहा है। लेकिन आप कैसे, कौन सा बहाना बनाते हैं जो कभी पकड़ा नहीं जाता है,
0: और कौन सा ऐसा बहाना है जो अक्सर काम आता है आपके, आपको सुरक्षित रखने के लिए? बहाने क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। और मुहावरे की आज हम एक बात करते हैं, तो आज हमने जो मुहावरा चुना है वो है आम के आम
1: गुठलियों के दाम, क्योंकि वैसे भी आम का मौसम है ना, आम खाए जा रहे हैं।
0: हाँ, तो दोहरा जो फायदा है उसकी बात होगी, लेकिन भाई अब आम के आम गुठलियों के दाम तो जानकारी होगी, मनोरंजन होगा और गीत भी होंगे।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, मैं ये कहूंगी अपने जो भी श्रोताएं, सखियां, जो भी सखाएं, कि आप उसमें आम के आम जो गुठलियों के दाम मुहावरा है ना, खाली इसका अर्थ ही मत लिख के भेजिए, क्योंकि अर्थ तो चलिए हमने समझा, आप थोड़ा सा उसके बारे में और रोचक बना के भेजिए उसको।
0: बिल्कुल, सुनने से ही पता लगता है कि दोहरे फायदे की बात हो रही है, तो उसका अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन आप कि जीवन में दोहरा फायदा किस तरह हुआ, मतलब आम क्या और गुठलियों के दाम,
1: और आपने किसी को ऐसा दोहरा फायदा पहुंचाया हो तो वो भी बताइए।
0: तो भाई कार्यक्रम में कैसे होते हैं आम क्या गुठलियों के दाम,
1: गीत सुनने से
0: जी।

0: तो कोरा कागज, यानी कि बहुत सारी चिट्ठियां पहले हमें मिला करती थी,
1: हाँ,
0: लेकिन
1: कोरा
0: अब
1: कागज
0: हमें
1: तो नहीं,
0: संदेश मिलते हैं हमारे सुनने
1: बिल्कुल
0: वालों के।
1: बिल्कुल। और अभी हम जो सेगमेंट सबसे पहले लेने वाले हैं वो है हमारा सखी विशेष,
0: जी,
1: यानी अपने सखी विशेष के बारे में कुछ बातें बता
0: हम
1: देते
0: बात
1: हैं।
0: करेंगे जीनिया परसी मास्टर के बारे में।
1: जी, तो जीनिया परसी मास्टर भारत की एक जानी मानी महिला उद्यमी हैं जो बिजनेस और फाइनेंशियल रणनीतिकार हैं। और जीनिया एक व्यावसायिक परिवार से आती हैं, उनके परिवार का लॉजिस्टिक्स और बिजनेस क्षेत्र में लंबे समय से संबंध रहा है।
0: जीनिया परसी ने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध गिलियोन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और रेवेन्यू मैनेजमेंट में पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने लंदन में फिट्जी विलियम इंस्टीट्यूट से इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया हुआ
1: जी,
0: है।
1: और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुबई और अन्य स्थानों पर होटल इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने प्री ओपनिंग टीमों में भी काम किया, जिससे उन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का व्यावहारिक अनुभव मिला। और साल 2013 में उन्होंने अपना फ्रीलांस इवेंट से शुरुआत की।
0: और इससे पहले जीनिया इवेंट्स का इसे पहले जीनिया इवेंट्स कहा जाता था। बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी जीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया, और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारियों के क्षेत्र में कार्य करती है।
1: जी, उन्हें विशेष रूप से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग, कॉरपोरेट इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स, लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सेवाएं प्रदान करती है।
0: और उनका काम वी इनवाइट यू यू ओन इवेंट इस विचारधारा पर आधारित है, यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद लें और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाल लेगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं।
1: जी, वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट्स में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी। और इसके बाद उन्होंने स्वयं का ब्रांड भी शुरू किया। जीनिया सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं और पर्यावरण तथा CSR, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उसमें गतिविधियों में वो भागीदारी करती रही हैं।
0: ये रही बहुत अच्छी जानकारी उनके बारे में, और आप सुनते हैं ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली, और अब जो बातें होंगी वो होंगी पानी के बारे में, पानी की बचत के बारे में।
1: बिल्कुल पानी। और देखो पानी का जो रहते कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
0: पानी का कोई रंग नहीं है फिर भी हर एक की जरूरत है। कहते हैं कि
1: बिल्कुल
0: जिंदगी अगर है तो पानी सबसे जरूरी चीज है हमारे
1: बिल्कुल। और
0: लिए।
1: जितनी भी सोचिए सभ्यताएं बसी, जितनी भी
0: जी
1: हमने प्रगति करी, वो सब कहाँ, सिर्फ नदियों के किनारे बसी।
0: जी
1: जिससे कि हमारे देखो जीवन के लिए जरूरी क्या चीज़ है, पानी। और अभी कुछ रिसेंटली हम लोगों ने अभी कुछ खबरें भी सुनी कि किस तरह से पानी नहीं मिलने की वजह से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो
0: बिल्कुल
1: ये सोचिए, ये एक हमें जागरूकता का विषय भी है। अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास कल भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही बात है। जल है तो ही कल है। जिस तरह हवा बहुत जरूरी है,
1: जी
0: ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही पानी जरूरी है। और बहुत सारी नदियों में पानी का जल स्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। कई बार हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं,
1: जी
0: जिन जो हमारे पानी

0: पानी के स्रोत हैं, उन्हीं को हम गंदा कर देते हैं। वहां पर जो कल कारखाने हैं उनसे पानी गंदा हो जाता है, या फिर हम जो प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं, हम
1: बिल्कुल
0: बहुत सारी जगहों पर जब घूमने जाते हैं, झील नदी समंदरी किनारों पर हमें जाकर बैठना तो बड़ा अच्छा
1: बहुत
0: लगता
1: बहुत
0: है,
1: अच्छा लगता है।
0: लेकिन वहां पर हम बहुत सारी गंदगी छोड़कर आते हैं।
1: बिल्कुल
0: लेकिन बात अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पानी जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है
1: बिल्कुल
0: उसे हम किस तरह से यूं बेकार की चीज समझकर वेस्ट करते रहते हैं, और इसका खामियाजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना
1: बिल्कुल।
0: पड़ेगा।
1: और लोग भुगत भी रहे हैं। सोचिए एक जगह हमें अभी यहाँ पे अगर सहूलियत से पानी मिल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग कितनी कितनी दूर तक चल के जाते हैं और मतलब दो दो बूंद पानी के लिए तरसते हैं कि वहाँ पे अगर अगर उनको पानी एक घड़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं उस चीज़ को।
0: इसीलिए देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करना एक अच्छी बात है, फिर वो पैसा हो या पानी, इसके बिना सारी दुनिया है फानी। पृथ्वी पर बसे हर एक जीव के लिए पानी प्राथमिक जरूरत है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है और यही सबसे बड़ा गम है। इन्होंने जो बातें लिखी है ना उसे इस तरह तुकबंदी में जोड़कर बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं ये। इसे बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं कि जल के बिना जल बिन जरूरी उपयोग बिना जरूरी उपयोग के इसे वेस्ट ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना जरूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकता है। यदि
1: बिल्कुल
0: हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल बिन मछली जैसे तड़पती है वैसे ही कभी हमें भी तड़पना होगा।
1: बिल्कुल। और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है। सूखी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार है। मत छीनो इसकी सांसें, मत इसका मान हरो, जल बचेगा तो ही जग में मानवता का श्रृंगार है।
0: बिल्कुल सही है आरती, क्योंकि जल ही जीवन है, ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो कह सकते हैं कि पानी है।
1: जी
0: पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए, भाई अगर हमें घर को अपने आप को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए भी पानी ज़रूरी है, और
1: बिल्कुल
0: पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी ज़रूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज़्यादा, उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है,
0: जी
1: ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। ये सोचिए कि अगर हम यहाँ पे अगर उस जल को ही खत्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को जरा सा भी ना बर्बाद करें। जैसे छोटे बच्चे, उनको अकल नहीं है, तो अगर उस चीज को वो कर रहे हैं तो उनको समझाइए, सिखाइए।
0: जी
1: अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे।
0: इसी पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें। कपड़े बर्तनों को धोया पानी कप पेड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें। मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की मात्रा कम खर्च होगी। और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी ज़रूर से रखें। पेड़ पौधे लगाएं, आसपास गड्ढे करें जिससे उनमें पानी का संचय हो सके, और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह निकासी करे हुए पानी को गड्ढों या पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत हम कर सकते
1: बहुत
0: हैं।
1: जरूरी है। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आंखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदायी होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है और जहां फिर प्रेम का अंकुर पनपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में टीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है।
0: सही बात है, बारिश का जो मौसम है वो सिर्फ 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने रहता है।
1: बिल्कुल
0: इसके बाद के जो 8 महीने हैं उसमें पानी नहीं बरसता। इसी पानी से हमें बाकी के 8 महीने निकालने हैं, इसीलिए बचत बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस समय कार्यक्रम में गीत सुनना भी ज़रूरी है।
1: जी।

0: तो अब हमारे बहुत सारे
1: हम्म,
0: श्रोताओं ने जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि घर में नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है ये हमारे आने वाले लोगों को, पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पे, जैसे करके टाइमर लगाइए उसमें। और अगर किसी कोई इस तरीके के, मतलब जो उन्होंने लिखी है, इस तरीके की चीज़ों का पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं। घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये इन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद, 70 जो पृथ्वी का 70% पानी है, वो जो 70% पानी है, और मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो आप वही, वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें, और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए। उसको ऐसे ही नहीं कि आपने इसे छोड़ दिया, अगर कहीं आपको बाहर
0: जी,
1: भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश
0: बहुत
1: करिए।
0: सारी महिलाओं की आदत होती है जब वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू है, इधर कपड़ों पे वो साबुन लगा रही हैं या बर्तन को साबुन लगा रही हैं और पानी लगातार बह रहा है, तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है, जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल
1: हाँ
0: चालू है, यहाँ
1: चल रहा है।
0: उधर काम चल रहा है उनका,
1: बिल्कुल
0: तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं आपको अपना रेजर नहीं धोना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल
1: बिल्कुल।
0: को। इसी तरह से महिला पुरुष बच्चे ये
1: और साथ ही
0: सबकी
1: हम ये
0: जिम्मेदारी
1: अगर
0: है।
1: छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं तो हम पानी, थोड़ा सा पानी पिए, 2 घूंट पानी पिए और पानी बाकी
0: हाँ,
1: फेंक दिया,
0: आधा
1: जबकि
0: ग्लास
1: वो
0: पानी पीते
1: बिल्कुल,
0: हैं और आधा
1: जबकि वो
0: फेंक देते
1: पीने लायक
0: हैं।
1: पानी होता है, कितना कीमती।

0: पानी है उसको हम फेंक देते हैं यूं ही।
1: कई बार जब हम किसी समारोह में जाते हैं, किसी आयोजन में, उत्सव में जाते हैं, तो आजकल पानी की बोतल देने का सबसे ज़्यादा चलन है, तो वहाँ भी आधी बोतल पी के आधी बोतल को हम फेंक देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप बची हुई आधी बोतल पानी को अपने पास ही रखिए, ताकि दोबारा ज़रूरत पड़ने पर एक नई बोतल का इस्तेमाल करने की बजाय आप उसी बोतल के पानी का फिर से इस्तेमाल कर सकें। और इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो ये अन्य ग्रहों की तरह सूखा और वीरान होता। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी मांग है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत सीमित है और बढ़ती आबादी के साथ इसका संकट भी गहराता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाना पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि इसकी बर्बादी गंभीर परिणाम ला सकती है। घर में किसी को भी किसी भी नल या पानी से पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने
0: बिल्कुल
1: लिखकर भेजी है, तो अगर सभी जागरूक हैं तो जो जागरूक नहीं हैं उन तक ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि आजकल सभी घरों में वाटर प्यूरीफायर लगे हुए होते हैं और सबसे अधिक पानी की बर्बादी यहाँ होती है, तो कुछ लोग इसे संग्रहित करके पौधों में डालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
0: बिल्कुल। और अगर आप कपड़े धो रहे हैं या इस तरीके का अगर पानी आपका बच रहा है या आपने सब्जियां धोई, तो वो पानी जो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अलग से आपको वहां पे पाइप लगा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी होती है पाइप लगा के जब हम पानी डालते हैं।
1: इसी तरह से बहुत से लोग एसी लगाकर जब घर में रहते हैं तो उसके पाइप से जो पानी रिस कर धीरे गिरते रहता है और बाल्टी में जमा हो जाता है, तो उसको भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार छत या आंगन धोने में इस्तेमाल कर
0: बिल्कुल,
1: सकते हैं।
0: तो इस तरह की आप छोटी छोटी चीज़ें भी करेंगे ना तो बहुत सारा पानी बचेगा, और बहुत ज़रूरी है अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अब अगली जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, है
1: क्या
0: ना। तो
1: बात है,
0: इसलिए हम उस युद्ध को रोक सकते हैं होने से,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: उसके लिए हमें, क्योंकि अब देखिए खरीद के हमें पानी पीना पड़ता है, अगर हमें साफ पानी चाहिए तो ज़रूरी है पानी की बचत करनी।
1: तो बातें और भी बहुत सारी करनी है, लेकिन इस समय घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि लेते हैं
0: अंतराल
1: छोटा सा अंतराल।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं हूं आरती श्रीवास्तव।
0: और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में। तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: पानी की कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब नहाने नहाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती है ना,
0: जी
1: तो बहुत बर्बाद होता है। अब तो उससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो भी रुकेगी। और साथ ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, जो वर्षा का जो जल होता है उसको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिस तरह से वो बना के बताया गया, जैसे हमारे श्रोताओं ने भी बताया है। इस तरीके से आप पानी की बचत ज़रूर करिए।
0: और जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कई बार उसकी कदर नहीं
1: कदर
0: होती।
1: नहीं करते हैं।
0: जिस तरह से हवा हमें मिल रही है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहाँ से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते।
1: बिल्कुल।
0: पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से जब
1: इसी
0: वर्षा का
1: वजह
0: जल
1: से
0: हमें
1: बिल्कुल।
0: कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहाँ जल संकट अति का बहुत ही ज्यादा है। वहाँ
1: बिल्कुल।

0: चाय की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत होती है, ऐसा हमारे श्रोता भी लिखकर बता रहे हैं
1: बिल्कुल,
0: कि चाय या अन्य चीजें वहां सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन पानी
1: पानी
0: वहां पर
1: महंगा होता है
0: बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद कर वो लोग
1: बिल्कुल।
0: लेते हैं।
1: और जब से मैं बताऊं कि मैंने तो ये चीज़ खबर सुनी तो सच में अजीब सा ही लगा। अब जब भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एकदम से सचेत हो जाती हूँ, बस सोच के कि सोचो उस समय उन लोगों को सिर्फ एक दो बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, हम पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली है या
0: जी
1: अब पानी 2 दिन नहीं आने वाला, तब लगता है अरे यार अब कैसे होगा, अब का ऐसे काम चलेगा। तो हमें सोचना चाहिए इसी तरह से समय से आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं आए तो हम क्या
0: तो
1: करेंगे।
0: एक दिन की कटौती में अगर हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर ये कटौती पानी बहुत जल्द से अगर घट गया तो बहुत ज्यादा अगर हो, कितना हम परेशान होंगे।
1: बिल्कुल
0: उस परेशानी से बचने के लिए महत्व इसका हम बता रहे हैं। और अब सुन लेते हैं गीत।

0: पे क्या हुआ, जब एक किसान ने आम तो बेचे ही, आम बेचकर पैसे कमाए, लेकिन जो गुठलियां बच गई वो एक नर्सरी को बेच दी ताकि नए पेड़ आम के लगाए जा सके। तो यानी कि जो मूल चीज है उसे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उसे भी आपको मुनाफा मिला।
1: बिल्कुल,
0: दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा। इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों
1: गुठलियों
0: के
1: के
0: दाम।
1: दाम, गुठलियों के दाम।

0: ले लिए
1: जी
0: और खाली उसी ने नहीं ली, पेड़ लगाने से सबको ही फायदा हुआ,
1: जी
0: तो बहुत अच्छी चीज है ये।
1: तो ये तो
0: और
1: सिर्फ
0: हमारे
1: एक
0: श्रोता
1: कहावत
0: क्या
1: है,
0: कहते
1: लेकिन
0: हैं?
1: बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या अनुभव
0: हाँ
1: रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई।
0: बिल्कुल। तो हमारे एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना समय जो प्रसार करने के साथ साथ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब आम के आम और सखी सहेली के नाम।
1: हमारे श्रोता लिखते हैं कि आम तो इन दिनों हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो इन्हें उगा देंगे। तो हो
0: हाँ
1: गया ना आम क्या, हमारे गुठलियों के दाम,
0: सच में
1: एक पंथ दो काज की तरह ही होती है ये कहावत।
0: जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इसमें इसे अंग्रेजी में टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी कहा जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। मतलब एक ही मुहावरा है, उस मुहावरे को बहुत कई
1: हाँ,
0: कई तरीकों से
1: एक
0: कहा
1: पंथ
0: जाता
1: दो
0: है।
1: काज, आम के आम गुठली के दाम और एक तीर से दो निशाने, लगभग एक जैसा ही अर्थ है इन बातों का।
0: बिल्कुल। और व्यवहारिक जीवन में इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार, तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है, तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी तो सच में एकदम सही बैठा कि
1: जी,
0: उन्होंने आम खाया और गुठलियों से उसके छिलकों से अचार भी बना लिया।
1: और आगे एक श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है।
0: जी
1: दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोकप्रिय भी है।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाषा की सुंदरता वृद्धि में मुहावरों और कहावतों का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ ही है उपभोक्ता के पूरे पैसे वसूल। वार्तालाप या कहानी लेख में विषय संग वस्तु का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वस्तु अपनी उपयोगिता, गुण और महत्वपूर्णता की उपस्थिति दर्ज करा ही देती है।
1: और हमारे श्रोता तैयार हो जाएं भाई अपने बहाने बनाने के लिए जिन्हें वो अक्सर काम में लेते हैं, लेकिन तब तक एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, अक्सर हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ बहाने मैं आप तुम्हें बताती हूँ, देखो जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ या 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, या अगर फोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, भाई मेरा तो फोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कहीं अगर समय पर ना पहुंचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया, और अगर समय पर ना पहुंचे या फोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात हुई मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत ज़रूरी काम आ गया, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात है पढ़ने वाली।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, सभी को
0: हाँ
1: उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है, अगर बहाने में वफाएं हो तो तूफा भी किनारा है, वरना साहब के गुस्से से गिरती बिजली का नजारा ही नजारा है,
0: क्या बात है,
1: सामने वाला आसानी से विश्वास कर सके, ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सकें। ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहाँ करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए।
0: और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें और कहेंगे कि मैडम कर तो लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, अब क्या कहें, और शिक्षक बहाना एक्सक्यूज़, किसी काम करने के लिए बचने के लिए, अपनी गलतियाँ छिपाने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए, ये एक कारण होता है, यानी कि अलग अलग तरह का बचाव है
1: जब बहुत ज्यादा
0: जिसका
1: स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ लीजिए ये
0: बिल्कुल
1: बहाना है
0: बहानों का इस्तेमाल
1: जी।
0: लोग स्थिति से बचने के लिए, टाल मटोल करने के लिए या असफलता को सही ठहराने के लिए करते हैं, जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तबीयत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई जरूरी काम आ गया, वगैरह वगैरह।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं, इस विषय पर एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी ना कभी बहुत लोग अक्सर करते ही हैं, और वो भी सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित। अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना ही है।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था पेट दुख रहा है, और अक्सर बच्चे ये बहाना करते हैं।
1: जी
0: और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है, तो ये कहूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं
1: बिल्कुल,
0: है।
1: अक्सर होता है ऐसा। और एक क्वेश्चन होता है जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का हमारे जो श्रीमती जी हैं वो एक नंबर हैं, कुछ काम कहो तो बहाना बनाती हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि और वो स्वयं वो काम कर लेता हूँ, और फिर वो कहती है मैडम अरे वाह तनिक थोड़ा धैर्य रखते तो हम कर ही देते, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने नोक झोंक प्यार और स्नेह तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करती है, भाई आप काम कर देंगे तो तारीफ तो आपकी होगी। वैसे अच्छी चीज़ है ये, इस तरीके का
0: हाँ।
1: बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा बहुत काम करने का हाथ बटा देते हैं, तो
0: हमारे
1: अच्छी चीज़
0: श्रोता ने
1: है।
0: लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के नाम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है, मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दिया कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा, और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था
1: हाँ, लेकिन
0: और
1: अब सबको पता चल गया कि वो आपने बहाना बनाया था।
0: जी
1: एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो उस वक्त उनको सही लगता है। और मेरे साथ भी एक मजेदार घटना हुई, मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था, सुबह

0: तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई। शाम को जब उसका फोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज थी। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार मुझे याद था, बस दिमाग से निकल गया। सच कहूँ तो अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया, ऐसे बहाने हैं जो हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं। मैं करती हूँ अक्सर, हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं।
1: तो चलो अब एक गीत सुन लें।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो आरती, तुमने कभी कोई बहाना बनाया है? बताओ मुझे.
1: बनाए तो बहुत सारे बहाने, मैं अक्सर बना लेती हूँ बहाने, लेकिन अभी मैंने बनाया था कि हाँ यही वाला कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मैं उठा नहीं पाई.
0: हाँ, ये जो है ना, फोन साइलेंट पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था. आजकल क्योंकि जब कहते हैं भाई फोन करना भूल गए, तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है. या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था, ये भी
1: बिल्कुल.
0: बहाना बहुत होता है. तो अब बहानों की बात चली है, तो बताएं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं. कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं. इससे हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे किसी से अगर हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं,
1: बिल्कुल.
0: और किसी से मिलना चाहते हैं तो बहुत बहाने हम निकाल ही लेते हैं. बस बहाने की ही बात है. मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं, और यही बता रहे
1: बिल्कुल.
0: हैं.
1: और एक हमारी श्रोता है जो लिखती हैं कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, वो लोग कहीं घूमने गए हैं. उनकी लड़की इतवार को मेरे साथ मेरे ही घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ. इतनी गर्मी हो रही है, मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ. इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई. ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, लेकिन अब उनको पता चल गया होगा, उन्होंने सुना होगा
0: हाँ,
1: प्रोग्राम.
0: अगर वो रेडियो सुनते हैं, उन्हें रेडियो पर बात पता लग गई हो.

0: कि आपने बहाना बनाया था खाना बनाने से बचने के लिए।
1: और
0: तो
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहाँ पर था, और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार बहाने बनाने पड़ते थे। जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा, तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई, और वो यहाँ बन भी नहीं पाती है, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर चीज़ लानी पड़ती है, तो बहुत पैसे लग जाते हैं। और इसी तरह बहाना बनाकर बच्चों ने जब साइकिल मांगने की जो जिद थी वो छोड़ दी।
0: बहुत बढ़िया बात है। और देख, हम इस समय एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम पर भी हमारे जो एक सखी, उन्होंने लिखकर भेजा है, कहती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे। उसमें जब हम आम खा चुकते थे तो गुठली को मेरी दादी एक टीन के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी। बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुठली इकट्ठा होती रहती थी, और फिर बरसात में भी भीगती थी। जब बहुत सी गुठली इकट्ठा हो जाती थी तो उसी डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुठली को तोड़कर उसके बीज को नमक लगाकर खाते थे। यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाए, गुठलियां भी खाएं।
1: अचार में भी कई बार गुठलियों का प्रयोग किया जाता है, और गुठलियों में बड़ा अच्छा सा स्वाद होता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है। हमारे पुराने फिल्मी गीतों में भी तो सुन लें गाना।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: दिल तो हमारा भी नहीं भरा अपनी
1: बिल्कुल
0: सखियों से बातचीत करते करते, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें जाना होगा।
1: जाना ही
0: इसीलिए
1: होगा।
0: ये था इस कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत, लेते हैं विदा चंचल वर्मा,
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही हैं जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था,

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई,

0: हम जानना चाहेंगे आपके, बिल्कुल बचपन में जानना चाहेंगे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
1: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास,
0: हाँ जी,
1: एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
0: अच्छा।
1: तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे 1.5 घंटे का सफ़र है चेन्नई से वहाँ, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
0: अच्छा। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से।
1: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफ़र हुआ करता था हर
0: जी
1: 3 साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी
0: जी
1: जो IAS ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज़ जो थी वहाँ से मुझे ऑफर्स आया आ रहे थे। तो उस
0: अच्छा।
1: वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी, मुझसे 3 बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी, मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तेफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूँगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में। उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगू या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफ़र आया, तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं, तो मैं नहीं इजाज़त दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे, वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से ज़मींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है, और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर ले तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत, मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो, अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो।
0: जी
1: और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था, वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया।
0: कुछ बोल याद है उस डांस के, जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
1: पूरे तो याद नहीं
0: हाँ
1: है।
0: जी।
1: हीरुआ का सागरो रन्नो चिन्नन्ना, आगे
0: क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत सुरीली भी हैं। अच्छा, वो फिल्म कौन सी थी?
1: उसका नाम था रोजुलू माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज, द विच लिटरली चेंज माई लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे, आपको पता है जब आपका गाना आता है और ख़त्म हो जाता है, तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं, और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया, दोबारा फिल्म एक चल रही है, कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे, उन्होंने कहा पॉसिबल है, क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड से पहले, मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज़्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
0: क्या कह रहे हैं?
1: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए। तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो काफ़ी शोर शराबा, 2-3 मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या हो रहा है बाहर? तो उन्होंने कहा, एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी, तो उसके आर्टिस्ट हैं, तो लोग, अच्छा। तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है, वो तो बहुत कामयाब हुआ, और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले, वहीदा रहमान तो मुसलमान मुस्लिम लड़की होगी।

बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो वो उर्दू बोल सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं, हालांकि हैं मुसलमान।

0: तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके ज़रिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहाँ मुलाकात हुई, तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे, फिर चुप, कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुँचे तो इस चीज़ को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से, यू नो।
1: तो उसके बाद में आपको CID मिली।
0: CID पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो CID और प्यासे की बातें करें, उसके पहले हम वेदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: गुरुदत्त साहब के डायरेक्शन में पहली बार वो कैमरा फेस किया था, हिंदी की अगर हम बात करें कौन सा दृश्य था, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, पहले तो सीएडी बनी थी, उसके डायरेक्टर थे राज खोसला।
0: हाँ जी।
1: तो एक महीने दो महीने तो सिर्फ सीआईडी की शूटिंग हो रही थी, उसके बाद उन्होंने साइमल्टेनियसली दो तीन महीने के बाद प्यासा की भी शूटिंग शुरू हुई थी। और दोनों डायरेक्टरों में मैंने फ़र्क बहुत पाया, क्योंकि राज खोसला जो थे वो अच्छे डायरेक्टर थे फिल्मों में के लिए, मगर नए आर्टिस्ट को हैंडल करना उनको इतना नहीं अच्छा आता था। हालांकि गुरुदत्त जी तो वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है, तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और राज खोसला थे कि ये ऐसे करना है, कर दिया, अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए, और चूंकि मैं नई नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे।
0: गुरुदत्त साहब
1: हाँ
0: को कैसा डायरेक्टर मानते थे?
1: डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ।
0: उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है अपना, कौन सा सीन?
1: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के। ये जैसे दिल की आवाज़ है, और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आपकी कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
0: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाने चाहिए।
1: हाँ, एक्सप्रेशन लाने थे, और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी, मतलब और बढ़िया दिखती थी।
0: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज़ के फूल का, ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग
1: हाँ
0: है, और इसकी मेलोडी जो है आज तक
1: हाँ
0: बहुत दिल को छू लेने वाली।
1: बिल्कुल,
0: क्यों नहीं ये गाना सुना जाए?
1: बिल्कुल, क्यों नहीं।

0: वहीदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है इसमें?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सब ने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं।
0: तो आपने कह दिया?
1: हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा, बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज़्यादा हेवी है, और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं, तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली,
0: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
1: नहीं, मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद चौदहवीं का चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म, फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहेब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया, अप्रिशिएट, और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
0: अच्छा वेदा जी, हाँ। साहेब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
1: अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना, तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में, क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरदत्त जी नहीं थे तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे, मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरदत्त जी के डिस्कशन ज़रूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज़ को इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए।
0: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी?
1: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया बंगाली नॉवल से, तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं, तो गुरदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल, तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा, तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं? तो बोले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक मैच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तड़पती जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं, बोले वो नहीं आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज़ को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं, कुछ तो कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने वैसा गेटअप दे के स्टिल फोटोग्राफ्स लिए, लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे वो हमने सब ने स्टिल्स देखी, मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं

0: नहीं लगती हो, अच्छे लग रहे हो। तो मूर्ति साहब ने कहा, नहीं गुरुदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज़ को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। सो तो
1: वैसे
0: बंद।
1: इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
0: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ उसके बाद गुरुजी जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात खत्म हो गई। तो जब अब्रार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके लगे, देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं कर रहे। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी। तो गुरुदेव उन्होंने जाके गुरुदेव जी को बताया तो उनको ताजुब भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं, 14वीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है, टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप। तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने कहा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जबा का रोल, डिफरेंट है, डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं अब्रार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी, तो इसलिए मैंने किया।
1: वाह, तो इसका जिक्र चला है, क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो?
0: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी। मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि ना जाओ सैया छुड़ा के बैया।

अब इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौदहवीं का चांद का, एक बड़ी वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में थे, तो उनके साथ में आपकी

0: ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो एक ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: नहीं, क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरदत्त जी इज़ मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर। तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करती है, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ। हाँ, इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे CID बनाए, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूँगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मज़ा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूँगा, क्योंकि ये मेरी अपनी ज़बान है ही नहीं। अगर सादिक बाबू करेंगे तो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा, यू नो, और ख़ासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन ज़रूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरदत्त जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
0: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
1: नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय ली जाए, अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं, एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा।
0: देव साहब के साथ में कैसी जुड़ी थी आप?
1: देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो CID में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बहुत ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट, और बहुत अच्छा था उनके साथ।
0: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
1: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में, तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर लोग के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था, तो देव मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे, देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। हो एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए। नहीं, एक तो फॉग है, मैंने कहा हाँ फॉग तो है मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है, तो बोले मैं चश्मा लगा, तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया, तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया, तो मैंने कहा अब क्या होगा, तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेडसे को पीछे बैठने दो और तुम मुझे बताते रहना राइट में लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है, फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह, मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता, मैंने कहा अब तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है, और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा। अच्छा, आहिस्ता चलाइए, और कोई और रास्ता ही नहीं था। ओ, इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुँचे तो एक घंटा देर पहुँचे, तो वहाँ यूनिट वाले परेशान, और विजय आनंद जो थे गोल्डी वो डायरेक्टर थे, वो पहुँचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को, तो मैंने कहा विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुँच गए, तो दैट वॉज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था।
0: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए आप?
1: खोया खोया चांद।

0: उबैदा जी, गुरली साहब का भी जिक्र आया और इसके पहले हमने बात की गाइड की, और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्माए. वैसे गुरली साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पर चढ़ के डांस करना था?
1: आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था. उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया, तो वो एकदम परफेक्ट था. तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे. कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी, कुछ 6-7 फुट की, और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थी, और बीच में एक गैप था. तो वो कहने लगे, आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रही हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएँ तो मर जाएँ, मगर खुश हैं. तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जप कर जाती हैं. तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है. मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर, खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है. मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना. मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा. खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं.
0: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं. वैला जी, उसमें आपने रोजी का एक करेक्टर किया था, और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रूसी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी, ट्रेडिशनल इमेज, उसको तोड़ा उसने. वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है. तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियाँ डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पर फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी.
1: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई, मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए. और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था, क्योंकि

आजकल भी लोग पूछते हैं आपने सीएडी का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था. फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है. वो कैरेक्टर वैसा नहीं है. तो वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी. रोजी का कैरेक्टर रोल लिया मेरे दूसरे डायरेक्टर्स, उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं. मैंने कहा क्यों? तो बोले एक तो रोजी नाम है और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है व्हाटएवर, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है. फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है. और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनालिटी के हिसाब से लिखी जाती है. ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम ऑब्वियसली. तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा? तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का

0: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने वाले हैं। हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: कुछ ही पलों में आप यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की ये खास खबरें।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और इस महीने की 21 तारीख को फिर से होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे, तकनीकी विकास और किसान कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 13,800 करोड़ रुपये की स्वीकृति के साथ कई बड़े एवं महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा ने जंगल, जल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया और जनजातीय समाज के आत्मसम्मान व अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की है। श्री गुटेरेस ने सभी हितधारकों से हमले रोकने और संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने सभी पक्षों से लेबनान, ईरान और गाजा में हुए युद्ध विराम का पालन करने का आह्वान भी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर पहली बड़ी पैमाने की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी तथा विशेषज्ञ पहुंचे हैं। और प्रदेश की शौर्या दल की टीम आज देश की सबसे बड़ी महिला सामाजिक नेटवर्क बन चुकी है। साल 2013 में महज 6 जिलों से शुरू हुई इस मुहिम में अब तक 22 लाख से ज्यादा महिलाएं और बेटियां जुड़ी हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

दोस्तों नमस्कार। शाम के 5 बज चुके हैं। श्वेत बादल और डूबता आफताब अपनी खूबसूरती चारों ओर बिखेर चुके हैं और अब बस किसी बात की कमी है तो वो है सुरीले गानों की और मीठी बातों की। और आपकी इसी कमी को पूरा करने हम आ गए हैं लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त पहल टेवरे और हर बार की तरह मैं फिर से लेकर आ गया हूं आप सभी को सुनाने बहुत सारे गाने और बहुत सारी बातें। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आज की इस खूबसूरत शाम को थोड़ा सलाम नमस्ते तो कह ही देना चाहिए। तो आइए इसी बात पर सुनते हैं आज का हमारा पहला गीत। ये

दोस्तों, अभी हमने सुना गीत सलाम नमस्ते, जो था फिल्म सलाम नमस्ते से, जिसमें स्वर दिए हैं कुणाल गांजेवाला और वसुंधरा दास ने। दोस्तों, जरा रुकें, बस एक पल के लिए। अभी जो भी आप कर रहे हैं वो सब छोड़कर खिड़की से बाहर देखें। क्या पता उनमें से किसी एक को खून की जरूरत हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं रक्तदान की। क्या आप जानते हैं कि इस देश में हर साल लोगों को लगभग 1 करोड़ यूनिट की जरूरत पड़ती है? 1 करोड़। और इसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा पूरा नहीं हो पाता। तो आइए इसलिए जानते हैं, बात करते हैं कि आखिर रक्तदान में होता क्या है। जब भी आप किसी को खून देते हैं तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को रक्तदान कहते हैं। जब आप वहां जाते हैं तो वहां पहले एक छोटी सी जांच होती है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, थोड़ी सी बेसिक बातें भी पूछते हैं, जैसे जैसे कि आपने खाना खाया।

कोई खतरा तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अब बात करते हैं उस एक यूनिट खून की जो आपने दिया है। वो लैब में जाता है, वहां उसके तीन हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल, जो हादसे में घायल इंसानों को, ऑपरेशन से जूझ रहे मरीजों को चाहिए होता है। दूसरा हिस्सा प्लेटलेट्स, जो कैंसर के मरीजों को, डेंगू से लड़ते बच्चों को चाहिए होता है। और तीसरा हिस्सा होता है प्लाज्मा, जो जलने वालों को, गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को चाहिए होता है। यानी एक बार दिया खून तीन अलग अलग लोगों की जिंदगियां बचाता है। एक बूंद, तीन रास्ते और तीन घरों में जिंदगी का बचाव। और एक बात जो शायद आपको नहीं पता हो वो ये है कि रक्तदान का कोई और विकल्प नहीं है। दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत ही होशियार वैज्ञानिक, सबसे महंगी लैब, कोई नहीं बना सकता इंसानी खून। तो ये जो हमारे शरीर में है ना, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है जो दुकानों पे नहीं मिलती। अब उन लोगों की बात करते हैं जो ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि मैं कमजोर हो जाऊंगा। अरे भाई, आप ये ध्यान रखें कि हमारे शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर खून होता है। एक बार में ली जाती है आपसे केवल 350 से 450 मिलीलीटर की डोनेशन, यानी कुल खून का 10% से भी कम, और वो भी 24 से 48 घंटों में वापस बन जाता है। हमारा शरीर समझदार है, उसे पता है कि कमी हुई है, तो वो उस कमी को खुद पूरी कर लेता है। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि ये ब्लड डोनेट करने वाले जो होते हैं, ये खुद भी बहुत फायदे में होते हैं। जब पुराना खून निकलता है तो शरीर में नया खून बनता है, ताजा, एक्टिव। दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है। शोध कहते हैं कि जो लोग नियमित रक्तदान करते हैं उनमें दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। साथ में हर बार डोनेशन से पहले फ्री जांच होती है, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, हेपेटाइटिस, HIV सब चेक होता है। यानी साल में 3-4 बार मुफ्त हेल्थ चेकअप। तो खून देने के फायदे बहुत हैं। अब जरा सोचें, जब इस देश में कोई भी मुश्किल होती है तो हम सब कैसे एक हो जाते हैं। बाढ़ आए या भूकंप, लोग दौड़ते हैं मदद के लिए। पर रक्त की कमी, ये कोई एक दिन की आपदा नहीं है, ये हर रोज की जरूरत है। हर रोज जब अस्पताल खुलते हैं तो वहां खून चाहिए होता है। थैलेसीमिया से लड़ते बच्चों को खून चाहिए होता है। सड़क हादसों में घायल लोगों को खून चाहिए होता है। बच्चों को जन्म देती माओं को खून चाहिए होता है। कैंसर से लड़ते बुजुर्गों को खून चाहिए होता है। ये मांग रुकती नहीं, इसलिए खून देना जरूरी है। शर्त सिर्फ 3, उम्र 18 से 65 साल के बीच हो, वजन 45 किलो से ज्यादा हो और उस दिन तबीयत ठीक हो, बस। कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं, हर 3 महीने में एक बार दे सकते हैं आप खून, यानी साल में 4 बार। और साल में 4 बार मतलब 12 लोगों की जिंदगी, 12। अगर गिना जाए तो 10 साल में 120 जाने बचा सकते हैं आप। तो आज बस एक कदम उठाते हैं, अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल का ब्लड बैंक नंबर जानते हैं, अपने शहर में कब शिविर लग रहा है वो पता करते हैं, और जो दोस्त, जो भाई, जो पड़ोसी अभी तक नहीं गए हैं उन्हें इसकी खासियत बताते हैं। इसी बात पर चलते हैं, सुनते हैं हमारा अगला गीत। ये

दोस्तों, अभी हमने सुना गीत खून चला, फिल्म रंग दे बसंती से, बोल हैं प्रसून जोशी के। दोस्तों, अभी उठें, नहीं अभी उठें, खिड़की खोलें और एक गहरी सांस लें। अब बताएं, वहां हवा कैसी थी? ताजी या उसमें कुछ था? धुआं, धूल या एक भारीपन जो गले में अटक गया हो? अगर आप देश के किसी भी बड़े शहर में हैं तो वो शायद उतना साफ नहीं जितना होना चाहिए। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है वो गाड़ियां जो हर रोज सड़कों पर दौड़ती हैं, हवा में घोलती हैं जहर, धीरे धीरे चुपचाप हर रोज। भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। हमारे कई शहर जैसे दिल्ली, कानपुर, वाराणसी दुनिया की सबसे जहरीली हवा वाले शहरों की लिस्ट में आते हैं। अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, दिल की तकलीफ, ये सब उस हवा का हिसाब है जो हम रोज ले रहे हैं। और इस प्रदूषण में गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन कहीं 40% तक है, यानी लगभग आधा जहर हमारी अपनी गाड़ियों से आ रहा है। यही आता है ई वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल। बहुत सीधी बात है, पेट्रोल डीजल की जगह बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर और एग्जॉस्ट पाइप से कुछ बाहर नहीं, बिल्कुल भी कुछ बाहर नहीं। गाड़ी चलती है और पीछे छूटती है तो सिर्फ सनसनाती हुई साफ हवा, और जेब भी ढीली नहीं होती। उतनी ही दूर एक ई स्कूटर चलाने में लगता है बस 1.5 से 2 रुपए का खर्चा। 1-1.5 साल की बचत इतनी होती है कि शुरुआती फर्क पूरा हो जाता है। और रखरखाव? अरे इंजन नहीं, तेल नहीं, झंझट आधी। बदलाव दिखने भी लगा है। 2023 में भारत में करीब 15 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी हैं और ये रफ्तार हर साल बढ़ रही है। कई शहरों में ई बसेस भी दौड़ रही हैं, गांव में सोलर बैटरी से फोन चार्ज हो रहे हैं। ना बिजली का बिल, ना पेट्रोल पंप, बस धूप। और धूप धूप तो हमारे देश में बिल्कुल भी कम नहीं है। तो अगली

बार जब भी आप दोपहिया खरीदने जाएं, तो ई स्कूटर पर एक नज़र तो डाल ही दें। जहां बात हो ई बस ई ऑटो की, वहां इसकी मांग करें और आसपास के लोगों को बताएं, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां एक इंसान कहता है कि हाँ, अब ये ज़रूरी है। ई वाहन सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये एक चुनाव है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उस हवा के लिए जिससे आने वाली पीढ़ियां सांस लेंगी। हर इलेक्ट्रिक गाड़ी जो सड़क पर आती है, वो एक वादा है कि हम थोड़ा और जिम्मेदार हैं, थोड़ा और जागरूक हैं। तो कल की उज्ज्वल भारत के इस धुरंधर को अपनाते हैं और सुनते हैं आज का हमारा अगला गीत, ये

जलाकर फिल्म धुरंधर से, जिसे गीत दिया है शाश्वत सचदेव ने। चलिए सुनते हैं एक और गीत फिल्म दिल धड़कने दो से,

दोस्तों, अभी हमने सुना गीत दिल धड़कने दो, जिसे स्वर दिए हैं प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर ने। दोस्तों, आज हमने बात की ब्लड डोनेशन पर। हमने जाना कि रक्तदान जीवन दान से कम नहीं होता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें और संवेदनशील और ह्यूमन बनाती है। साथ ही हमने जाना ई व्हीकल्स के बारे में, कैसे ई वाहन और उनकी खूबियां हमारे कल के भारत के लिए आज का पहला कदम है। दोस्तों, जाते जाते मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, आज हमारे पास अगर कुछ है तो वो सिर्फ आज है। आज ही वो समय है जहां आप अपनी जिंदगी, दूसरों की जिंदगी और आने वाले कल को और बेहतर कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि हम आज की अहमियत जानेंगे और उस पर अमल

कदम भी उठाएंगे। इसी के साथ मैं पहल टेवरे आपसे लूंगा इजाजत। ये मेरी उम्मीद रहेगी कि आप अपना ध्यान रखें, अपने आसपास वालों का ध्यान रखें, जानवरों को पानी देते रहें और एक आने वाले कल की उम्मीद बने। इसी के साथ मैं लूंगा इजाजत। धन्यवाद।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाऊं।

वेकअप सिटीज़, फिल्म का गीत आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज़ में। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 5:55 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे प्रीतम सिंह ठाकुर के गाए बुंदेली लोकगीत। 6:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। आज के कलाकार होंगे नितिन अग्रवाल, आप सुन सकते हैं इनकी गई गजलें। कृषि जगत कार्यक्रम शाम 7:21 पर, इसमें आप सुनेंगे श्रीमती दीप शिखा सिंह की भेंटवार्ता, विषय है आर्या परियोजना। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे रात 8 बजे। फिल्म संगीत 8:35 पर, समाचार स्पॉटलाइट 9:15 पर, फोन इन कार्यक्रम होगा रात 9:30 पर, प्रस्तुति सावनी राजू की होगी। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा, इसमें सुनिएगा विदुषी किशोरी अमोनकर का गाया राग मालकौंस में ख्याल। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनभावन पेश करेंगे रात 10:30 पर।

ये थी जानकारी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल के प्रमुख कार्यक्रम। सुबह 5:55 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:30 पर कार्यक्रम होगा चिंतन, इसमें सुनिएगा प्रार्थना, इस विषय पर चिंतन। 6:35 पर श्री रामचरित मानस का गायन आपको सुनवाएंगे। गुड मॉर्निंग जबलपुर, ये कार्यक्रम होगा सुबह 7:20 पर। 9:00 लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार।

0: वंदे मातरम गौरव गान की 1:30 10:05 पर और सुबह 10:20 पर श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के फरमाइशी फिल्मी नगमे। कार्यक्रम होगा मनभाव। सारंगा कार्यक्रम में सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीत।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, तकनीकी विकास और किसान कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 13,800 करोड़ रुपये की स्वीकृति के साथ कई बड़े एवं महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया और जनजातीय समाज के आत्मसम्मान व अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा की जा रही है। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ पहुंचे हैं। और प्रदेश की शौर्य दल की टीम आज देश की सबसे बड़ी महिला सामाजिक नेटवर्क की टीम बन चुकी है। साल 2013 में महज 6 जिलों से शुरू हुई इस मुहिम में अब 22 लाख से ज्यादा महिलाएं और बेटियां जुड़ चुकी हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजे है। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
3: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
3: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
3: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
3: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
3: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार

0: की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे।
1: जी।
0: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है।
1: हुँ?
0: और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है।
1: जी हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
0: जी जी जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
0: जी जी जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे?
0: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
0: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
0: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
1: वाह यानी?
0: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
0: दूसरा शब्द है केई।
1: जी।
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी

0: वेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संबद्या की बुलाहट क्यों हुई?
1: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परिवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
2: आ गए भैया।
1: हाँ।
2: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
1: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ

0: देने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
1: हाय हाय।
2: हर गोविंद भाई,
1: हाँ,
2: तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
1: कहाँ बड़ी बहुरिया?
2: मेरी माँ के पास।
1: माँ के पास? कहिए, क्या संवाद है?
2: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
1: बड़ी बहुरिया,

0: हर कोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
0: हाँ?

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?

0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
1: माँ, माँ देखो हरगोबिंद काका आए हैं।
2: पाए लागू माँ जी।
3: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
2: जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
3: मेरी बेटी का कोई संवाद?
2: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हाँ? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
3: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
2: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
3: सो तो है।
2: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
3: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
3: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ। हाँ? अब थोड़ा जलपान कर लो।
2: अच्छा अच्छा माँ जी।
3: हरगोबिंद क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
2: माँ जी अब आज्ञा दीजिए।
3: अरे
2: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी अब पान लागू।
3: जीते रहो बेटा,
2: अब चलता हूँ।
4: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
2: अरे भैया जी आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं।
4: अच्छा?
2: है। अच्छा अच्छा राम राम
4: राम राम
2: राम, राम।

0: पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पीलो पीलो, शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवार न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई, तुम
2: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, यहीं रहूंगी।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विद फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like.

मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। कलाकार हैं प्रीतम सिंह ठाकुर। हम आपको सुनवा रहे हैं इनके गाए बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रीतम सिंह ठाकुर के गाए बुंदेली लोकगीत। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत कलाकार हैं नितिन अग्रवाल, आइए सुनते हैं इनकी गाई गजलें। पहले आपको सुनवा रहे हैं इनके स्वर में महादेवी वर्मा का लिखा ये गीत।

0: नितिन अग्रवाल के स्वर में अभी आपने ये गीत सुना, और इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है। ये कमी सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम एक वर्ष तक सोना न खरीदने की अपील का परिणाम है। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी, जिससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए थे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. Addressing the media in New Delhi, External Affairs Minister Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
5: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
4: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System Vinimay in New Delhi to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across India's land borders. The system is a digital platform designed to integrate operations across

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर से फोन पर बात की, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर जताई चिंता। केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह नई योजना के लिए राज्यों को 95,692 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, भोपाल मेट्रो समेत कई बड़े फैसलों को मंजूरी। और इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का पहला दिन, 21 देशों के प्रतिनिधियों ने साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर की चर्चा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई और कुवैत की संप्रभुता पर हमलों की कड़ी निंदा दोहराई। उन्होंने शांति बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर जोर दिया और कुवैत में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा के प्रति अमीर के व्यक्तिगत ध्यान के लिए भी आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपये के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ये मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण में सुचारू परिवर्तन के लिए है। ये नया कानून अगले महीने की पहली तारीख से पूरे देश में लागू होगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पिछले साल की तुलना में बजट में 40% की बढ़ोतरी की गई है और किसी भी राज्य के आवंटन में कटौती नहीं की गई है।
1: किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे, इसका कम हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही, पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से, तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पहला दिन रहा। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इसमें शिरकत की। आज दिनभर कई दौर की बैठकें हुई जिनमें प्रतिनिधियों ने साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर गहन विचार विमर्श किया। ये सम्मेलन 13 जून तक चलेगा जिसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और छोटे किसानों को मजबूत बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें करीब 13,800 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ कई बड़े फैसले लिए गए। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत के लिए 13,565 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
2: विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विभिन्न योजना संसेवाओं के लिए 235 करोड़ की योजना के निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय किसान कल्याण वर्ष में लिया गया है, किसानों के लिए जो कपास में मंडी शुल्क लगता है वह मंडी शुल्क अभी 1 रुपया प्रति 100 रुपए के ऊपर या 1% लगता है। अभी निर्णय करा है कि हम हमारे यहाँ पर मंडी शुल्क उसका आधा टका करेंगे। आधा परसेंट मंडी शुल्क होने से मध्य प्रदेश के किसानों का जो कपास है वह मध्य प्रदेश की ही जिनिंग फैक्ट्रियों के अंदर प्रोसेस होगा।
0: मंत्री श्री कश्यप ने जानकारी दी कि मंडी शुल्क से मिलने वाली 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय किसान सड़क निधि और कृषि अनुसंधान में लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को हमेशा प्रधान सेवक माना है और गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के जीवन में नया बदलाव लाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में

0: इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया,
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेगी।
0: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया,
2: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है, मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा कर इस महीने की 21 तारीख को होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक सामग्री पहुंचाने तक पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। नीट पेपर लीक मामले में श्री प्रधान ने कहा कि CBI जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने पर आज प्रदेश के सभी जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जांच, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श मिलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश में अब तक 10 लाख से ज़्यादा पथ विक्रेताओं को लाभ मिल चुका है। योजना की पहुंच और बढ़ाने के लिए 1 जून से पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो 30 जून तक चलेगा, जिसके तहत पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी के 15,000 रुपये तक का आसान कर्ज और डिजिटल लेन देन की सुविधा दी जाएगी। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज भीषण गर्मी का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने 10 और 11 जून को भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं दूसरी तरफ मानसून के 15 से 18 जून के बीच प्रदेश में प्रवेश करने का अनुमान है। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। ट्राई सीरीज के पहले वनडे में इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। डांबुला में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका ए की टीम 48.5 ओवर में 269 रन पर ही ऑल आउट हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर नगर निगम के अग्निशमन विभाग ने शहर के करीब 325 स्कूलों, अस्पतालों, कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फायर NOC जमा करने के नोटिस जारी किए हैं। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के प्रभावी क्रियान्वयन में शहडोल जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। श्रम विभाग और आयुष विभाग द्वारा आज धार औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 दिवसीय योग शिविर एवं स्वास्थ्य जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाहजहांपुर में मलेरिया की रोकथाम के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कटनी में बारिश में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम के द्वारा नालियों की सफाई एवं गहरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। राजगढ़ में आज से 16 जून तक विभिन्न जनपद पंचायत मुख्यालयों और ITI में रोजगार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में मृगनैनी मध्य प्रदेश प्रदर्शनी 2026 में बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए एक विशेष चौपाल कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंडवा के सभी विकासखंड एवं नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित EVM वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया। झाबुआ कलेक्टर ने आज नगर परिषद मेघनगर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर जल गुणवत्ता की जानकारी ली और मंदसौर के गरोट तहसील के ग्राम कुलारसी में करीब 5 करोड़ रुपए की 6.16 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके साथ ही गुना में 15 जून से 19 जून तक ब्लॉक स्तर पर सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर भर्ती के शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनबे बारे सबई किसान भैया बिन्ना भौजी हरन से माधुरी बिन्ना की राम राम। भैया हरो चले आए चौपाल में और सोच रहे थे अपने भैया हरन से कछु बातें करें, तो बातन से एक बात याद आई कि आज जब हम अपनी चौपाल की तरफ आ रहे थे हतो तो दोपहरिया को समय, सो हमने कही चलो चल दें तना हम अपनी भौजी हरन से मिलत जुलत चलें, तो अच्छो भी लगत है। कहत नहीं है कि मिलत जुलत रहो बोलत चालत रहो तो मन हमेशा खुश रहते। सो यही सोच के हमने कही जाने तो चौपाल शाम को हैं लेकिन चलो दोपहरिया ही में चलत हैं। सो दोपहरिया में भैया चल दाए, सो हमें मिल गई कमला काकी। अबे ढेर सारे मोड़ा मोड़ी और जितने भी ये थे जितनी भी उनकी सखी सहेलियाँ रहीं वे सब रन खुन ले के चली जा रही थी जल्दी जल्दी झटपट झटपट। सो हमने कही अरे भौजी अरे काकी रुको तो कहाँ लेके जा रही हमारी भौजी हरन खो बाल बच्चन खो। सो बोलन लगी अरे बिन्ना अपने ते तो मेला नहीं भर गो भरो है। बोले आज 9 जून है। सो हमने कि हो पता तो है आज 9 जून है। बोले वो भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है, उनके बलिदान दिवस पे हमेशा है ना हर साल मेला रखो जात है मतलब भरत है। ओते जितने भी आदिवासी भैया बिन्ना आ रहे हैं वे आते हैं और तरह तरह के सामान लेके आते हैं। हमने कि अच्छा, और बोली कि ओते सामान तो ठीक ठीक है, खावे पीवे को ही सामान अच्छो उन्होंने मिला थे खा। और दूसरी बात कि उते पे है ना जो नाटक है बेसोई बढ़िया है ना दिखाए जाते हैं। हमने कि अच्छा, तो हमने कि नौटंकी की बात कर रही। बोली हाओ। हमने कि जावा तो अच्छी बताई और है ना मड़िया अच्छो भरो भाव ऐसे। बोले हाओ। सो हमने कि चलो हम सब चला थे। सो भैया उते गए हम। अब होते हैं जो मेला तो वो ऐसो मेला ना तो कि जैसे अपन और जाते हैं इतने होते कि इतने होते को सामान आ गो होते, तो जो ना आदिवासी भैया हरण के बनाए हुए सामान है ना वे सब चीज़ें आती। अब उतर गए तो हमने देखो कि अच्छे बढ़िया जो लकड़ी के लकड़ी से बनाए भाई है ना मूर्तियाँ आती बे अच्छे झुंझुना खिलौना बे सब मिले। अब हमने फिर थोड़ी तनक दूर आगे चले मिट्टी के बर्तन देखे, दिया देखो गुल्लक देखी बड़ी सुंदर सुंदर हती, और धातु से बनी भाई चीज़ें तो ऐसी बढ़िया हती कि डोकरा कला नहीं हो तो उसे अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई थी। और देखी तो हैंडलूम की साड़ी कुर्ता और पिथौरक कला से जो है ना प्रिंट रहता दुपट्टा में ऐसे नौने नौने लग रहे थे कि कछु पूछो ही ना। और चांदी के गिलट के जो आभूषण हैं बेस हुई बड़े सुंदर सुंदर हते। और हमारे तो मोड़ा मोड़ी कह रहे थे कि अरे हमें तो जो है ना मोती की और कुड़ियन की माला पहनने हैं बाबी बड़ी सुंदर हती। सो हमने कही कि बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं इतने तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। सो कछु हमारे ने खरीदी खरादी करी। फिर जीजी बोलने लगी बिन्ना इतने जो ही

सो बोलन लगी कि काय भैया। सो बोलन लगी हमसे कि इतने ना अच्छो बढ़िया शुद्ध शहद मिलत है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, और साथ साथ में जो दर्द निवारक तेल होत ना बेस हुई बड़े अच्छे मिलत। सो हमने कही कि जा बात तो सांची है, तो चलो अपन कछु ले लें। सो भैया हम उनने बे गए देखे सुने, जीखो पसंद आओ सो उनने लो। फिर कहा भाव कि अब तनक दूर और चले। सो अच्छी बढ़िया खेती के औजार, दराती तो खुरपी तो कुल्हाड़ी तो चाकू, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ी। हम उनने कही कि जो भी बड़ी अच्छी है भाई, जीहो जरूरत हो सो अपनो खरीद खराद लो। अब तनक दूर चले सो मोड़ा मोड़ी करने लगे, अब तो भूख लगी आई, भूख लगी आई। सो हम उनने कही अच्छा भूख लगी है, तो ककन ने कहा देखें वो तो बढ़िया कोदो की खीर मिल रही थी, जड़ी बूटियन की चटनी मिल रही थी। हम उनने बच्चन को दिलवाई, अपन ने खुद भी खाई, बड़ो अच्छो लगो भैया। मेला में तो ये सब चीज़ें तो हती ही हती। साथ में हमने देखो कि उतें एक तरफ है ना कैंप लगो, तो और कैंप में जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती ना आदिवासी भैया बहनन के लाने, बे सब चीजन की जानकारी सोई उन्हें दे दी जा रही थी कि हमारे मतलब आपको का का अधिकार है, आपको कैसे काम करना, कौन से सरकार द्वारा आपके हित के लाने योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे पैसा एक्ट है उसके बारे में बता रहे थे, वन अधिकार आपके कौन कौन से हैं उसके बारे में बता रहे थे। ये सब चीज़ें हमने उतें देखी, बड़ी उमदा लगी। और फिर तनक दूर चले हमारे, सो भैया उतें पे तो नौटंकी ऐसी बढ़िया हो रही थी, मोड़ा मोड़ी ऐसे बढ़िया कपड़ा पहने थे, कैसे अब जब आदिवासी भैया बहन के बढ़िया अच्छी पोशाक हती सुबह पहने थे। अब जब जैसे ही हम औरतें बैठे, एकदम प्रकृति को अच्छो शांत वातावरण दिखाई दो अच्छे तरीका से, और है ना अच्छी सुंदर प्रकृति दिख रही थी, औरतें वो चिड़ियाँ चूँ चूँ कर रही, इतना अच्छो लगो कि का बताएं। और फिर उसके बाद उनको जो साधारण सुजीवन रहे थे आदिवासी, इनको वो दिखाओ बड़ो अच्छो लगो। और फिर ऊ के बाद जब देखो कि भैया हरो जो जे अंग्रेज रहे ना, इन जी कौन कौन से कैसे कैसे अत्याचार कर रहे हैं आदिवासी भैया हरण के ऊपर, जो सब दिखाई दे उसे ऐसो मन दुख गो कि का बताएं। अब जे बात आती, फिर उनने पीछे से आवाज़ दई, बोले 1900 के समय, जन सन 1900 के समय में जब बिरसा मुंडा हते, सो उन उनने देखो कि इतने सारे हैं ना हमारे जितने भी भाई बंधु हैं इनके ऊपर बड़ो अत्याचार अंग्रेज सरकार कर रहे हैं, होते कि जो जमींदार हते बे उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो उन लोगों ने भी आवाज़ तो हमेशा उठाई, लेकिन कहा है कि संगठित रूप से नहीं उठाई। और जब तो बिरसा मुंडा ने सोची कि अब हमें सबसे पहले कैसे, उनकी उम्र भी कछु ज़्यादा ना थी भैया, उनकी उम्र कम ही हती, लड़का ही से हती। सो उनने सोची कि चलो हम सबसे पहले इनको सबको इकट्ठो करें, सो उनने सबको संगठित करो और उसके बाद इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और जब ये आवाज़ उठाई सब ने संगठित होके, तो ब्रिटिश सरकार तो घबरा गई, थरथरा गई कि अरे जो जो कहा लगो। लेकिन उनने कहा करो कि अब उन्हें में से कछु जन को पकड़ो, उनने कही कि इनाम रखो जो है, जो को उन्हें पकड़ के लिया है या इनके बारे में जानकारी दे बिरसा मुंडा के बारे में, तो हम तुम्हें 500 रुपया दें या 1000 रुपया दें, ऐसो इनाम रख दो। तो कछु लालच के कारण कछु लोग आ गए और उन्हें धोखे से पकड़वा दो। और जब उन्हें पकड़वा दोगो तो उन्हें भैया भारी टॉर्चर करोगो, भारी मारो पीटो करो, तो रांची जेल में उन्हें रखोगो। और कहते हैं कि उन्हें हैजा होगा तो या टॉर्चर के मारे, जो भी समस्या भाई हो, वे इतनी 25 साल की उम्र में अल्पायु में भी दुनिया को छोड़ के चले गए। तो जब भैया हम उन्हें जो सब देखो तो मन बड़ो दुखी भाव, और बाल बच्चा पूछने लगे मम्मी जे भगवान बिरसा मुंडा कौन आए। तो हमने कि देखो जे आदिवासी भैया आते इनने है ना स्वतंत्रता सेना संग्राम में भाग लाओ और देखो अपने लोगन के लाने लड़े, तो सबके मन मन उनके प्रति इतनी श्रद्धा भर गए उनके मन में कि, और सबके मतलब आंखन से आंसू आ गए और उनके प्रति सबके हाथ जुड़ गए भैया, कैसे उनने अपने समाज के लाने, अपने परिवार के लाने और अपने अपने आदिवासी भैया बहन के लाने इतनों बलिदान दो। और कहते नहीं है कि बे सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ना हते, बल्कि बे समाज सुधारक भी हते। उनने अंधविश्वास के ऊपर, पशु बलि के ऊपर, नशाखोरी के ऊपर पूरा है ना अभियान चलाओ, लोगों को समझाओ बुझाओ, यही से उन्हें

और जमीन, जल और जंगल, इनकी रक्षा करवे के लान उन्होंने बीड़ा उठाओ कि भई हमें अपनी अब इनकी हमेशा रक्षा करने हैं। ऐसे आदिवासी लोगों ने धरती आबा कहे थे। धरती आबा को मतलब है कि वे धरती के पिता हैं और उन्हें हमेशा नमन करू जाते। और आज के दिन ओते पे देखो तो हमने कि अच्छी उनकी मूर्ति बनी भई हती और ओते पे सब लोग माला चढ़ा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे और उनके बलिदान को याद कर रहे थे। और बलिदान से बात याद आई कि अपन भी उन्हें बलिदान के रूप बलिदान को उनको याद करते हैं। रुद्र दुबे को और संगी साथियों को गाओ भाव जो अपन सुनते हैं लोकगीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हाँ सुभैया आ रहो, अब है ना उतर से मीला से तो हो के आ गए, और देखो उनके बारे में अब उन इतनों जानो समझो बच्चन ने भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, तो वे सब चीज़ें उन्हें अच्छी भी लगी और उन्हें जान के समझ भी लो कि भाई अपने देश मातृभूमि में अपन को कैसे प्रेम करने हो। देखो कितने लोग हैं ऐसे बलिदान दे दो अपने जीवन को। तो भैया अब है ना जब चले हम सो काकी को बोलने लगी, कमला काकी बोली कि बिन्ना चलो तो तनक हमारे घर है, तनक पानी यानी पी लो ठंडो ठंडो, हमने पानी काय पे बा रही हूँ, शरबत पे बा दो, कैसे इतनी गर्मी है आजकल। तो सो बोलने लगी हाओ हाओ शरबत पी लई हो। सो जैसे ही उनके ते घर गए, सो पहले तो हम देखा थे कि उनके पछीते में कछु ऐसे ऐसी कबाड़ सो रखू रहे, तो कछु कछु काम ना हो तो हमारे जाते ही नहाते। ओते देखो तो ऐसी बढ़िया सब्जी भाजी लगी हैं कि का बताएं, तो चोरैया की भाजी लो, तो लौकी लो, तो गिलकी लो, बरबटी ऐसे सब कछु लगो है, तो बड़ो अच्छो लग रहा हो। तो कैसे अब गर्मी को मौसम है, ओते उतने इतनी हरियाली देखी, तो अच्छो ठंडो ठंडो। हमने कि जा बताओ भौजी जो कहाँ से तुमने लगा लो, पहले तो ऐसे ही अंगड़ खंगड़ पड़ो रहे तो कबाड़। सो बोलने लगी कि अरे हमारा मोड़ा नहीं है पिंटू, वो आर्या परियोजना नहीं चल रही है। सो हमने कि अच्छा। सो बोली कि हाओ पर आर्या परियोजना से तो प्रशिक्षण दे जात मोड़ा मोड़ियन को 18 साल से जो 35 साल के बीच में होते हैं, वे जाके उतर प्रशिक्षण लिए थे, तरह तरह की चीज़ें सीखते हैं, खेती बाड़ी सीखते हैं, और खेती बाड़ी से संबंधित जो कहूँ मुर्गी पालन करने हैं, कहूँ मछली पालन करने हैं, तो मधुमक्खी पालन ये कितनी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सो हमने कि अच्छा। सो बोली कि वो सीख साख क्या मोड़ा। सो उनने कही कि जमीन पड़ी है, और देखो आपने तो ढोर बछेरू है ही है, खाद है ही है। सो बस उनने कही कि अम्मा हम तो इतने जो सब चीज़ें लगा वो चाहते हैं। सो हमने की लगा लू। सो हमने की बताओ हरा लगे ना फिर करी रंग चोखो हो जाए बालू काम हो गो, और मोड़ा सीख के आ गो तुम्हारे तो अच्छी सब्जी भाजी होने लगी है, अब इतने सब सामान बाजार में खरीद भी जाओ कितो पैसा लग जात। सो बोली हाओ बे ना तो तुम सो ही ले जाइयो। सो हमने कि हाओ ले तो जे हैं। अब हमने कही लेकिन जा बताओ आर्य परियोजना के बारे में और कहा। सो बोलने लगी कि देखो हमें तो इतना ही पता है, लेकिन अब हमारे भैया बिन्ना हारे बोलने लगी कि बिन्ना हमें सो ही के बारे में जानकारी चाहिए। सो हमने की चिंता नहीं कर, हम चौपाल जा रहे हैं। सो चौपाल में हम तुम्हें की जानकारी सुनवाएं, तो हम जब जानकारी सुनवा भी जा रहे हैं भैया रहो, तो आप और सो ही सुन लो आर्या परियोजना है का, और इसे अपन को का लाभ है। जब जानकारी दे रही हैं श्रीमती दीपशिखा सिंह, और इनसे बातचीत कर रहे हैं लखनलाल रजक, तो जानकारी सुनते हैं।
4: किसान भैया रहो, आज हमने अपने कार्यक्रम में बुलाव है श्रीमती दीपशिखा सिंह मैडम किलाने। आप कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोन 9 जबलपुर के कार्यालय से आई हैं। अपने लाने आज जानकारी दें कि आर्या परियोजना का कहाउत है, सो उसके बारे में अपन मैडम से जानबू चाहते हैं। तो मैडम सबसे पहले तो हम अपने कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार।
5: नमस्कार
4: मैडम सिंह साहब, जैसे कि

0: हमारे किसान भैया हने नहीं जानते हैं कि जा आर्या परियोजना का कहावत है, इखे अपन कैसे जाने कैसे समझे, तो इके बारे में आप हमारे किसानों के बताओ।
1: सबसे पहले हम आर्या परियोजना के बारे में बात करेंगे। आर्या परियोजना, आर्या एक इंग्लिश का शब्द है जिसका अर्थ है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है युवाओं को कृषि में आकर्षित करना और उन्हें कृषि में बनाए रखना।
0: जी, अब इसकी शुरुआत जैसे कि जा आर्या परियोजना जो बनाई गई, इसकी शुरुआत कब भई, कहाँ भई और कौन के द्वारा करी गई?
1: जी, आर्या परियोजना की शुरुआत सन 2015-16 में ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपने कृषि विस्तार विभाग अटारी कृषि अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान के मार्गदर्शन से कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कार्यान्वित है। इसकी शुरुआत पटना बिहार से की गई।
0: जी जी जी, तो मैडम आर्या परियोजना की जो शुरुआत भई है और इस शुरुआत करवे के पाछे माने ऐसो का है कि काय एक ही हमें आवश्यकता आन परी कि हमें जाए योजना या परियोजना शुरू करने परी?
1: इसकी आवश्यकता ग्रामीण युवाओं को कृषि के विभिन्न क्षेत्र से संबंधित या क्षेत्र की तरफ उद्यमशील गतिविधियों में सशक्त बनाने एवं शामिल करने में पर केंद्रित किया गया है।
0: जी हाँ, अब मैडम हम जो चीज आपसे जानबो चाहत हैं कि आर्या परियोजना के कछु ऐसे तथ्य हैं माने उनमें का शामिल रहते हैं, तो आप वो सी हमारी सुनबे बारे भैया बिन्नान के लाने बताएं।
1: जी, आर्या परियोजना कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से 25 राज्यों में चलाई जा रही है। परियोजना के तकनीकी भागीदारों में ICAR संस्थान जैसे अटारी एवं कृषि विश्वविद्यालय जैसे कृषि विज्ञान केंद्र शामिल हैं। इसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है।
0: जी, अब मैडम जैसे कि बात आउट है, आपने कही कि युवाओं के लाने प्रशिक्षित करो जात है, उनके लाने ज्ञान दो जा रहा है, और हमारी समझ में आज जाए आई आपने कही कि 25 राज्यों में जा परियोजना चलाई जा रही संचालित करी गई है, तो इनमें युवाओं की जो संख्या है वह कितनी हो सकत है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा?
1: युवाओं की संख्या आर्या परियोजना में कम से कम 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 युवा इसमें सम्मिलित होते हैं और उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एक जिले के आधार पर, एक जिले से हम 200 से कम युवा नहीं ले सकते और 300 से ऊपर युवा भी नहीं होने चाहिए।
0: जी हाँ, अब जैसे युवाओं के लाने जरूरत है उद्यम की या रोजगार की जो उनके लाने आजीविका को काम कर सके, तो उके लाने युवाओं की आयु सीमा सोई कछु रखी गई हुई है?
1: जी, इसमें कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष के युवा इस परियोजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: अच्छा, इसे कम ज्यादा के मतलब नहीं चले?
1: नहीं,
0: 18 से कम
1: के 18 से 35 वर्ष ही युवा कहलाते हैं, उनको हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं।
0: तो इनके लाने कौन कौन से उद्योग धंधे या रोजगार के बारे में ज्ञान सिखाओ जाते हैं, बताओ जाते हैं?
1: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित उद्यम शामिल हैं इसमें।
0: जी हाँ।
1: जैसे मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, बीज प्रसंस्करण, डेयरी प्रोडक्ट्स इसमें यूज होते हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन इसमें शामिल होता है, भेड़ एवं बकरी पालन, मछली पालन। जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो किसान भाई हैं वो सबसे ज्यादा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर काम करते हैं। लाख उत्पादन भी इसमें शामिल है, वर्मी कंपोस्ट, पौध नर्सरी इत्यादि विषयों पर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है आर्या परियोजना के अंतर्गत।
0: जी सिंह मैडम, जैसे कि हमारे किसान भैया ने अपनी बातें सुन रहे हैं, तो आर्या परियोजना के उद्देश्य जो है वे काका है उद्देश्य योजना के?
1: जी, ग्रामीण युवाओं को कृषि विकास में शामिल करके आकर्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना।
0: जी हाँ।
1: ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार एवं आय का नियमित प्रवाह उत्पन्न करना।
0: जी,
1: इसमें मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और विपणन जैसी संसाधन और पूंजी गहन गतिविधियों को शुरू करने के लिए भी नेटवर्क समूह स्थापित करना होता है। युवाओं के सतत विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम के तहत उपलब्ध अवसरों के अभिसरण के लिए विभिन्न हितकारों और संस्थानों के साथ कार्यात्मक

0: संबंध प्रदर्शित करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं।
1: जी हाँ। अब मैडम हम जानबो चाहते के आर्या परियोजना के किसान भैया हने और बहने जे माने का लाभ उठा सकत हैं। अबे तो अपन ने बताई कि 18 से 35 वर्ष की उम्र के जो युवा हैं सो उनके लाने हैं, मनो अब किसान तो सभी उम्र को हो सकत है, सो
0: जी,
1: इनके लाने का है।
0: इसके जो लाभ हैं ये हो सकते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए आय का एक नियमित स्रोत उपलब्ध करेगा। अगर
1: जी
0: आर्या परियोजना से कोई युवा या कोई किसान इससे जुड़ना चाहता है और उससे ये तो प्रशिक्षण लेके अगर वो अपना एक उद्यम स्थापित करना चाहता है तो इससे आय का एक नियमित स्रोत उपलब्ध हो सकता है।
1: जी
0: यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक कृषि, मतलब एक बहुत ही शुरुआती जो कृषि होती है उसके बारे में और सेवा संबंधी गतिविधियों में अल्प रोजगार एवं रोजगार ग्रामीण युवाओं को शामिल करेगा। इसके अतिरिक्त यह ग्रामीण युवाओं को खेती को एक पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जिस तरह से युवा पैसे कमाने के लिए गांव से शहर की तरफ मूव करते हैं, पलायन
1: हाँ
0: करते हैं, तो उनको गांव में ही खेती से जोड़कर ही एक नियमित रूप से
1: हाँ
0: आय प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
1: जी जी
0: इससे कृषि विकास में मदद मिलेगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र आर्थिक रूप से विकास होगा।
1: माने के अपने जो युवा हैं और किसान हैं उनको कहूँ दूर जावे की जरूरत नहीं
0: जरूरत
1: है,
0: नहीं है।
1: अच्छे से खेती को ज्ञान प्राप्त कर ले हो और मन लगा के खेती करो,
0: जी
1: आपको ऐसो कछु समझावो
0: जी
1: है।
0: जी
1: जी हाँ
0: यदि गांवों में रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे तो यह ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के प्रवास को कम कर सकता
1: जी
0: है।
1: हाँ
0: यह देश के छोटी जोत और बढ़ती आबादी से जुड़ी समस्या को कम करता है।
1: हाँ हाँ
0: खाद्य सुरक्षा का जो समस्या है उसका समाधान कर सकता है।
1: जी हाँ अब हम आपसे और जानबो चाहते हैं कि कछुए से आंकड़े सोई बता सकत हो आप जो ने इस पूरे काम के लाने उपयोगी होवे।
0: जी, जैसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान से हैं तो हम ये प्रोजेक्ट चलाते हैं, ये
1: जी
0: आर्या
1: हाँ
0: परियोजना में हम काम करते हैं, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमारा जोन कहलाता है। जोन 9 के अंदर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है। जैसे कि आप आंकड़े की बात कर रहे हैं
1: जी हाँ
0: तो इसमें हम 12 कृषि विज्ञान केंद्र शामिल करके रखे हुए हैं, जिसमें 114 आर्या उद्यम के विषय पर प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं,
1: जी
0: है
1: हाँ
0: ना, और 2172 कृषक युवा प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, जिसमें से 1473 पुरुष एवं 699 महिलाएं शामिल हैं।
1: जी हाँ
0: 792 युवा उद्यम में शामिल हो चुके हैं।
1: जी
0: ये 2172 ट्रेनिंग ले चुके हैं, प्रशिक्षित हो चुके हैं, और 792 जो युवा हैं जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं जो कि उद्यम में शामिल हैं,
1: जी
0: और
1: हाँ
0: 385 उद्यम उन्होंने स्थापित कर लिए हैं अब तक के ये आंकड़े रहे।
1: जी तो श्रीमती दीपशिखा सह मैडम आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे किसान भैया बिन्नाहरों के लाने आर्या परियोजना के बारे में उम्दा उम्दा बातें समझा खूं बताई हैं। आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हाँ तो भैया आरो, अब हम कमला जी के तैसे चलन लगे, सो बोलन लगी बिन्ना अब आई हो तो देखो जामुन को पेड़ लगो है, अच्छी खासी जामुन फरी भई है। तो हमने कहीं टपक तो रही हैं, लेकिन वही है कि वे गिर जाती हैं तो खराब हो जाती हैं। सो बोलने लगी चिंता ना करो, हम अबे तोड़वाएँ दे रहे मोड़ा से। सो हमने कहा चलो घाम की, अब देखो घाम तो खूब है, अब यही घमछइयाँ में बैठ के है ना हम जामुन खा लें। सो बोलने लगी कि हाओ हाओ ठीक है। तो भैया हम तो जब तक जामुन खा रहे हैं और आप देवी सिंह दाहिया भैया को जो उच्च उंदा सो एक लोकगीत तो सुनो।

हाँ तो भैया हरो, जामुन की घनी छैया तो अपन ने सुन ली और हम चलन लगे अपनी काकी के तैसे से उनने है ना अच्छी बढ़िया लौकी सी पकड़ा दी हमें। बोली कि बिन्ना जब पूरी जैविक खाद से बनी है, बोली जैविक तरीका से है ना उगाई है। सो हमने कही जा बात तो सांची कह देख के इतनी अच्छी लग रही है कि कछु पूछो ना। हमने कि काय काय जी काय काकी और है ना इमें कछु रासायनिक उर्वरक वगैरह नहीं डालो, बिल्कुल नहीं डालो। सो बोली यहाँ बिन्ना जो तो घर ही में अपन ने उगाई है और देखो खूब अपने पास में गोबर की खाद है, केंचुआ खाद है, हरी खाद है, कौनों की कमी नहीं है। सो अच्छी है ना घर ही में उग गई और बिन्ना जो है कि देखो मिट्टी भी अच्छी उपजाऊ रहे थे। अपन जैविक खाद को इस्तेमाल करते हैं, जैविक खेती अपन अपनाते हैं और रासायनिक उर्वरकन से तो देखो अपन कीटनाशक डालो तो देखो मिट्टी मिट्टी के उपजाऊपन कम हो जाते हैं, जल

अपन को सूख नहीं पाता है, कितनी परेशानियां हो जाती हैं, और स्वास्थ्य के लाने तो तरह तरह की बीमारियां सोई हो रही हैं। सो हम तो भैया इन सब चीज़ को इस्तेमाल नहीं कराता है, हम तो पूरे जैविक तरीका से ही खेती करत हैं। सो हमने कही कि ठीक है काकी, आप तो सांची कह रही हो, और हमारे भैया हरण को भी जैविक ताकि ऊपर अपन को है ना जाओ चाहिए कि अपन है ना जैविक खेती को ही अपनाएं, जिससे है अपनो स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और अपनी जो अपने खेत की मिट्टी है उनको भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। और बोलने लगी बिन्ना आप जा रही हो, देखो बुढ़ापो तो आ रहा है, अब बुढ़ापे से हमें तनक डर लगा था। सो हमने कि काहे कैसे हुआ डर लग रहा है। सो बोलने लगी अब कहा करें बिन्ना, अब अपन चाहे कितना भी अपनो काम धंधा करते रहो लेकिन बुढ़ापो तो आ ही जाता है। सो हमने कि अब बुढ़ापो तो सबको आ रहा हो काकी, तुम कहाँ लगाए। सो हमने कही कि चलो आज हमने चौपाल में आपको ऐसी कछु सुनवाते हैं। सो लिखा बोले हेमराज चढ़ार भैया को संगी साथी भैया हो कोई गाँव बहुत अच्छो वो है लोकगीत सुनियो आप। सो बोली ठीक।

हाँ तो भैया हरो अब हो रही चलवे की बिरिया, तो ले थे विदा सबई बिन्ना भौजी भैया हरन से माधुरी बिन्ना की, राम राम जय जवान जय किसान।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत मीडियम वेव पर आकाशवाणी का। ये जबलपुर केंद्र है, 8 बजने वाले हैं। कार्यक्रम सुर्खियों में आकाशवाणी भोपाल से हम रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आर्थिक विकास।
2: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी।

0: करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। अब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार
0: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
1: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, NPS लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें UK से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
0: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है, उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं?
1: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन्स का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन्स में से करीब करीब 250 स्टेशन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का

0: मैकेनिज्म है जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके। तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए, ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ भी कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर। इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है। और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने, देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस चिप्स हमारी, ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माने प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और एटीएमपी यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि

0: क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
1: जी,
0: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट,
1: इसमें कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा।
0: ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड US। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
2: तो अगले, अगर मैं PLI के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
2: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते।
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के CEO का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके CEO मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में HR डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण, वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपये मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपये मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
2: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
2: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि VPN के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
2: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
2: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 principles के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
2: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो।
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव

0: आने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर में, जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी। और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे। सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने के कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का। और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके, तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्युपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है, नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
3: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब एक रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
4: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार के ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
3: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो आप कॉम्प्रोमाइज पीएम, वो बोल रहे हैं।
4: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
3: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे?
4: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
3: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
4: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे, तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
3: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना।

0: हुआ है?
1: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
0: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी खतरा लग रहा है क्या अभी?
1: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
0: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी है। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
1: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं रिजोर्ट में, छुपके कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
0: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
1: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आकर के फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
0: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
1: देखो किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
0: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
1: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जो विशेष परिस्थिति

0: दृष्टि आते हैं जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए। ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं। अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहां तमाशा कराते रहते हैं, तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मलसी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

0: अभी आपने सुना समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहले आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर और अनुपमा की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत शिवहरी का है, फिल्म है चांदनी।

श्रोताओ, अभी आपने फिल्म चांदनी का ये गीत सुना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाज़ में फिल्म गुरु का ये गीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की

0: सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि MT मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, LNG, LPG तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या COVID-19 महामारी जैसे स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के

0: निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
4: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर

0: मिल जाती है।
1: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
0: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों के मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy.

मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति सावनी राजू की है।

0: नमस्कार श्रोताओं, ये है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त सावनी राजू। हमारे इस कार्यक्रम के लिए फोन नंबर है 2666-445-240-2093, जबलपुर का एसटीडी कोड 0761। यूं तो हमारे सभी श्रोताओं को पता है कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कब होती है और इसका प्रसारण कब किया जाता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में गाहे बगाहे हम आपको बताते चलते हैं। तो आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाती है मंगलवार को 11:15 से 11:50 तक, और इस कार्यक्रम का एक भाग यानी इस रिकॉर्डिंग का एक भाग मंगलवार को ही रात 9:30 से लेकर 10:00 तक आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से प्रसारित किया जाता है, और शेष भाग आप सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने के नाम से विविध भारती जबलपुर से दिन में 11:00 से लेकर 11:55 तक। तो फिर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, सुनते हैं हमारे ये कॉलर कौन है। हेलो
1: जी, फोन करें गीत सुने मैम।
0: जी फोन करें गीत सुने आकाशवाणी जबलपुर में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए।
1: जी लक्ष्मण सिंह बात कर रहे थे मैम, तहसील पथरिया जिला दमोह से।
0: लक्ष्मण सिंह जी, दमोह में रहते हैं आप?
1: जी जी नहीं, गांव में रहते हैं हम तो, बहुत राई गांव है हमारा।

0: जी
1: अच्छा,
0: जी
1: और इस भोतराई गांव में आपका फिर वहां से हटा कितनी दूर है?
0: हटा मैम यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है हमारे गांव से।
1: अच्छा, और करते क्या हैं लक्ष्मण जी
0: जी मैम मैं खेती बाड़ी करता हूँ।
1: इस वक्त? फिर खेती का कौन सा काम कर रहे हैं आप?
0: अभी तो मैम बखन्नी वगैरह हुई है, अभी मूंग की कटाई हुई है।
1: और साथ साथ
0: और अब
1: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: बिल्कुल मैम, मैं तो आपका कम से कम 30 साल हो गए मुझे आकाशवाणी जबलपुर सुनते हुए मैम।
1: क्या बात है, आकाशवाणी ने अपने 90 साल पूरे किए और आपको
0: बिल्कुल मैम
1: आकाशवाणी सुनते सुनते 30 साल पूरे हो गए।
0: जी।
1: तो आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: आज गीत मैम सुनने हमारा फिल्म दोस्ताना का टाइटल
1: हाँ, दोस्ताना फिल्म का,
0: सॉन्ग।
1: सलामत रहे दोस्ताना हमारा,
0: जी जी मैम बिल्कुल।
1: सुनवाएं आपको आपकी पसंद का गीत।
0: ओके मैम धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हेलो, फोन करें गीत सुने
0: हेलो,
1: आकाशवाणी
0: फोन करें।
1: जबलपुर।
0: हाँ, हेलो, फोन करें। गीत सुने। बहुत प्यारी सी आवाज के मालिक कौन है आप?
1: साबनी राजू,
0: अरे क्या बात
1: और
0: है
1: इतना प्यारा बोलने वाले कौन हैं आप?
0: जी। मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से, खजुराहो से बोल रहा हूँ।
1: फूलचंद जी, यथा नाम तथा गुण, बोली से भी फूल ही झर रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और
0: जी
1: बताइए, खजुराहो में इस वक्त बड़ी गर्मी होगी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने बहन जी। खजुराहो का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है अभी हाल में। क्या है, खजुराहो के मंदिर जो है बहुत
1: पत्थरों के,
0: गर्म होते हैं ना, क्यों पत्थर के
1: जी
0: मंदिर बने
1: पत्थर
0: हुए
1: हैं।
0: हैं।
1: और
0: तो
1: बारिश में उतने ही अच्छे लगते हैं।
0: जी, बारिश में तो खजुराहो के मंदिरों की छटा देखें आप तो देखते ही बनती है।
1: जी, हम एक बार बारिश में ही आए हैं आपके खजुराहो,
0: बिल्कुल स्वागत है, वेलकम।
1: एक बार आ चुके हैं, बार बार
0: अरे
1: आएंगे।
0: अरे वाह वाह, कब कब
1: जी
0: हो गई आप? आपने बताया ही नहीं मुझे, मैं आपके साथ
1: हाँ
0: घुमा घूमने जाता है आपको जो है
1: हाँ बहुत
0: आपको।
1: दिन हो गए फूलचंद जी, सब परिवार आए थे, पूरा खजुराहो घूमा। और रात में वो मंदिरों में एक शो भी होता है ना, जिसमें
0: जी
1: पूरी
0: जी जी
1: गाथा सुनाई जाती है।
0: जी जी जी जी बिल्कुल सही कहा है आपने।
1: तो आप क्या बचपन से ही गांव में ही हैं?
0: जी बिल्कुल, हम गांव में है, खजुराहो हमारा पास ही में है, बिल्कुल हमारा एक मोहाल है। जी
1: अच्छा
0: जी हाँ, तो बिल्कुल खजुराहो राजनगर आपने सुना हो
1: जी,
0: तो। सब जो है अपना पूरा एरिया है, और अब तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी हो गया है
1: हाँ
0: खजुराहो।
1: बिल्कुल सही बात है। और आज कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
0: जी, बिल्कुल फिल्म का नाम है ठोकर,
1: हाँ ठोकर।
0: और गीत के बोले कि मेरी सुन ले दीन दयाल, मुझको कर दे माला माल, मेरी लौटेरी निकाल, मुरली वाली नलाल,
1: मेरी सुन ले दीन दयाल,
0: मुझको कर दे माला माल,
1: मेरी लॉटरी निकाल।
0: मुरली वाली नलाल।
1: क्या बात है, चलिए भगवान सुन ले आपकी, लॉटरी निकल आए और आपके साथ सारे सुनने वालों की भी।
0: लॉटरी तो मेरी निकल गई है, मेरा फोन लग गया, आपसे बात हो गई तो मेरी लॉटरी
1: जी,
0: निकल
1: और हम सब की
0: गई।
1: लॉटरी ऐसे ही निकलते रहे, जिसमें हमें बस खुशियां और सुख और साथ मिलता रहे, है ना?
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे रेडियो जो है आकाशवाणी ने 90 साल पूरे कर लिए हैं जो है,
1: जी, कैसा लगता है
0: और
1: आपको रेडियो
0: नब्बे जी
1: सुनकर, इतने दिनों में कुछ परिवर्तन समझा?
0: जी बहुत परिवर्तन आए, बहुत परिवर्तन हमने रेडियो से जो है जो कुछ भी सीखा है, बोलना और जो है सब कुछ रेडियो की ही देन है।
1: जी,
0: और
1: रेडियो
0: बहुत
1: आपके
0: सारे
1: दिल के करीब,
0: बहुत
1: आपका साथी।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। और रेडियो से ही हमारे बहुत सारे मित्र मिले हैं, और आप जैसी बहन मिली हमको,
1: जी
0: तो ये सब रेडियो की ही देन है।
1: चलिए, तो फिर इसी रेडियो पे आपकी पसंद का गीत आप तक।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आइए खजुराहो, वेलकम, स्वागत
1: बिल्कुल
0: है आपका।
1: बिल्कुल, जरूर।
0: स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने आकाशवाणी जबलपुर।
1: बिल्कुल, मधुर आवाज की मलिका आदरणीय मैडम सावनी जी को प्रणाम करता हूँ। संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से। मैडम
0: संतोष जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके प्रसारण सुनते हैं न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के साथ मीडियम वेव पर, और साथ में विविध भारती मतलब जबलपुर का भी प्रसारण सुनते हैं मैडम जी।
0: अच्छा संतोष, 8 जून सन 25 से लेकर 8 जून यानी कल तक 26 तक आकाशवाणी के 90 साल के लगातार समारोह चल रहे थे। आकाशवाणी ने अपना 90वां वर्ष मनाया, जिसकी शुरुआत हुई थी जून 25 से, ठीक है ना? आपको क्या लगता है इस दौरान रेडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं?
1: रेडियो की पहुंच सबसे पहले
0: और रेडियो में भी
1: हमारे
0: खास तौर से आकाशवाणी।
1: जी बिल्कुल, रेडियो का जमाना बहुत पहले से चलता आ रहा है। निरंतर जब प्रसारण की जो क्षमताएं थी वो रेडियो ने ही तय की है, और रेडियो की अहमियत सबसे खास हुआ करती थी। उस जमाने में लोग समाचारों को भी सुनने के लिए समय निकाला करते थे, और रेडियो को बड़ी ही शान और शौकत के साथ सुना करते थे। रेडियो एक भारतवर्ष की आवाज है, और रेडियो हमेशा ही जागृत रहता है। रेडियो में कई लोगों की आवाजें हम तक पहुंचती है, और जिसमें से प्रधानमंत्री तक की आवाजें हम तक सीधे सीधे जुड़ पाती हैं।
0: जी अच्छी बात है आपने कही। और अब बताएं कि कौन सा अच्छा सा गीत सुनेंगे?
1: बिल्कुल मैडम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है मैडम, बहुत पुरानी मूवी है आहूति। नौकरी 100 की 1000 की कीमत नहीं होती यार की।
0: प्यार अनमोल है ना? यह है इस तरह से, एक
1: जी मैम,
0: मीठा
1: बिल्कुल मैम,
0: बोल है। अच्छा
1: मीठी
0: गीत
1: मीठी
0: पसंद किया है
1: बातें यार
0: जी,
1: की। जी मैम,
0: तो सुनवाएं फिर आपको आपके पसंद का ये गीत फिल्म आहुति से।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, आपका बहुत ही धन्यवाद रहेगा। इतना अच्छा कार्यक्रम आप सहजता और सरलता के साथ प्रस्तुत करती हैं, चाहे पत्रों वाला कार्यक्रम सारंगा हो या फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने नमस्कार, या यूं कहें कि गुड मॉर्निंग जबलपुर, इतनी उत्साह और उमंग के साथ आप भरती है ना, ताजगी का एहसास दिलवाती हैं। और हम लोग आपका प्रसारण रेडियो पर सुनते हैं मैडम जी, मीडियम वेव की मीटर
0: बहुत
1: पर।
0: अच्छी बात है संतोष जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और आप जैसे जो श्रोता है ना, हम लोगों के साथ जुड़कर हम लोगों का इतना हौसला बढ़ाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो जब अच्छे की जो प्रतिक्रिया है वो भी अच्छी होगी। श्रोता अच्छे तो प्रस्तोता अच्छे, है ना? सुनने
1: जी
0: वाले
1: मैम,
0: अच्छे तो कार्यक्रम अच्छे। तो बस आज का आपका ये गीत भी बहुत अच्छा है, आप तक भेजते हैं, सुनिए।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, फोन
0: जय
1: करें गीत
0: श्री।
1: सुने।
0: जी मैम, शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ।
1: शिवा लोहार, एमपी विदिशा से।
0: यस मैम।
1: क्या करते हैं विदिशा में आप शिवा जी?
0: मैम मैं एक्चुअली मैं ब्लाइंड हूँ और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपका कार्यक्रम एंजॉय करते रहते हैं।
1: बहुत
0: और
1: बढ़िया।
0: एक
1: हाँ
0: मेरा वृद्धा जो जबलपुर में ही रहता है, तो
1: अच्छा,
0: वहाँ जाते हैं तो रेडियो सेट पे भी सुनते हैं मैम।
1: बहुत अच्छी बात है शिवाजी। हमारे यहाँ का फिर कौन
0: एक
1: सा? हाँ कुछ कह रहे थे।
0: एक मेरी सिस्टर भी भाई रहती है मैम जबलपुर में, और एक मेरा भाई भी रहता है। तो सिस्टर है फॉरेस्ट में और
1: नाम क्या
0: भाई
1: है?
0: है
1: दोनों का नाम भी बताएं।
0: जी तनुजा खरे, सिस्टर का नाम है मनीष लोहट, प्लाटून कमांडर है होमगार्ड में,
1: क्या बात है।
0: जो कि गौरीघाट प्रभारी है मैम।
1: अच्छा,
0: जी
1: वो लोग भी सुनते हैं ये कार्यक्रम कि बस आप सुनते
0: जी
1: हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग भी सुनते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के
1: ओ,
0: माध्यम से।
1: यानी
0: और
1: अभी आप उनके बारे में जब शिवा बात कर रहे हैं तो उन लोग सुन रहे होंगे, है ना?
0: जी
1: सुनेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम।
1: तो कौन सा गीत है शिवा सुनवाए आज आपको?
0: मैम मूवी का नाम रहेगा बलमा, और गाने को बोल रहेंगे बांसुरिया अब यही पुकारे आ बलमा नदिया के किनारे। मैम कुछ दोस्तों को याद करना चाहते थे।
1: बिल्कुल।
0: पूरन वर्मा जी हैं राजस्थान से, राकेश जी हैं शिमला से, सीहोर मध्य प्रदेश से हैं भगवान सिंह परमार जी, वहीं से हैं हमारे रमेश प्रजापति जी, और तेंदुखेड़ा से हैं हमारे
1: ओम प्रकाश जी।
0: हमारे जी ओम प्रकाश नेमा जी और तमाम सुनने वाले और स्पेशली में।
1: फिर सब आप मिलकर सुनिए। आपने बातचीत की, अच्छा लगा। आपकी पसंद का गीत आप तक।

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, जिसे आपने सुना आपके अपने रेडियो दोस्त सावनी राजू के साथ। गीतों के लिए हमें लाइब्रेरी से सहयोग दिया राजेश मरकाम ने। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोगी शेखर गोल्हानी और हुबराज सिंह। इस कार्यक्रम के संयोजक श्याम लाल टहलानी। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति सावनी राजू की थी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी किशोरी अमोनकर का गाया राग माल कौंस में ख्याल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुन रहे थे विदुषी किशोरी अमोनकर का गाया राग मालकंस में ख्याल। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं, अभी आपने आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फागुन फिल्म का ये नगमा सुना। बोल कमर जलालाबादी के थे, तर्ज बनाई थी योगेश ओपी नैयर ने, और इसे सुनना चाहते थे बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर गदरे, राजेश गदरे, शिवम, शुभांग, सृष्टि, किशनपुर, जतुका से आलम, दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील, फिरोज आलम, नाज प्रवीण, हरी जागीर से अब्बास खान संगदिल, अयान जीशान, रिहान मिनहाज, पिंकी चिंकी, रिंकी अनी, आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। अब सुनिए फिल्म चोरी चोरी का ये नगमा लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। अनुरोध आप सबका, सर्वानिया महाराज नीमच मध्य प्रदेश से, गोविंद पाटीदार, ममता, पूजा, मधुसूदन, यशस्वी पाटीदार, हंसवी पाटीदार, राजीम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लबी श्रीवास्तव, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, अभय गुजराती, श्रवण सिंह गिन्नारे, मालीपुरा खंडवा से यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप, पिंटू, जयश्री खंडाले।

श्रोताओं, अब सुनिए नूरजहाँ की आवाज़ में फिल्म अनमोल घड़ी का ये नगमा। बोल तनवीर नकवी के हैं, तर्ज बनाई है नौशाद ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, जरुड़ वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहब वाडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, कार्तिक युवराज, कड़िया मौजे उस्तू से आशीष कुमार, प्रदीप मंडल, कुंदन मंडल, करीना, पूजा आरती, सुनीता देवी, अजीत नगर मलोड पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, सी एस बेगाना, करेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, नीतू, निहारिका, गीतू, वंश बत्ता।

श्रोताओ, पेश खिदमत है कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है कभी कभी, आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की है, बोल साहिर लुधियानवी के तर्ज बनाई है खयाम ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल, विशाल, शीला, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य। इसी गीत को सुनना चाहते हैं शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी, गौरव सैनी, राधिका, दीपिका, गंगा प्रसाद सैनी। लक्कड़ बाजार खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह वैस, रोहन, रिया, रणवीर सिंह वैस। कुंडलेश्वर से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा, हर्षिता, भूमिका मुस्कान, अभय गुजराती।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुनिए जानिसार अख्तर के बोल, तर्ज बनाई है नौशाद ने और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना प्राची नेमा, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा और उनके परिवार के सदस्य, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक, मीका विरक, मलगन जिला पन्ना रायपुरा से संजय मिश्रा, राधिका मिश्रा, अनुष्का, यश और उनके परिवार के सदस्य।

चंबल की कसम। अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीतकार साहिर, संगीतकार नौशाद। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष ठाकुर, रामाधार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सैन, बारीलाल बढ़ई, गौरव शेख मुनीर, ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी, संजय पुरी, सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी राही, अंकिता सिद्धार्थ, सृष्टि राही, राजपुर से घिस्सू दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता स्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 11 बजने वाले हैं। अब समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनिमय संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उसपे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताज़ा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human right abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders, it includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mashal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. The two leaders exchanged views.

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज और 102.9 मेगाहर्ट्ज एवं न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा